ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने को है, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, सुप्रभात। जहां नई सुबह की किरणों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं हम आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, जहां हर उगता सूरज हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 पर। दोस्तों, जिंदगी में कठिनाइयां आना तो तय

लेकिन ये हम पर है कि हम उन्हें बोझ माने या चुनौती मानकर आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो आज के इस सुप्रभात में हम बस यही बातें करेंगे कि अपनी कठिनाइयों को आप चुनौती की तरह किस तरह से ले सकते हैं और कैसे हर ठोकर हमें आगे बढ़ने का हौसला दे सकती है। तो कठिनाई को चुनौती की तरह लें। सुप्रभात।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और कार्यक्रम चल रहा है सुप्रभात। और देखिए ना, उठिए, देखिए मौसम कितना सुहाना है, क्योंकि सुबह जो होती है ना, वो रोज़ाना अपने साथ नई उम्मीद की किरणें लेकर के आती है और लेकर आती है पूरा दिन, जिसे आप पॉजिटिविटी के साथ सफलताओं से भर सकते हैं। और उसी में एक छोटी सी कोशिश होती है हमारी, आप सभी को मॉर्निंग मोटिवेशनल डोज देने की, कार्यक्रम सुप्रभात में, जो हम लेकर आते हैं रोज सुबह 6 बजे आप सभी के लिए आकाशवाणी रेनबो पर, जिसे आप सुनते हैं दिल्ली NCR में 102.6 MHz पर और देश और दुनिया में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर। हमारी न्यूज ऑन एयर पर भी आप हमें सुन सकते हैं। हमारी ऐप आप सभी के लिए देश और दुनिया में हर जगह उपलब्ध है और इसके अलावा वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं हमसे जुड़े रहने के, बहुत सारे बहाने हैं हमसे जुड़े रहने के, तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। दोस्तों, जिंदगी में जब रास्ता आसान होता है ना तो हम बस चलते रहते हैं, लेकिन जब रास्ता कठिन हो जाता है ना तभी हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जैसे पत्थर पर गिरती हुई पानी की बूंद धीरे धीरे अपना निशान बना ही देती है, वैसे ही लगातार कोशिश और हर कठिनाई जीवन को आसान बना देती है और सफलता की तरफ हमारा कदम जो है एक और बढ़ जाता है। याद रखिए, मुश्किलें हमें परखने के लिए नहीं बल्कि हमें तराशने के लिए आती है, और जो तराशा जाता है वही चमकता है। आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, अब एक नए समय पर, हर गुरुवार शाम 4 से 5 FM रेनबो पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सुप्रभात, सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और आज हम सुप्रभात में मॉर्निंग मोटिवेशनल डोज में बात कर रहे हैं कि जो जिंदगी की कुछ कठिनाइयां हैं ना, उन्हें चुनौती की तरह लेना है और कैसे सफल होकर उस ये जो भंवर है उसमें से पार निकल करके चले जाना है। क्योंकि जिंदगी ना कभी कभी अचानक से कठिन मोड़ ले लेती है दोस्तों। हमारी जितनी भी प्लानिंग होती है वो सब बदल जाती है, रास्ते अपने आप में उलझ जाते हैं, लेकिन दोस्तों हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर के आती है। बस जरूरत है तो नजर बदलने की, नजरिए को बदलने की। अगर रास्ता बंद लगे तो समझिए कि नया रास्ता हम बनाने का समय आ गया है। अगर मुश्किल सामने हो तो समझिए कि आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि जो लोग कठिनाइयों से नहीं डरते ना, वही इतिहास बनाते हैं और जो चुनौती को अपनाते हैं वही मंजिल तक भी पहुंचते हैं।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आप सुन रहे हैं सुप्रभात, आपका अपना मॉर्निंग मोटिवेशनल शो जिसे हम लेकर आते हैं आकाशवाणी रेनबो पर रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। और आज मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम में आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। लेकिन दिन भर जो रेनबो पर हैं अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग प्रेजेंटर्स आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज आप दिन भर कौन कौन से प्रोग्राम सुन सकते हैं आकाशवाणी रेनबो पर। आपसे थोड़ी ही देर में सुबह 7:05 पर निशा तंवर लेकर आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR आप सभी के लिए, जो कि होता है हमारा मॉर्निंग मैगजीन शो। और सुबह 8 बजे इस कार्यक्रम में मैं रहूंगी आपके साथ। निशा तंवर एक बार फिर से आएंगी आपके पास और लेकर आएंगे गाने, दिल के तराने, गाने नए पुराने कार्यक्रम में, जिसमें आप सुनते हैं आज के ज़माने के हिट सॉन्ग्स और रेट्रो सॉन्ग्स भी। जी हाँ, 9:15, 9:30 और 9:45 पर आप सभी के लिए लेकर आते हैं हम रेट्रो सॉन्ग भी चुन चुन कर। तो सुनना मत भूलिएगा निशा तंवर को दिल के तराने, गाने नए पुराने में। पूजा आनंद आएंगी दिन में 10:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आर्स लेकर। और फिर होंगे आपके साथ 11:05 से सृजन राजपूत बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर। वेस्टर्न म्यूजिक का ही एक और प्रोग्राम आएगा आप सभी के लिए सुबह 12:05 से प्लेट कूल, जिसमें होंगे आपके साथ पूजा आनंद, सृजन राजपूत एक बार फिर से होंगे आपके साथ 1:05 से। आज हमारा प्रोग्राम होगा रेनबो हेल्पलाइन और इसमें हमारा टॉपिक है रोल ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन मेडिकल मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। गेस्ट होंगे प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गंगनेजा। तो आप भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं हमारे साथ दिन में 1:05 से लेकर 2 बजे तक। आशियाना लेकर आएंगी स्वाति गुप्ता और वीर दमन लेकर आएंगे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम, जो कि हमारा रोज आने वाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलती है आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। अल्फा जैन में आपके साथ होंगी स्वाति गुप्ता और ऋचा वर्मा। वीरदमन एक बार फिर से आएंगे आपके साथ, कार्यक्रम सिटी लाइट्स प्रेजेंट करेंगे शाम 5:05 से। और मुक्ति सैनी होंगे आपके साथ शाम 6:05 से मैसेज मसाला मिक्स लेकर, जिसमें होती हैं ढेर सारी बातें और चटपटी गॉसिप्स। शाम 7 बजे आपके साथ होंगी सुहासिनी वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम लेकर। और इसके बाद मुक्ति सैनी एक बार फिर से होंगी आपके साथ रात 8 बजे म्यूजिक मस्ती लेकर, जहां नॉन स्टॉप डांस हिट्स आप सुन सकते हैं। आपकी याद आती रही जरीन नाज के साथ सुनिएगा रात 9 बजे। और 10:05 पर सुनिएगा सुहासिनी के साथ एक और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम रेनबो क्लासिक्स। और रात 11 बजे आप सुनिएगा प्रोग्राम जरीन नास के साथ रंगे महफिल। तो ये तो थी वो कार्यक्रमों की जानकारी जो आज आप दिन भर आकाशवाणी रेनबो से सुन सकते हैं। और कार्यक्रम सुप्रभात का समय जो है ना, वो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि कठिनाइयों से घबराइए मत, उन्हें चुनौती की तरह अपनाइए, क्योंकि हर मुश्किल के पीछे एक नई सीख, नई ताकत और नई शुरुआत छुपी होती है। याद रखिए, मुश्किलें रास्ता नहीं रोकती, बस ये पूछती हैं कि आप कितने मजबूत हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपकी हर चुनौती को मुस्कुराकर आप स्वीकार करेंगे, मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हर नई सुबह कहती है कि आप कर सकते हैं। सुप्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए।

0: हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद किया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि मौजूदा दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां तो साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता का असर विकासशील और पिछड़े देशों पर अधिक पड़ता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए साझा वैश्विक कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई भी व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हुए मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम रेनबो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं निशा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कहूंगी कि फिर से याद करो कि एक और नया दिन ऐड हो गया लाइफ में। आई नी मतलब इसका उल्टा भी वैसे हम सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ से एक दिन कम हो गया है। सच में इस तरह से अगर हम सोचेंगे ना, अगर ये सोचेंगे कि एक दिन ऐड होने के बजाय एक दिन जितना भी टाइम हमारे पास था उसमें से लेस हो गया है, तो ये फीलिंग हमें इंस्टेंटली आ जाएगी कि लाइफ में हमारे पास एंडलेस टाइम नहीं है। और सोचो जब दिन की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे कि हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर कितना ध्यान अपना डालेंगे, है ना। फालतू की बेकार की डिस्ट्रैक्शंस में, आर्ग्यूमेंट्स में और ऐसे एक्सपीरियंसेस में, लोगों में हम ध्यान देना बंद कर देंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कि जब एक एक दिन करके हमारा कम हो रहा है तो क्यों ना जितना भी टाइम हमारे पास है उसे हम अपना बेस्ट दें और अपनी बेस्ट

चीजें हम उससे बाहर निकालें. तो इसीलिए लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मेनी डेज वी हैव बट बाय हाउ वी चूज टू स्पेंड देम. इसीलिए अप्रिशिएट पीपल अराउंड यू, उनके साथ एंजॉय कीजिए. वो छोटी छोटी बातें अपनी लाइफ में हमें करनी चाहिए जिनसे हमें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. इसीलिए अपने लिए जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पोस्टपोन करना बंद कर दीजिए. बिकॉज व्हेन यू रियलाइज दैट ईच डे इज नॉट सिंपली अनदर डे एडेड टू योर लाइफ बट वन डे लेस टू लिव, तब हमें रियलाइज होती है जिंदगी की असली कीमत. सोचिए इस बात को और बने रहिए FM Rainbow पर विद मी निशा.

हर रोज रोजाना कोई ना कोई हम में से यहाँ आता है, बातें करता है आपसे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं निशा हूँ आपके साथ। 7:10 दिखा रही है स्टूडियो क्लॉक और फिलहाल बाहर सूर्यदेव आ चुके हैं। यस, सूर्यदेव हो चुका है और मौसम जो मैक्सिमम तापमान रहेगा वो आज 38 तक जाएगा। फिलहाल बाहर का तापमान 30 के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि भाई आज भी तेज आंधी दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के इलाकों में आ सकती है। जैसे कि कल हुआ, पूरा दिन इतनी तेज गर्मी पड़ने के बाद में एकदम से शाम को मौसम बदलता है। मैंने तो सोचा था कि बारिश आने वाली है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और थोड़ी बहुत लोगों को सर्दी खांसी देके चली गई, वो आधी थोड़ी सी एलर्जीज देकर चली गई, लेकिन फिर भी आज भी इसी तरह की आंधी और तूफान चलने का अंदाजा है। लेकिन हाँ, मानसून के बारे में अभी मत सोचना, थोड़ा दूर है वो। बने रहिए FM रेनबो पर।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM 7:24। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। आज 24 तारीख हो गई है जून महीने की और आज हम एक खास इंसान को याद कर रहे हैं। वराहगिरी वेंकट इनका नाम है और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था और आज इनकी पुण्यतिथि है। ये बाद में उपराष्ट्रपति भी रहे और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो बहरामपुर में ही संपन्न हुई जहां पर ये पैदा हुए थे और इसके बाद ये डबलिन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने के लिए आयरलैंड चले गए। और सोचिए जिस तरह की हस्ती थे आयरलैंड जाकर वहां पर जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था सिनफिन आंदोलन उससे जुड़े और इसी की वजह से उन्हें आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। और जो प्रथम विश्व युद्ध के समय का टाइम था तकरीबन 1916 के आसपास ये भारत वापस लौटे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गए और वहां पर सक्रिय रूप से लोगों के साथ जुड़े रहे। और भारत लौटने के बाद उन्होंने श्रमिक आंदोलन से जुड़ गए और इतना ही नहीं रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से भी इन्होंने बंगाल नागपुर रेलवे एसोसिएशन की स्थापना की। और बस उन्हीं के इसी तरह के कामों के लिए वीवी गिरी जिस नाम से ये प्रसिद्ध थे जाने जाते थे श्रमिकों के उत्थान और देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। एक बहुत ही अच्छे रचनात्मक लेखक के रूप में भी इन्हें याद करते हैं। आकाशवाणी रेनबो 24 जून का दिन है और आज की तारीख से जुड़ी हुई और भी खास बातें आपको बताऊंगी। बस बने रहिए मेरे साथ। कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग आकाशवाणी 102.6 FM।

और जब हम बड़े बड़े कवियों की कविताएं पढ़ते हैं, इसी तरह से जिसके बारे में वो लिखना चाह रहे हैं, वो ऐसा लगता है हमारे रूबरू, हमारे सामने आ गए हैं। महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो उन्होंने झांसी की रानी के लिए कविता लिखी, खूब लड़ी मर्दानी। उन्हीं के ही बोल एक और रानी के लिए मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ कि सुनूंगी माता की आवाज़, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी इस वेदी पर देव ना होने दूंगी अत्याचार, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चलो मैं तो हो जाऊं बलिदान, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। एक रानी का पराक्रम इन शब्दों से साफ झलक रहा है, और ये बात हो रही है इस कविता में रानी दुर्गावती की, जो कि इनके शौर्य को और इनके अमर बलिदान को ये कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान हमारे समक्ष लेकर आई हैं। और ऐसी ही रानी थी, आज ही के दिन 1564 में रानी दुर्गावती दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी, और उनकी शहादत के दिन को ही, उनके बलिदान के दिन को ही आज के दिन हम याद कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था, रानी दुर्गावती का। गोंडावाना की ये शासक थी और बहुत ही प्रसिद्ध रानियों में गिनी जाती हैं, बिल्कुल झांसी की रानी की तरह। और इनके जो दुर्गावती कालिंजर के जो राजा थे कीर्ति सिंह चंदेल, उनकी एक मात्र संतान थी। दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम इन्होंने दुर्गावती रखा। और अपने नाम की तरह ही तेज, साहस और शौर्य इन्होंने चारों दिशाओं में वहाँ से फैला। एक बार जब अकबर ने अपने रिश्तेदार के साथ, आसफ खां के साथ मिलकर इन पर हमला किया, तो तब एक बार तो उनको बहुत बुरी तरह से रानी ने पराजित किया, लेकिन बाद में जब फिर से हमला इनका जो राज्य है वो झेल नहीं पाया, और दुगनी सेना के साथ दुश्मन के सामने दुर्गावती जी की सेना कमज़ोर पड़ गई, इनका पक्ष दुर्बल हो गया। और युद्ध में बुरी तरह से घायल होने के बाद जब रानी ने अपने वजीर को ये कहा कि वो उनका सर गर्दन से अलग कर दे, लेकिन वजीर इसके लिए तैयार नहीं हुआ, और बाद में रानी ने अपनी कटार अपने आप ही अपने सीने में भोग कर आत्मबलिदान के पथ पर वो आगे बढ़ गई। महारानी दुर्गावती ने अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 सालों तक सफल शासन किया था और देश की प्रजा के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई थी। तो आज इस महान रानी को हम नमन करते हैं अपने इस गीत के माध्यम से।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कैप्टन रोहित शर्मा जी का भी था जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये बात तो आपको अब तक पता ही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अवार्ड जो है रोहित को उसी तारीख पर मिला जिस तारीख को उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यू मैच खेला था, यानी कि 23 जून 2007 को ही भारत के लिए अपना पहला इंटरनेशनल मैच रोहित शर्मा ने खेला था। और जब ये अवार्ड उन्हें मिला उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वहीं से जाकर मुझे ये बात पता चली तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। दूसरी बाद हमारी विमेन्स टीम की जो कि T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और कल की हार के बाद सेमीफाइनल में क्या भारतीय टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया कुछ भी कह पाना, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका से कल जो हार मिली है उसके बाद अब जितने भी मैचेस खेले जाएंगे, 1 25 जून यानी कि कल खेला जाएगा जो मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी हमारी टीम, और उसके बाद 28 जून को उनका दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होगा। और ये दोनों ही मैच हमारे टीम को जीतने होंगे अगर वो सेमीज में जाना चाहती है। और दूसरी तरफ क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल का फीवर भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है, और कल जो मैच हुआ पुर्तगाल का और उज़्बेकिस्तान का, सबने देखा ही होगा ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 6 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं, 41 साल के हैं फिलहाल, और कल का मैच इन्होंने 5-0 से कल के मैच में जीत हासिल की। और रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर भी बन गए हैं, इनके नाम टोटल 10 गोल हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। मैच जीतते ही देखा उन्होंने कैसे कैमरा पर अगर आई एम बैक किया, मतलब भाई आपको लोग वैसे ही इतना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि एक बार नहीं इस तरह से आपका बार बार कम बैक होता रहे। आज के मैचेस की बात कर लेते हैं, तो आज रात से मतलब हमें तो रात हो जाती है, रात क्या कहे 3 बजे के बाद जब ये मैचेस शुरू होते हैं तो अगली तारीख लग जाती है यानी कि 25 तारीख हो जाएगी। खैर आज का जो मैच होगा वो ब्राजील का सामना स्कॉटलैंड से होगा और उसके बाद मोरक्को और हैती एक दूसरे के आमने सामने होगी। हैती के बारे में बता दूं पहले ही टूर्नामेंट से ये जो है वो बाहर हो चुकी है, और इन दोनों ही मैचेस से पहले स्विट्जरलैंड और कैनेडा एक दूसरे के आमने सामने होंगे और दोनों ही 4-4 अंकों के साथ अपनी पोजिशन को बनाए रखे हुए हैं। देखते हैं मैच में किसकी जीत होती है और उसके बाद क्या होता है। आप ज्यादा नहीं सोचिए, वो सब सोचने का काम हमारा है, आप बस बैक टू बैक यहाँ अच्छा म्यूजिक एंजॉय करते रहिए। दिस इज 102.6 FM। गुड मॉर्निंग।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप. वेरी गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ में. और आज 24 तारीख है और आपको पता ही है कल के दिन काफी सारे लोगों को पद्म अवार्ड से नवाजा गया और उसमें से एक नाम

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम, गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ में। आज 24 तारीख है और आज श्री ओमकारनाथ ठाकुर जी, जो भारत के जाने माने शिक्षा शास्त्री थे, संगीतज्ञ थे और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे, आज इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी है। ग्वालियर घराने से इनके ये संबंध रखते थे और बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व था। लोग इनकी इतनी तारीफ करते थे, बहुत पसंद करते थे इनके भजन को, इन मंच पर इनकी परफॉर्मेंसेस को, और साथ ही इतने प्रसिद्ध थे ये कि गांधी जी भी इनकी काफ़ी तारीफ किया करते थे, इनकी आवाज़ की, इनके संगीत की। और 24 जून के दिन ही गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय से शिक्षा पाई और पूरे 5 साल का जो पाठ्यक्रम था उसको इन्होंने 3 सालों में ही ख़त्म कर लिया था। और उसके बाद अपने गुरु जी के चरणों में बैठकर बिल्कुल कह सकते हैं कि गुरु शिष्य परम्परा के अंतर्गत इन्होंने जो अपनी संगीत की शिक्षा थी उसको और ज़्यादा गहन किया, डीप किया। और जब ये मात्र 20 साल के थे तब तक ही अपने म्यूज़िक में इतने पारंगत हो गए थे कि उन्होंने लाहौर के गंधर्व संगीत विद्यालय का प्रधानाचार्य भी इन्हें बना दिया गया था। और उसके बाद आगे चलकर इन्होंने संगीत निकेतन की भी स्थापना की। और बस 50 और 60 के दशक की अगर बात करें तब के ये महफिलों का जलवा इन पूरे विश्व के मंच पर इन्होंने बिखेरा। लोग इनको पसंद किया करते थे और खास तौर पर इनकी रचनाएं वंदे मातरम और मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो आज भी जब सुनते हैं तो बहुत सुंदर अनुभूति हमें होती है। आकाशवाणी रेनबो गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में अभी के लिए इतना ही। मैं आपको ठीक 9 बजे मिलूंगी, लेकर आऊंगी दिल के तराने, गाने नए पुराने। सो कीप लिसनिंग FM रेनबो 102.6।

0: तुम्हारी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2.0 यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं रहने वाली हूँ आपके साथ। मैं कौन? मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। और दोस्तों, जिंदगी में बार बार मिलने वाली असफलताएं आपको रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि वो आती हैं आपको आपकी असली ताकत दिखाने के लिए। हर ठोकर कुछ नया सिखा कर जाती है, हर हार आगे बढ़ने का हौसला देती है, और हर असफलता आपको उस रास्ते पर लेकर जाती है जहां आप खुद का बेहतर रूप बनते हैं। तो अगर आज आप वैसा ही कुछ ऐसा चल रहा है आपकी जिंदगी में, तो घबराइए मत, समझ लीजिए आप सफलता के करीब आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में, जो कि आपका मॉर्निंग मैगजीन शो है, वहाँ हम हर सुबह आपके हौसलों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपके लिए लेकर आती हैं ऐसी न्यूज़ जो आपके पूरे दिन को फिट एंड फाइन कर दे, और ऐसी बहुत सारी बातें जो आप चलते चलते ऑफिस की

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। और चलिए दे देते हैं आपको वेदर अपडेट, क्योंकि ऑफिस के लिए निकलने से पहले आपको कुछ अगर तैयारियां करनी है वेदर अपडेट से रिलेटेड तो आप कर सके। दिल्ली एनसीआर में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। और मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम मुख्य रूप से ड्राई रहने वाला है, हालांकि कुछ इलाकों में आंधी और थंडरस्टॉर्म जो है वो आ सकती है, उसकी संभावना बनी हुई है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी आंधी आ जाती है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ऐसे में घर से निकलते समय पानी अपने साथ रखें, धूप से बचाव करें, छाता लेकर के चलें, और यदि तेज़ हवाएं चलें तो खुले स्थान और कमज़ोर पेड़ों के नीचे बिल्कुल भी मत खड़े होइएगा, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि तेज़ हवाएँ जो हैं वो उनके कारण जो है वो पेड़ वगैरह जो है वो गिर जाते हैं और उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो वहाँ पर रुकने से अच्छा है कि आप किसी अच्छी जगह पर जाएं जो सुरक्षित हो, और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। गर्मियों में शरीर से जो है ना पसीने के रूप में बहुत सारा पानी निकल जाता है, इस

लिए लगातार बार बार पानी पीते रखें, खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर सूरज की ड्यूटी की बात करें तो आज सुबह वो 4:24 पर आए और शाम को 7:22 पर वो जाने वाले हैं, यानी कि इतनी लंबी उनकी शिफ्ट होने वाली है। तो आपको भी उसके हिसाब से तैयारी करके रखनी है, क्योंकि मौसम चाहे जैसा भी हो, आपका मूड और आपकी हेल्थ हमेशा शानदार रहनी चाहिए। अब मौसम चिल करे ना करे, लेकिन आकाशवाणी रेनबो पर कुछ ऐसे गाने हम आपके लिए चलाते हैं जो आपको चिल फील कराते हैं।

0: Just
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: और आकाशवाणी रेनबो पर चल रहा है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, आपका अपना मॉर्निंग मैगजीन शो।

जी, सोने लग दे और साथ ही साथ सोने लगती हैं बच्चों की मुस्कुराहट भी, और ख़ास तौर से जब वो सुरक्षित हो, क्योंकि बच्चों की मुस्कुराहट जो है बहुत अनमोल होती है। और इसी सोच के साथ जो है दिल्ली के कई स्कूलों के आसपास सड़क को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब स्कूल क्षेत्रों में वाहनों की गति को नियंत्रित करने, अनावश्यक हॉर्न पर रोक लगाने के लिए, स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाने जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सड़कें बेहतर बने, उससे ज़्यादा जो है बच्चों के लिए सेफ, स्मार्ट और स्टूडेंट फ्रेंडली जोन जो है वो तैयार हो सके, ताकि स्कूल तक का सफ़र जो है वो उतना ही सुरक्षित हो जितना कि स्कूल में कक्षा का वातावरण होता है। और बच्चे जो हैं जब स्कूल सुरक्षित पहुंचेंगे, यानी कि स्कूल का रास्ता जितना ही उनके लिए सुरक्षित होगा उतना ही सीखने का सफ़र भी जो है उनके लिए बेहतर होगा। स्कूल के आसपास हॉर्न नहीं बजेंगे तो शांति रहेगी, मन एकाग्र होकर पढ़ाई में लग सकेगा, और स्कूल के आसपास जब ट्रैफिक की कम आवाजाही होगी और स्पीड की लिमिट तय कर दी जाएगी तो उससे बच्चों को बहुत सेफ मिलने वाला है एनवायरनमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और इसमें हम सभी को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा देश और दुनिया में आप हमारी ऐप न्यूज़ ऑन एयर के माध्यम से भी हमसे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपलब्ध हैं आप सभी के लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: Ram Masala.
1: Calendar, Master Calendar. Calendar, Master Calendar.
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर 102.6 पर। और दोस्तों अभी बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए बाकी है, तो कहीं मत जाइएगा। सुबह 9 बजे तक गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में जुड़े रहिएगा मेरे साथ।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मैं हूं आपके साथ कोमल, और हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी सारी जानकारियां जो आपके पूरे दिन भर को आसान बनाने में बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए पानी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि पानी जो है वो हमारी सिर्फ ज़रूरत नहीं है बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सबसे अहम कड़ी है दोस्तों।

ऐसे में अगर सुबह सुबह नल की धार धीमी हो जाए तो पूरे दिन की प्लानिंग पर असर पड़ जाता है। आज राजधानी के कुछ इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उत्पादन कम होने की वजह से सिविल लाइन्स, कमला नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, एनडीएमसी क्षेत्र, पटेल नगर और इसके आस पास के जो इलाके हैं वहां पर पानी की सप्लाई जो है वो बाधित रह सकती है या कम दबाव से पानी आ सकता है। तो ऐसे में यदि आपको टैंकर मंगाने हो तो दिल्ली जल बोर्ड को आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप अपने घर पर या अपने इलाके में पानी का टैंकर मंगा सकते हैं। यदि आपके पानी आपके क्षेत्र में पानी की कमी हो रही है तो यहाँ पर आपकी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि पानी की हर बूंद जो है वो कीमती है, इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जहाँ पर पानी की कदर होती है वहीं पर जो है वो फ्यूचर भी सिक्योर होता है, भविष्य भी सिक्योर होता है। तो पानी कम आ रहा है या सही आ रहा है, ज़रूरत है उस पानी को बचाए रखने की ताकि आगे के लिए भी हम उस पानी का इस्तेमाल कर सकें। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप, जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: और गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में मैं हूँ आपके साथ कोमल। और साथियों, रफ्तार के बारे में कुछ बात कर लें। दिल्ली की रफ्तार, दिन की रफ्तार और हम सब की रफ्तार। अगर दिल्ली की रफ्तार की बात करें तो इसके लिए एक नई कवायद शुरू हो गई है। दरअसल राजधानी में सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आज से सेंट्रल विस्टा मेट्रो कॉरिडोर पर काम शुरू हो गया है। और इसके तहत जो है वो केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में शहर के विभिन्न हिस्सों में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रांग हो पाएगी। क्योंकि मेट्रो सिर्फ एक यात्रा का साधन नहीं है, बल्कि समय की बचत भी है, कम ट्रैफिक और बेहतर पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सेंट्रल विस्टा दरअसल वो एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि नए सेंट्रल विस्टा जिसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सरकारी भवन है, इंडिया गेट है, इन सभी के आसपास इन सभी मेट्रो स्टेशन को जोड़ते हुए एक नई मेट्रो लाइन यहां पर बनाई जा रही है, जिसमें आर के आश्रम मार्ग से जो है ये इंद्रप्रस्थ तक इसे बनाया जाएगा। ये करीब 10 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर होगा और यहाँ पर बहुत जो इम्पॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन हैं वो बनाए जाएंगे। इससे कनेक्टिविटी जो है वो इंडिया गेट, नया संसद भवन और विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालयों तक पहुँच जाएगी। और यहाँ पर जिन्हें भी जाना है, जो भी यहाँ काम करते हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ राजीव चौक और जो इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन हैं, जैसे कि केंद्रीय सचिवालय हो गया, वहाँ पर भी भीड़ जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब शहर आगे बढ़ता है ना, जब उसकी कनेक्टिविटी मजबूत होती है, तभी शहर आगे बढ़ पाता है। यही है स्मार्ट सिटी की पहचान, क्योंकि हर नया कॉरिडोर शहर को जोड़ने की एक नई डोर है। और हमारा सफ़र आसान हो, समय की बचत हो, यही तो है शहर की, अच्छे शहर की, दिल्ली शहर की निशानी। और यही है हमारी पहचान। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप।

आकाशवाणी का रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जहां पर हम हर घंटे लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे कार्यक्रम में जो आपको तरोताज़ा रखें, आपको जानकारी से परिपूर्ण रखें और आपकी सेहत का भी ध्यान रखें। जी हाँ, सेहत से जुड़ा हुआ हमारा खास प्रोग्राम रोज़ाना दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक आप सभी के लिए आता है रेडियो डॉक्टर। और आज जो है हमारा विषय बहुत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर आपका बढ़ता हुआ वज़न आपकी सेहत के लिए चिंता का कारण बन रहा है, अगर आपकी डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बैरिएट्रिक सर्जरी एक सही विकल्प आपके लिए हो सकती है या नहीं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके जोखिम क्या हैं, और किन लोगों के लिए ये सर्जरी जो है वो सही मानी जाती है, इन्हीं सभी सवालों पर होगी विशेषज्ञ से खास बातचीत कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। हमारे साथ होंगे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर सर्जरी विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली से, और डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस एंड बैरिएट्रिक सर्जरी सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली से। तो अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य मोटापे और उससे जुड़ी हुई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है तो अपने सवाल तैयार रखिएगा दोस्तों, और कार्यक्रम के दौरान फोन करके सीधे विशेषज्ञों से आप बातचीत कर सकते हैं। सुनना ना भूलें रेडियो डॉक्टर रोजाना दोपहर 3 बजे से 4 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है दोस्तों वो वजन घटाने के लिए एक सर्जरी की जाती है। ये उन अत्यधिक मोटे लोगों के लिए एक उपचार है जिनका वजन डाइट और एक्सरसाइज से कम नहीं हो रहा है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे साथ आज दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक।

और दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कोमल को दीजिए इजाजत। उम्मीद है आज की जानकारी ने आपके दिन को थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा बेहतर और थोड़ा सा मुस्कुराहट भरा बनाया होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। मैं हूँ ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, फिर मुलाकात होगी आप सभी से आकाशवाणी रेनबो की ध्वनि तरंगों पर। ऐसे ही तब तक अपना ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी रेनबो 102.6 एफएम पर फिलहाल ये वाणी है मेरी। मेरा नाम है निशा और ये है दिल की तराने, गाने नए पुराने, जहां पर नए गानों के साथ साथ तीन खास रेट्रो गीतों का तड़का भी लगता है। हर रोज आपको ये बात बताते हैं लेकिन कोई नहीं, हम हर रोज बताएंगे ताकि आप भूल ना जाए। तो यस, यहाँ पर बैक टू बैक म्यूजिक का सिलसिला शुरू ही होने वाला है। आप ऐसा कीजिए, अगर दिल्ली और एनसीआर की सड़कों पर कहीं पर भी थोड़ा सा भी कोई ट्रैफिक अपडेट मिलती है आपको, कहीं ट्रैफिक में आप फंसते हैं, तो 9868107070 पर मुझे मैसेज करके बताइए दिल्ली के ट्रैफिक का हाल। एंड कीप लिसनिंग एंड कीप एंजॉयिंग दिल के तराने, गाने नए पुराने।

ना सोना तुआ, बस गाने के बोल सीधे दिल तक पहुंचे, तभी तो ये दिल के तराने गाने नए पुराने हैं, जहां पर इन नए गानों के साथ साथ यस अब फाइनली टाइम है आज के पहले रेट्रो गीत को इंट्रोड्यूस करने का। तो बस मतलब अच्छे से करना चाहिए ना। ये जो फिल्म है जिसका गाना आपके लिए लेकर आई हूँ, दिस इज़ फ्रॉम द मूवी राजकुमार। यस, और ये फिल्म में शमी कपूर थे, साधना थे, प्राण थे, और एक से बढ़कर एक अच्छे एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम किया था। 1964 में ये फिल्म के शंकर साहब ने बनाई थी और उस समय की बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज हिट रही थी, क्योंकि ये कहानी थी होने वाले महाराज भानु प्रताप उर्फ शमी कपूर जी की और उनकी लव इंटरेस्ट साधना, जो कि एक प्रिंसेस का रोल इस फिल्म में उन्होंने निभाया था। और सारे ही गाने पूरी एल्बम के बहुत अच्छे थे, लेकिन इस फिल्म का फिलहाल आज टाइटल ट्रैक लेकर आई हूँ हमारी प्यारी लता जी की आवाज़ में और साथ ही शैलेंद्र के बोल। इंजॉय कीजिए।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

मेरा दिल भी बिल्कुल राजी है अगला रेट्रो गीत प्ले करने के लिए. दिस इज दिल की तरह ने गाने नए पुराने. और अभी दूसरा रेट्रो गीत आपके लिए लेकर आई हूँ. एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी यादों की बारात. 1973 में इस फिल्म को बनाया था नासिर हुसैन साहब ने. और इसमें मल्टी स्टार कास्ट तो थी ही, जैसे कि धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, तारिक खान, जीनत अमान, नीतू सिंह, अजीत, इतने सारे टैलेंटेड एक्टर्स. और उसके साथ इस फिल्म में एक्शन भी था, ड्रामा भी था, रोमांस भी था, म्यूजिक तो फिल्म का अच्छा था ही, और साथ ही एक्शन, थ्रिलर, सब कुछ, मतलब पूरा टोटल मसाला ठूस ठूस के इस फिल्म के अंदर भरा गया था. और तभी इस फिल्म को बहुत सारे लोगों के करियर को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है. उस टाइम की सुपरहिट फिल्म थी ये, जिसमें जीनत अमान और नीतू सिंह को उस जमाने में 70 के दशक में बहुत ही फेमस कर दिया था. लोग पसंद करने लगे थे इन दोनों एक्ट्रेसेस को. तो इसीलिए आज इस फिल्म का गाना मैं लेकर आई हूँ. और एंजॉय कीजिए आप आशा ताई की आवाज़ में इस फिल्म में संगीत था हमारे प्यारे पंचम दा का.

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

दिल के दराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप 102.6 एफएम रेनबो पर। और जब ये नए गानों के बीच में पुराने गाने आते हैं ना, हमारे रेट्रो म्यूजिक आता है ना, तो तब ऐसा लगता है कि भी जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन की एक्सरसाइज होती है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है एक साथ करने में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो हो जाती है और हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन अच्छे से बैलेंस हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा ही इफेक्ट मुझे मेरे माइंड पर देता है जब नए गानों के बीच में रेट्रो गाना आता है। तो यस, आपके लिए आपकी बेस्ट लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एक्सरसाइज के लिए फिलहाल लेकर आई हूँ ब्रह्मचारी फिल्म का गाना। 1968 में ये फिल्म आई थी, बप्पी सोनी साहब ने इस फिल्म को बनाया था। आपको पता ही है इसमें शमी कपूर, राजश्री, प्राण, मुमताज इन एक्टर्स ने काम किया था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। फिल्म में एक बड़ा ही खास गाना था जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वही गाना मैं अभी आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। इस गाने को इनिशियली इस फिल्म से रिजेक्ट कर दिया गया था, हटा दिया गया था कि सूट नहीं कर रहा है किसी सिचुएशन को, लेकिन फिर बाद में शंकर जयकिशन साहब ने एक होटल के कमरे में शमी कपूर जी को ये गाना बड़े आराम से, इस गाने की धुन जो है सुनवाई, तो वो समझ गए बहुत कैची है और बहुत अच्छी है। तो इसीलिए उन्होंने डायरेक्टर बप्पी सोनी को कहा कि क्यों ना इस गाने को शामिल किया जाए फिल्म के अंदर। और जब गाना रिलीज हुआ तो इस धुन पर लोग नाचने लगे और पसंद करने लगे, और शमी कपूर जी को याद करने के लिए ये गाना ना बहुत फेमस हो गया। मतलब जब भी ये गाना बजता है सिर्फ शमी जी हैं जो दिमाग में आते हैं। आपके साथ क्या होता है,

102.6 FM रेनबो पर आज दिल के तराने गाने नए पुराने में बस इतना ही। हाँ, आपका दिल और आपका दिमाग जरूर हमारे साथ जुड़ा रहना चाहिए 102.6 इस फ्रीक्वेंसी पर 954 बाय द स्टूडियो क्लॉस। तो मैं यहाँ से फिलहाल जा रही हूँ, आपको बस खूबसूरत म्यूजिक के साथ छोड़े। सो कीप एंजॉय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट भी बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिनिवेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, विकास की गति को तेज करने और समावेशी विकास के लिए सभी पक्षों से और अधिक सहयोग आवश्यक है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधन में कही। सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की

जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। तमिलनाडु सरकार ने वेतरी तमिलगम दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। इसमें मामा की ओर से सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है। योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में बच्चे का जन्म होने पर राज्य के स्थायी निवासियों के नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती सुशासन और सेवा के लिए शाश्वत प्रेरणा बनी रहेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सेक्स आपके लिए। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर चर्चा की। बैठक में आतंकवाद रोधी तथा सूचना और संचार तकनीक के उपयोग में सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उसके परिणाम की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान के नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है।
1: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य से में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों तथा समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के जिनेवा कार्यालय में ईरान के राजदूत अली बहरीनी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य व्यावसायिक जहाजों के लिए बिना किसी टोल के पूरी तरह खुला है। भारत और अमेरिका ने प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए उच्चस्तरीय वार्ता शुरू की है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत और विदेश में सभी पासपोर्ट प्राधिकरणों को शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन। लेकर आई हूं बॉलीवुड जगत की ढेरों खबरें और इस हफ्ते, इस शुक्रवार को कौन सी फिल्में रिलीज होंगी इस पर बात करेंगे। आई एम श्योर 23 जून को आप सभी की नजरें थी कि हमारे फिल्मी जगत की किन हस्तियों को पद्म सम्मानों से पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा हॉरर की दुनिया में इंतजार है आपको इमरान हाशमी के आने का, तो डेफिनेटली आपके लिए भी कुछ खास है। श्रद्धा कपूर अपनी नई बायोपिक ड्रामा का टीजर आउट लेकर आई हैं। जी हाँ, क्या है इस फिल्म में और कमबैक किसे कहते हैं? मैं वापस आऊंगा। जी हाँ, इस फिल्म से क्लियर होता है कि कमबैक इसी को कहते हैं। और सेंसर बोर्ड की कैंची ने किस फिल्म को काट छाट करके अब फाइनली रिलीज के लिए तैयार कर दिया है और आपके लिए मौका होगा बॉलीवुड सरताज बनने का, तो बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं जाइए। वेलकम है, स्वागत है आपका यहाँ, सिर्फ यहाँ, दिल से दिल तक एफएम रेनबो पर।

0: जी हाँ, वेलकम। तो अब जुलाई मंथ का होगा, लेकिन देखते ही देखते जून जो है एकदम से निकल गया। आखिरी पड़ाव यानी चौथा हफ्ता आ गया है जून का। और कौन सी फिल्में दस्तक दे रही हैं? सुन रही हैं आप प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूँ दिल्ली की चाशनी कुरेश रजन आपके साथ रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि वीकेंड प्लान कर लिया जाए कि कौन कौन सी फिल्में क्या है शुक्रवार को हमारे लिए खास सिनेमाघरों में। तो कुछ फिल्में रिलीज हो रही हैं, उनमें से एक तो यही है जी हाँ, वेलकम टू जंगल। अक्षय कुमार अपनी 30 स्टार्स की फौज के साथ आ रहे हैं, यानी धमा चौकड़ी मचाने के लिए तैयार हैं। और डीसी यूनिवर्स की सुपर गर्ल भी आ रही है। जी हाँ, फिल्म सुपर गर्ल भी आ रही है, इस पर भी बात करते हैं। तो वेलकम टू दी जंगल जी हाँ रिलीज होने जा रही है। यहाँ अक्षय है और उनके साथ है वो 30 सितारे जिन्हें आप पर्दे पर देखकर अपने आप को हंसने से तो डेफिनेटली नहीं रोक सकते हैं। इस बार फिल्म जो है जी हाँ डायरेक्टर अहमद खान ही प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म में, और दिग्गज कलाकारों की पूरी फौज तैयार की गई है। अक्षय कुमार हैं इस यहां पर और कुछ नया कर रहे हैं। अब जो स्टोरी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको पायरेट जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। नाना पाटेकर और अनिल कपूर की बात करें और सुनील शेट्टी, उदय शेट्टी के भाई एज अ भाई यहां पर नजर आएंगे। अरशद वारसी भी मजनू की भाई की भूमिका में नजर आएंगे। और कास्ट में बात करें तो दिशा पाटनी, जैकलीन, परेश रावल, लारा दत्ता, राजपाल, उर्वशी, जाकिर, जैकी श्रॉफ, रवीना, यशपाल, जॉनी, श्रेयस, मुकेश, आफ्ताब, शिव दसानी, फरीदा जलाल, दलेर मेहंदी, तुषार कपूर, कृष्णा अभिषेक, कीकू, विंदु, फिरोज, पुनीत जैसे कई बड़े नाम यहाँ पर फिल्म में शामिल हैं। तो बिल्कुल तैयारी कर ली गई है आपको हंसाने की, गुदगुदाने की। और जैसे मैंने कहा कि सुपर गर्ल जी हाँ, लंबे समय से जो है यहाँ पर इस फिल्म का भी इंतज़ार हो रहा था। कारा जोल के किरदार में यहाँ पर आपको वो फीलिंग्स और वो खोज यात्रा नज़र आती है। सुपर वुमेन, सुपर गर्ल की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास रहता है, क्योंकि बच्चों को इस यूनिवर्स में भी इंटरेस्ट है और साथ ही हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस फिल्मों का। तो ये दो बड़ी फिल्में जिनका कि अब आना तय है इस 26 जून को। आपका इंतज़ार कुछ और भी था जी हाँ, कल बीती रात 23 जून को भी कुछ खास था, उस पर भी आते हैं इस गाने के बाद।
1: सच कह रहा है
0: जी हाँ मैंडी, हमारे 90s के वो हीरो जो सबके सपनों में बसते थे, और ये गाना के की आवाज़ में बेहद खास है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल। जैसे मैंने कहा, कल रात हम सभी की नजरें थी पद्म पुरस्कारों पर, और ये भी कि भारतीय सिनेमा और मनोरंजन जगत की किन दिग्गज हस्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं सबसे प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों पर, जहाँ राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार दिए गए। पहला राउंड तो इसका हम सभी जानते हैं हो चुका, जहाँ पर जो है दिग्गज एक्टर महान कलाकार धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, और ये समारोह तो मई में हुआ था राउंड वन। और राउंड टू की बात करें जो कि कल रात हुआ, यहां जो है कुछ एक्टर्स

और एक्ट्रेसेस को सम्मानित किया गया, जिनमें कुछ नाम शामिल हैं। दिग्गज एक्टर ममुटी को भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। उनका करियर 50 सालों का ये लंबा करियर और 400 से अधिक फिल्में। जी हाँ, प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण दिया गया। जी हाँ, अलका की संगीत यात्रा की बात करें तो ये किसी से भी छुपी नहीं है। वो तमाम गाने जो हमारी जुबान पर है, अलका ने उन्हें अपनी आवाज़ से सजाया है। जी हाँ, इन्हें मिलता है पद्म भूषण और ममुटी को भी मिलता है पद्म भूषण। और वहीं आर माधवन की बात करें, यानी हमारे मैडी की बात करें, तो इन्हें सम्मानित किया जाता है पद्मश्री अवार्ड से। बहुमुखी अभिनेता, फिल्म मेकर के तौर पर माधवन अपनी फिल्म जगत में एक अलग ही पहचान रखते हैं। वहीं एक्टर अनिल कुमार रस्तोगी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिनका कि 100 नाटकों में योगदान रहा है और साथ ही 75 से अधिक फिल्में भी। सतीश शाह की बात करें तो इन्हें भी मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 4 दशकों का लंबा सफर, 40 साल फिल्मी जगत में अपना योगदान दिया सतीश शाह ने। वहीं एक्टर मांगटी मुरली मोहन की बात करें तो 350 से अधिक फिल्में जो है फिल्मी जगत को देने के लिए इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये हमारी एक नज़र, एक रिपोर्ट, जिस पर कि हमने देखा फिल्मी जगत के उन सितारों के बारे में जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद श्रोताओं एक बार फिर आते हैं और कुछ फिल्मों पर बात करते हैं।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
9: रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी गुरी सृजन। और अगली बार यहां सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी है एक फिल्म के कुछ सीन्स पर। किस पर बात कर रही हूं? चलिए पहले हम एक गाना सुन लेते हैं। जी हां, श्रद्धा कपूर की फिल्म से ये गाना, और श्रद्धा ईथा भी आपके लिए लेकर आ रही है, एक बायोपिक ड्रामा है, टीजर आउट हुआ है, फिल्म पर बात करते हैं।

वैसे इसमें भी अपने आप में खास बात है कि आपसे कुछ नहीं छुप सकता। जी हाँ दोस्त, आज मेरी तबीयत यानी मेरा गला थोड़ा सा नासाज है, लेकिन हमारी खबरें पूरी पक्की हैं और आपके लिए ये शो बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर मैं हूँ दिल्ली के चाशनी कुरे सृजन आपके साथ आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। जी हाँ, अगली बात करने जा रहे हैं कॉमेडी फिल्म वेलकम टू दी जंगल की। जी हाँ, 4 दिन बाद सिनेमाघरों में, चार तो नहीं बचे हैं, तो सिर्फ 2-3 दिन ही बचे हैं। 2-3 दिन भी हम पूरा बोलते हैं ना कि फ्राइडे, दिस फ्राइडे 26 जून, 2 दिन बाद ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। 18 सीन्स को यहाँ पर एडिट करने के निर्देश मिले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन या सेंसर बोर्ड से, जो है इसे अब हरी झंडी मिल गई है। लेकिन 18 सीन्स को जो है यहाँ पर एडिट किया गया और उसके बाद जो है इसे UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया गया। फिल्म में कुछ सीन्स, कुछ डायलॉग, एक 10 सेकंड का पूरा सीन हटाने का निर्देश दिया गया। वहीं कुछ डायलॉग्स, कुछ वर्ड्स को भी एडिट किया गया है और जहां जरूरी था वहां शब्दों को म्यूट करके आगे एकदम से बिल्कुल क्विक निकाल दिया गया है। और अब जो फिल्म है उसका रन टाइम होगा 2 घंटे 44 मिनट 50 सेकंड का। जी हाँ, UA 16+ सर्टिफिकेट, 164 मिनट 50 सेकंड की ये फिल्म सिनेमाघरों में 26 जून को रिलीज की जाएगी। डायरेक्टर है अहमद खान। अगली बात करें तो जी हाँ, जैसे मैंने कहा श्रद्धा आपके लिए ईथा लेकर आ रही हैं। ईथा फिल्म की बात करें तो फिल्म का टीजर आउट हुआ है यहाँ पर और इस बायोपिक ड्रामा फिल्म में श्रद्धा की धांसू एक्टिंग, दमदार एक्टिंग का जलवा तो देखने को मिल ही रहा है। अपनी जो है स्त्री वाली भूमिका से, स्त्री फिल्मों की फ्रेंचाइजी से श्रद्धा ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। वहीं ईथा का टीजर आउट हुआ है और अब ये टॉपिक हॉट है। जी हाँ, अब चर्चा का विषय बन चुका है ये फिल्म। फिल्म की बात करें तो महाराष्ट्र की मशहूर लोक कलाकार विठा भाई भाऊ मांग नारायण गांवकर के जीवन पर आधारित ये बायोपिक है। कैसे विठा जो है जीवन संघर्ष और सफलता हासिल करती है, इसे बड़े रोचक तरीके से दर्शाया गया है। विठा भाई की बात करें तो तमाशा क्वीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और श्रद्धा यहाँ इस किरदार में पूरी जो है उतरी हुई यानी ढली हुई नजर आती है। अब आप जानना चाहेंगे कि फिल्म में और

कौन कौन है? तो इथा में आपको नजर आएंगे रणदीप हुड्डा, जिशान भी जो है इस फिल्म में नजर आएंगे, और छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर की ये फिल्म है। तो फैंस जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आई एम श्योर 28 अगस्त, नोट कर लीजिए डेट, रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को फिल्म सिनेमा घरों में दस्तक देगी। और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का क्लैश भी हो रहा है जहाँ यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक के साथ। तो देखते हैं क्या दमदार जंग रहेगी इन दोनों फिल्मों के बीच में। टिल देन फिकर नॉट, आपके लिए बस कुछ ही देर में लेकर आऊंगी बॉलीवुड सरताज का सवाल। सुनते रहिए मेरे यानी सृजन के साथ प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूं आपके साथ सृजन। तो जी हाँ, अब बात करते हैं कॉकटेल 2 की। शाहिद, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना, कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के शुरुआती 5 दिनों में नेट कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में जो है 61 करोड़ के आसपास का बिजनेस फिल्म कर चुकी है, वहीं वर्ल्ड वाइड 95 करोड़ जो है इसे कुछ ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने जो है भारत में स्टार्टिंग की, इंडिया में अपने कलेक्शन की स्टार्टिंग की पहले दिन जो है फ्राइडे को 13.5 करोड़ के साथ। फिर सैटरडे आया, संडे आया, वीकेंड आया और यहाँ पर भी फिल्म जो है 16 करोड़ 17 करोड़ का ऐसे बिजनेस करती रहती है। और फिर जैसे इंडिया में अगर इन 5 दिन की कुछ आसपास की कलेक्शन करें तो जैसे मैंने कहा 61 करोड़ का नेट कलेक्शन यहाँ पर करती है। अब आप कह रहे हो कि सृजन, यहाँ पर आप इस फिल्म की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ खास है, तो आप जो है अब सोचिए कि मेरा सवाल क्या हो सकता है। इसी फिल्म के आसपास सवाल पूछने जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी ओटीपी आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
5: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से। प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ, अब आपके लिए सवाल जिसका आप सभी को रहता है इंतजार बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। सुन लीजिए सवाल। अरे ये क्या सवाल के साथ साथ मंत्र? जी हाँ, मंत्र तो मुझे लगता है कभी कभी जरूरत पड़ ही जाती है ना कि आप मंत्रोच्चारण करें और आपका काम बन जाए। देखिए वैसे ये इस बात में भी अपनी एक पॉजिटिविटी छुपी है, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। फिलहाल आप सुनिए सवाल। सवाल ध्यान से सुनिए। यहाँ जो है कॉकटेल 2 में आपको नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर और कृति सेनन, ये दोनों एक साथ पहले भी नजर आ चुके हैं। फिल्म 2024 में आई थी, कौन सी है ये फिल्म?

0: सवाल तो सुन लिया, लेकिन सवाल का जवाब मुझे भेजना कैसे है ये भी जान लीजिए। व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए मेरा और उसके बाद भेज दीजिए। जी नंबर है 9868107070, 9868107070। बताइए कॉकटेल 2 की ये जोड़ी शाहिद कपूर और कृति सैरन की 2024 में किस फिल्म में साथ नजर आती है।
1: Will you marry me?
2: No.

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: सुन रहे हैं आप प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स मेरे यानी सृजन के साथ और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी के साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अनेक मीडियम्स हैं जिनके जरिए आप हमसे दिल से दिल तक कनेक्टेड हैं। जी आप सवाल एक बार फिर दोहरा देती हूँ और फिर अगली बात पर आती हूँ। देखिए सवाल है कि आपको मुझे बताना है कि शाहिद कपूर और कृति सेनन जो कि अभी रिसेंटली कॉकटेल 2 में एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी ये दोनों दो साल पहले 2024 में एक फिल्म आई थी जहां पर ये साथ नजर आए थे। मैंने हिंट के तौर पर ईयर बता दिया है, तो आपको मुझे बताना है कि इस फिल्म का क्या नाम है और जवाब आपको मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, ये है 9868107070। तो अब आते हैं जिसका कि मैंने आपके लिए अनाउंसमेंट की थी जब हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था इमरान हाशमी जो है वो एक बार फिर एक ऐसे जोनर की फिल्म में आ रहे हैं जिसका कि आपको इंतजार है। जी हाँ, हॉरर फिल्म हो, जब इमरान और हॉरर ऐसा ये जोनर आता है तो फैंस का इंतजार कुछ अलग ही लेवल पर चला जाता है। इमरान जो है फिलहाल कमबैक तो कर ही रहे हैं काफी सारी फिल्मों के साथ, आवारापन 2 भी लेकर आ रहे हैं जहां वही खूंखार विलन और क्या बात है वो इमरान हाशमी की मोहब्बत वाली कहानियां जी हाँ, रोमांस का तड़का तो वो लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हॉरर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। किस फिल्म की बात कर रही हूँ? इमरान हाशमी लेकर आ रहे हैं इस जोनर की फिल्म, म्यूजिकल हॉरर फिल्म रू। फिल्म की सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है अभी, फिल्म 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जी हाँ, एक साल का सा इंतजार है और साल तो बस यूं ही बातों में निकल जाता है और एक दिन हम इस फिल्म की भी बात कर रहे होंगे। रू के बारे में अगर इमरान की कहें तो वो खुद कहते हैं कि एक ऐसी फिल्म है इस माने कि वो हॉरर इमोशनल फिल्मों में से एक है जहाँ पर म्यूजिक भी मतलब ज़बरदस्त मेल है कहानी के खुलासे को लेकर। कहानी किस बारे में, इस बारे में तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन अब अगर पारापन 2 की ही बात कर लें तो फैंस का इंतज़ार ख़त्म होता है। ये फिल्म जो है आ रही है 14 अगस्त को थिएटर्स में, और रू के बारे में बात करें तो रू मयंक शर्मा और विशाल कपूर ने लिखी है जो कि वो लुका छुपी और हॉरर सस्पेंस क्रिएट करने में कहीं ना कहीं शानदार भूमिका निभाते हैं। डायरेक्टर भी मयंक होगी और फिल्म के लिए करना होगा एक साल का इंतजार।

लेकिन मैं तो इंतजार नहीं करूंगी, मैं तो इंतजार में हूँ कि जल्दी से मुझे मिल जाए आज का बॉलीवुड सरताज। बताइए मुझे, शाहिद और कृति सेनन 2024 में किस फिल्म में एक साथ नजर आए थे?

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो और कुछ ही देर में आप सुनेंगे वो आवाज जिसका था हमें इंतजार। जी हाँ, बॉलीवुड सरताज के साथ बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कमबैक की। जी हाँ, कमबैक वाकई इसे कहा जाता है, मैं वापस आऊंगा। फिल्म के फर्स्ट वीक की कमाई की बात करें तो 12 करोड़, वहीं अगर सेकेंड वीक के वीकेंड

की बात करें, बस उन्हीं 4 दिनों में फिल्म ने अच्छा खासा बजट जो है अपने लिए निकाल ही लिया है, बजट का वो हिस्सा जो कि बहुत ज़रूरी था निकालना अगर फिल्म को हिट साबित होना है। इस पर मैंने आपको बताया था कि 80 करोड़ के आसपास के बजट में फिल्म तैयार हुई है, तो अब कम से कम 90 करोड़ की तो कमाई कर ही डाले फिल्म ताकि हिट साबित हो जाए। फिल्म की कहानी अगर व्यूअर्स की माने, जो कि फिल्म देख कर आ चुके हैं उनकी माने, तो वो तो कहते हैं जी फिल्म की कहानी तो बढ़िया है और एक्टर एक्ट्रेसेस बिल्कुल दमदार, बिल्कुल शानदार। इनके नाम ले लें तो शर्वरी हैं, दिलजीत, वेदांग, नसरुद्दीन शाह, सयानी, रजत, मनीष, ये सभी वो कलाकार हैं जो कि बड़े पर्दे पर अपने फैंस को कहीं जाने नहीं देते। डायरेक्टर हैं इम्तियाज अली। और फिल्म की अब कमाई की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई फिल्म ने कुछ 52.5 करोड़ की कर ली है, और वहीं इंडियन कलेक्शन की बात करें तो डोमेस्टिक सिनेमाघरों में जो है फिल्म कहीं 27 करोड़ का जो अपना कलेक्शन है वो निकालने में अभी कामयाब नजर आती है। और अब देखते हैं, अभी तो फिल्म कई स्क्रीन्स पर कई सिनेमाघरों में है ही, तो यानी हो सकता है कि फिल्म कर जाए वो रिमार्केबल काम जिसका सभी को है इंतज़ार। और आप मुझे तब तक ये बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि शाहिद कपूर और कृति सैनन कॉकटेल 2 में जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले 2024 में ये किस फिल्म में साथ नजर आते हैं? ये गाना मुझे बहुत पसंद है। शायद जब यहाँ पर ऐसे साड़ी के फॉल इस ऐसे ठुमके ठुमके लगाते हैं तो बढ़िया अच्छे ही लगते हैं ना। ये हमारे वो चॉकलेटी बॉय हैं जिनको 90s में एल्बम्स में देखने का हमारा अलग ही क्रेज हुआ करता था।

0: रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से कार्यक्रम है बॉलीवुड ट्रेल्स और अब होता है इंतजार खत्म आज के बॉलीवुड सरताज का सवाल. मैंने पूछा है कि शाहिद कपूर और कृति सेनन कॉकटेल 2 से पहले किस फिल्म में साथ नजर आते हैं और जवाब लेकर आई हैं हमारे साथ कौन, आइए मिलते हैं. हेलो.
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, स्वागत है. सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए.
1: मेरा नाम मीनाक्षी है मैम, मैं दिल्ली सहादरा से बात कर रही हूँ.
0: जी मीनाक्षी, स्वागत है आपका. मीनाक्षी, क्या करती हैं आप, पहले अपने बारे में कुछ बताइए.
1: मैम मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में.
0: ओह वेरी नाइस, अभी तो मेरे ख्याल से आप छुट्टियाँ एंजॉय कर रही होंगी.
1: बस ये गलत फहमी है ना, यही दूर करनी है, कोई छुट्टियाँ नहीं है. अभी हमने सेंसस कवर किया है 15 तारीख तक.
0: जी, और आप ही अध्यापकों का सहारा है हमें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो सारे जरूरी काम करते हैं और हमारे लिए सबसे जरूरी जो है हमारा भविष्य निर्माण, यानी हमारे बच्चों को तैयार करते हैं हमारे टीचर्स. मीनाक्षी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. तो सवाल का जवाब क्या है?
1: सवाल का जवाब है कि इन दोनों की पहली फिल्म थी तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया.
0: क्या बात है, देखिए आपने.
1: हाँ जी मैम, देखिए.
0: हाँ बिल्कुल, यही है सही जवाब, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया. तो
1: ये बैठे मैंने दिल खो दिया.
0: क्या बात है मीनाक्षी, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, गाती भी अच्छा है, आई एम श्योर घर भी संभालती होंगी, टीचर भी है, तो आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं. बहुत मन कर रहा है आज आपकी आवाज सुन के कि आपसे मिला जाए.
1: मैम ऐसा है, जब भी घर में काम करती हूँ तो FM मेरा दोस्त बन जाता है, पूरी एनर्जी देता है काम करते वक्त.
0: ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जो दोस्ती है ना, ये सुनते सुनते इतनी मजबूत हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे को बस एकदम आपसी रिश्ते की तरह जानते हैं.
1: हाँ जी
0: मीनाक्षी, थैंक यू सो मच एंड आई रियली विश कि आप ऐसे ही खुश रहें. आपकी ये जो प्यारी सी हंसी है जो मुझे आवाज में समझ आ गई है, ये बनी रहे. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत
1: थैंक यू मैम. थैंक यू,
0: हैव अ नाइस डे.
1: ओके, बाय बाय
0: बाय. तो ये मीनाक्षी जिन्होंने दिया सही जवाब, और अब मैं आपके लिए प्ले करती हूँ इस फिल्म से गाना. जी ये वाला.

0: कांट से मोहम्मद फुरकान साहब सही जवाब लिखते हैं, उमेश कुमार खयाला से, बसंत मेरठ से, प्रदीप वसंत विहार से, विनोद भटिंडा से, अर्चना दिल्ली से, मीनाक्षी हमारी आज की बनी बॉलीवुड से, ताज विनीत बदायूं से और मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से जवाब भेज रही हैं। सुखलाल जी हैं वेस्ट बंगाल से, हमारे श्रोता मोहम्मद इम्तियाज जी जवाहर कैंप कीर्ति नगर से सही जवाब भेज रहे हैं। शाद का भी सही जवाब मिला है, आसिफ मेरठ से, रंजय सिंह मेरठ से लिखते हैं, रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, धर्मशाला से ईशा का जवाब आया है और प्रवीण जी मध्य प्रदेश से जवाब भेज रहे हैं। तरुण जी मेरठ से और ये हैं सलीम मलिक मेरठ से, शिव मेरठ से और ये हुए सारे वो श्रोता जिन्होंने भेजा है। अरे ये भी रह गए हैं, हाँ बुराड़ी दिल्ली से हैं ये सुरजस्व एंड असम से हितेंद्र। और अब कि आप सुने मुख्य समाचार, मैं आपसे फिर मिलूंगी लेकर प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। सुनते रहिए रेनबो दिल से दिल तक।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सह अध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद के टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।
1: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 2,85,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी ये उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को वहां से निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेस ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग लिया जाएगा। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खासतौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता भी दोहराई। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए एक नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर रखने को कहा गया है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप के में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, who's next?
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Okay, that was, of course, Bahama Mama by Boney M. Coming up, a short little break. Remember, you tuned in with me live only on Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. This is Play It Cool with me, Pooja Anand.
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
9: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
8: अल्फा जेन,
9: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सदस्य के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सदस्य के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत की लंबे समय

0: से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। देश में रह रहे भारतीय नागरिकों और बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी तथा सतर्कता बरतने और स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है। 4 महीने से चल रहे पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने टोल वसूली को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के 2रे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस्पात उद्योग से भविष्य के विकास के लिए डिजिटलीकरण अपनाने को कहा है। आज नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर आयोजित चिंतन शिविर में उन्होंने ये बात कही। इस्पात क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए श्री कुमार स्वामी ने कहा कि देश वर्ष 2018 से विश्व के 2रे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। प्रवर्तन निदेशालय मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शम शुदरुन और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया और कहा कि ये परियोजना आवागमन को सुगम बनाएगी।
1: बहुत ही ऐतिहासिक मूवमेंट है जब देश की राजधानी जहां से पूरी सरकार चलनी है सेंट्रल विस्टा और यहां के कर्मचारी और यहां के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहां जहां मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक जिसके अंदर 9 स्टेशन्स है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 603 अंक के उछाल के साथ 76,804 पर जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूँ

0: आपके साथ सृजन राजपूत और कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका हमारा आज का रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम का विषय है। जब भी अक्सर किसी से मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं कैसे हो, और वहाँ से जवाब आता है मैं सही हूँ, बढ़िया हूँ, और जवाब में आप भी ऐसा ही कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। क्योंकि हमने देखा कि जब आप उससे मिले तो वो आपको स्वस्थ दिखाई दे रहा था शारीरिक रूप से, बाहरी रूप से, लेकिन क्या आपने सोचा कि उसने ये जवाब देते हुए वो थोड़ा स्ट्रेस्ड था, या फिर उसके चेहरे पर वो लकीरें, वो तनाव आपको नज़र आ रहा था? तो क्या स्वस्थ होने की परिभाषा यही है कि आप बाहरी रूप से सही हैं लेकिन आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा है, आप उलझे हुए हैं और फिर भी कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें छुपा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये विषय क्या है पूरा? और अगर हम छात्रों के संदर्भ में बात करें तो वो नव युवा, वो नवकली जिनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, वो अभी अभी युवा हो रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, प्रेशर है उनके ऊपर एक, और इसके बीच में शायद वो कभी अपने बड़ों से बात करते हो तो वो कहते हो कि अभी तुम बच्चे हो, इसमें मत पढ़ो। कभी वो जवाब देते हो कि इतने बड़े हो गए हो, इस बात को भी नहीं समझते। वे अपने एक द्वंद्व की स्थिति में है, ये सब क्या चल रहा है? उनका जो ये स्वास्थ्य है, यानी उनका जो मेंटल प्रेशर है, मानसिक स्वास्थ्य है, क्या वो ठीक है? क्या हम कभी इस पर बात करते हैं कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को भी समझा जाए? ओवरऑल स्वास्थ्य की परिभाषा, मानसिक स्वास्थ्य छात्रों के संदर्भ में, इस विषय को आज हम जानेंगे हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से, जो कि हैं लॉ एक्सपर्ट। स्वागत करते हैं मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार सृजन, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी इस पेशकश में मुझे शामिल करने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने के लिए। जैसे कि आपने जो प्रश्न किया है कि आज के टाइम पे मानसिक जो स्वास्थ्य है उसमें जो इंस्टीट्यूशन है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वो क्या भूमिका है उनकी और कितना योगदान है उसका स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ में।
0: बिल्कुल, ये हमारा विषय है और इस पर बातचीत शुरू करने से पहले, से स्थापित करने से पहले अपने श्रोताओं को भी कार्यक्रम का हिस्सा बना लें। विषय से संबंधित आपका यदि कोई सवाल है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन में, तो आप हमसे अपने प्रश्नों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, ये नंबर है 9868107070, 9868107070। दो फोन लाइन अवेलेबल है जिनके जरिए आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, यानी हमारी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 01101011 दिल्ली का एसटीडी कोड लगाएं और उसके बाद नंबर डायल करें 2342108080, और दूसरा नंबर है 2342108082, 2342108023421082। तो सबसे पहले श्वेता मैम, प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से जानते हैं कि स्वस्थ होना और मानसिक स्वास्थ्य से हमारा क्या संदर्भ है, और जब छात्रों से हम इस विषय को जोड़ते हैं, छात्रों के संदर्भ में हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करने जाते हैं, और फिर इस ट्रायंगल का एक हिस्सा है संस्थान, समाज, पेरेंट्स, टीचर, स्कूल, कॉलेजेस, इस पर हम अपने विषय को समझते हैं।
1: जी देखिए, जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग है, जो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज का जो जीवन शैली है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, और उसमें जो शैक्षणिक संस्थान हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करते हैं। पहले हम समझते हैं कि जिस मेंटल हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, उसका अर्थ क्या है। मानसिक स्वास्थ्य मीन बहुत एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे जो लाइफ है उसके हर एस्पेक्ट को वो टच करता है। चाहे हमें ये समझना हो कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, हमारी सोचने की शक्ति है, या फिर हमारा स्लीप पैटर्न कैसा है, तो इसको अगर हम समझेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली, अगर आप स्वस्थ हैं
0: जी,
1: तो वो मेंटल हेल्थ, हम उसको, उसका जो अर्थ है कि अगर आप स्वस्थ हैं इमोशनली, साइकोलॉजिकली और सोशली, अगर आप स्वस्थ हैं, और उसमें आज के संदर्भ में अगर आप देखेंगे कि जो संशोधन है

0: वो ये कहते हैं कि जो 65 से 70% जो है, जो उसमें कि जो मेंटल हेल्थ है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो इस मोड़ पे पहुंच चुका है कि जो व्यसक हैं, 60 to 70% जो व्यसक, अगर हम बात करें 18 से 34 वर्ष की आयु
1: यानी
0: तक,
1: यंगस्टर्स हमारे.
0: हाँ, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, किसी मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, एकेडमिक प्रेशर हो, एग्जाइटी है, डिप्रेशन है. तो ये बहुत सारे ये मुख्य कारण हैं
1: जी.
0: जिसकी वजह से जो छात्र हैं, स्पेशली जो छात्र, मैंने 18 से 34 वर्ष के आयु के व्यस्कों की मैंने जो बात करी है, वो किसी ना किसी जो परेशानी है, जो हम
1: जी, कोई
0: डिप्रेशन
1: मानसिक अवसाद
0: हैं,
1: है.
0: जिसकी वजह से वो जूझ रहे हैं. तो मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि हमारी जो जीवन शैली है बहुत तेजी से बदल रही है, और उसके साथ साथ जो हमारा फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है. और साथ के साथ जो सबसे ज्यादा व्यसक आज के टाइम में आप एक चीज देखते हैं कि जो यंगस्टर हैं, चाहे वो आप हैं या मैं भी हूं इस उम्र में भी, ज्यादा वो किसके साथ कनेक्ट करते हैं, वो सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट
1: जी.
0: करते हैं. आज के टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना डिफिकल्ट नहीं है. हम पूरे संसार के साथ 1 सेकंड में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक छात्र है वो कहीं ना कहीं वो जो आइसोलेशन है, जिसको हम सोशल आइसोलेशन है, वो बहुत बढ़ती जा रही है हमारे
1: जी
0: समाज में.
1: बिल्कुल.
0: तो ये जो मुख्य कारण है, आई थिंक इस पे विचार करना और इस पे जो इंस्टीट्यूशन की इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत अहम हो गई है कि जो जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो उस पे काम करें. और क्योंकि देखिए, पहले के टाइम पे, आज से अगर हम 10 साल पहले बात करें,
1: जी.
0: जो साइकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इस पे बात करी कि हमारा जो यूथ है, उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ट्रबल में है.
1: जी.
0: उन्होंने ये अलार्म रेज किया था कि द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट इज इन ट्रबल.
1: राइट.
0: तो इस पे जो हम तो इसीलिए, क्योंकि देखिए, अगर पहले इंस्टीट्यूशन की आप भूमिका को अगर आप देखते थे, तो एकेडमिक एक्सीलेंस था, जो
1: जी.
0: इंस्टीट्यूशन का जो फोकस था वो दी एकेडमिक एक्सीलेंस था, परिणाम
1: जी.
0: बेस्ड था, सक्सेसफुल जो इंटेलेक्चुअल प्रोड्यूस करना था.
1: राइट.
0: लेकिन आज के टाइम पे जो भूमिका है, जो इंस्टीट्यूशन की जो भूमिका है, उसमें चेंज हो रहा है.
1: जी.
0: उसमें इंस्टीट्यूशन को बहुत स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग जो यूथ का निर्माण करना है.
1: बिल्कुल. सही कह रही है मैम. और क्योंकि यही युवा आगे चल के हमारा भविष्य होंगे, तो ज़रूरी है कि इन्हें मजबूती से तैयार किया जाए, और सिर्फ इनको शारीरिक रूप से ही नहीं, इन्हें मानसिक रूप से भी स्वस्थ ही तैयार किया जाए. ये हमारा आज का विषय. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. इस विषय को आज हम जान रहे हैं हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक होगा जो कहता है फर्स्ट क्लास है. तो ये कहने के लिए भी आपको मेंटली और शारीरिक तौर से भी, और आपको फिजिकली भी बिल्कुल तैयार होना होगा, स्वस्थ होना होगा.

0: जी हाँ, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। ऐसा कहने के लिए आपको फिट होना होगा, और फिट होना सिर्फ आपका फिजिकल फिट होना नहीं होगा, यह आपका मेंटली भी फिट होना होगा। सर, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप रेनबो हेल्पलाइन आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। बात कर रहे हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका विषय पर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा। तो श्वेता मैम, हमारे साथ एक श्रोता हैं, सबसे पहले इनका प्रश्न लेते हैं और उसके बाद आगे के इस विषय पर जो प्रश्न बनते हैं उन पर भी चलेंगे। हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। अपना परिचय
1: जी। नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार
0: जी। परिचय देंगे अपना
1: जी। अमित चारी बात कर रहा हूँ, ग्राम नंगोला आपको यूपी से।
0: जी अमित जी, स्वागत है। आप अपना सवाल बताएं।
1: जी जी मैम, श्वेता से मेरा ये सवाल है। नमस्कार मैम।
2: नमस्कार।
1: सवाल है
2: जी,
1: मेरा सवाल ये है कि जब छात्रों को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खान पान में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न किया है अमित जी आपने, हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो खाना है वो एक तरीके का फ्यूल है, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है। वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, जैसे गाड़ी चलने के लिए उसको फ्यूल चाहिए, ऐसे दिमाग को चलाने के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में चाहे आप ओमेगा 3 की बात करें, विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, हेल्दी फैट्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी माइंड को वर्क करने के लिए। तो इसी के साथ साथ इसी प्रोग्राम के माध्यम से और आपके प्रश्न के माध्यम से हम अपने लिसनर्स को यही बताना चाहेंगे कि जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, क्योंकि उससे क्या होता है,

0: ये साइंस साइंटिफिक टर्म्स हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो ब्लड शुगर है वो बहुत स्पाइक होता है, कि जो स्ट्रेस हार्मोन है उससे इंक्रीज होते हैं. तो इसलिए अगर कोई मेंटल हेल्थ पेशेंट है, कोई एग्जाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, तो उनको जिसमें ब्लड शुगर स्पाइक होता है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करना चाहिए.
1: ठीक है। तो अमित जी, आई एम श्योर आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और श्वेता मैम, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने फूड पर भी बात की, तो ऐसे में कुछ अर्ली साइंस भी तो हैं जिनके जरिए हम पहचान सकते हैं कि कोई छात्र जो है वो तनाव, चिंता या एन्जाइटी से ग्रसित है। मीन्स क्या साइंस होंगे, क्या लक्षण उस पर्सन में नज़र आ रहे होंगे?
0: जी, देखिए, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना कि जो एक छात्र है वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है,
1: जी
0: क्योंकि जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत एक सेंसिटिव एरिया है और ये बहुत हिडन एरिया है. इस पे अवेयरनेस लोगों में अभी बहुत कम है. तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं, कई बार उनको भी नहीं ये पता चलता, अभिभावकों को भी नहीं ये पहचान पाते हैं कि घर में जो उनका बच्चा है वो किसी एग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार है.
1: जी
0: लेकिन मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से जो अभिभावक हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि अगर कभी भी उनको किसी स्टेज पे ये लगता है कि जो उनका बच्चा है वो पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, स्लीप
1: जी
0: डिसऑर्डर है, या फिर उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, तो उसके ये हम अर्ली साइंस बोलते हैं. लेकिन अगर इसको जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया, तीन विभागों में इसको बांटा है, जिसको हम कहते हैं बिहेवियर,
1: ठीक है।
0: इमोशनल और फिजिकल कैटेगरी. तो बिहेवियर में सबसे पहले ये है कि अगर आप सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, सोशल विड्रॉल है,
1: जी
0: कि जैसे घर पे गेस्ट आए हुए हैं लेकिन जो बच्चा है वो अलग से जाके कमरे में बैठ जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, स्कूल जाना या कॉलेज जाना कम कर देता है या बंद ही कर देता है, इवन यूज ऑफ एल्कोहल, ये भी कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं. अच्छा,
1: जी
0: फिर हम बात करें अगर इमोशनल डिस्ट्रेस की, अगर हम बात करें तो उसमें कहते हैं कि जैसे मूड स्विंग्स हैं, एंगर बहुत ज़्यादा बच्चे में बढ़ गया है या फियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
1: जी
0: तो इसको हम इमोशनल डिस्ट्रेस बोलते हैं. अच्छा, फिर फिजिकल कैटेगरी में है स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, या फिर कोई बॉडी एक है या बॉडी पेन है,
1: जी
0: हेडेक है. तो बेसिकली ये एक अर्ली साइन है जिसको एक लेमैन भी पहचान सकता है सिर्फ एक बातचीत के माध्यम से,
1: जी
0: कि क्या जिससे हम बात कर रहे हैं या हमारा बच्चा है या एक छात्र है, कहीं वो किसी जो मानसिक तनाव है उससे तो नहीं जूझ रहा.
1: बिल्कुल मैम, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ अब आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि हमारा विषय है, हम इंस्टीट्यूशंस के रोल पर भी बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका है जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को मजबूती दे सकती है, प्रभावित करती है? क्या कदम होने चाहिए? आते हैं विषय पर।
0: जी, देखिए, आपने अक्सर यही देखा होगा जब भी हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हों, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों, तो हम अक्सर जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है या शैक्षणिक संस्थान है उनकी जो भूमिका है या उनको जो हम आइडेंटिफाई करते हैं वो उनकी परिणामों से करते हैं,
1: जी
0: राइट? तो लेकिन आज के समय में ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ की ग्रोथ में बहुत अहम भूमिका
1: निभाते
0: निभाते
1: हैं,
0: हैं.
1: बिल्कुल।
0: जैसे इसमें मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली 2025 में जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं. दिशा निर्देश सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिए हैं और यूजीसी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके लिए जो मेंटल हेल्थ है उसको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए.
1: जी बिल्कुल।
0: उसके लिए उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उन्होंने ये मैंडेटरी किया है, जो गाइडलाइंस हैं या जो दिशा निर्देश हैं, कि हर इंस्टीट्यूशन में एक काउंसलर, एक काउंसलिंग जो सर्विस सेंटर है वो सेटअप किया जाए, जहाँ पे एक परमानेंट काउंसलर होना चाहिए
1: जी.
0: जो एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, और साथ के साथ वो अपना एक जो पॉलिसी है, हर इंस्टीट्यूशन को एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो है वो एक फ्रेमवर्क जो है वो प्रिपेयर करना है. साथ के साथ उन्होंने जो जोर दिया है यूजीसी ने, वो जोर दिया है मेंटर और मेंटी प्रोग्राम पे. जैसे हम पहले के समय में जो हम गुरु और शिष्य की जो प्रथा की हम बात करते थे, आज के टाइम पे भी यूजीसी ने इस पे जोर दिया है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रमोट करे मेंटर मेंटी को, गुरु शिष्य की परंपरा को आगे लेके जाए, जिससे कि जो स्टूडेंट है वो एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करे, जो स्टूडेंट है वो टीचर के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करे. और उसके साथ के साथ, क्योंकि जो बुलिंग के केसेस हैं या जो एंटी रैगिंग है, वो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप होना चाहिए, और साथ के साथ एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क भी रेडी होना चाहिए कि जिससे साथ, और लाइफ स्किल पे भी जोर देना चाहिए. तो ये मुख्य दिशा निर्देश हैं जो यूजीसी ने हर शैक्षणिक संस्थान को दिए हैं, ताकि वो जोर दे सकें, ताकि वो मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे सकें.
1: जी मैम, जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं ये बिल्कुल आज का समय है, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि इतना सब नहीं था, ना तो इस बारे में इतनी बात होती थी और ना ही ये कि इस तरह से संस्थान की तैयारियां करवाई जाती थी, क्योंकि अनलेस पहले तो यही था कि रिजल्ट आना चाहिए, आपको एक आउटपुट देना है, डिग्री देनी है, सिर्फ यहीं तक बात होती थी. लेकिन अब क्योंकि इंस्टीट्यूशंस भी इस चीज को लेकर अलर्ट हैं कि नहीं, हमें बच्चों की ओर भी ध्यान देना है कि उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी सही दिशा में रहनी चाहिए.
0: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है सृजन. इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपसे, जैसे हमने पहले भी अपनी चर्चा में जिक्र किया, कि जो सोसाइटी है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है. अगर आज से आप 10 साल पहले जाएंगे तो इस पे हम बात भी नहीं करते थे
1: जी.
0: इस पे कोई इतनी चर्चा नहीं थी, इस पे इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी. इसकी ज़रूरत देखिए, वो सबसे ज़्यादा जो मैं देखती हूँ, जो मैं अपने टीचिंग करियर में मैं देखती हूँ, इसका जो बदलाव है उसके जो मुख्य कारण है, एक तो हमारी जीवन शैली में बढ़ता हुआ बदलाव है, जो एक पारिवारिक जो चेंज है, और साथ के साथ जिस पे हम बात करते हैं जेनरेशनल डिवाइड की, जिस पे हम बात करते हैं वो, क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में अगर आप देखेंगे, और इसको मैं सबसे ज्यादा मैं लिंक करती हूँ, हमारा सोशल मीडिया
1: जी
0: बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो इमोशनल डिस्कनेक्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है. देखिए पहले क्या होता था कि जो बच्चे थे घर में, जो हमारा जो परिवार का जो स्ट्रक्चर था वो जॉइंट फैमिली थी. घर में कोई ना कोई होता था, कोई बड़े होते थे, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नाना नानी, दादा दादी, वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था. अगर स्टूडेंट को, अगर बच्चा है, अगर किसी ना किसी परेशानी थी तो घर में कोई होता था उसको सुनने के लिए.
1: बिल्कुल, आज उसका वो जो रिश्ता है वो उसके दादाजी के साथ बेहतर हो सकता है, उसके बड़े भाई के साथ, कोई ना कोई तो था.
0: अभी क्या है कि जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फैमिली में है, सब पेरेंट्स जो है वो वर्किंग है, मदर्स भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि जो जो टाइम, जो फैमिली जो टाइम है वो बहुत सिकुड़ता जा रहा है. पेरेंट्स बच्चों के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं, और बच्चे अपने पेरेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं किसके साथ कनेक्टेड है, वो सोशल मीडिया से बात करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट है वो उनसे अपनी बातें जो शेयर करते हैं. तो ये इसीलिए ये एक इतना इंपॉर्टेंट विषय हो गया है कि जिसपे कि हमें जो शैक्षणिक संस्थाओं की जो भूमिका है, क्योंकि बच्चे 7 से 8 घंटे जो हैं वो अपना जो मुख्य जो टाइम है वो अपने शैक्षणिक संस्थान पे व्यतीत करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जो रोल है वो बढ़ जाता है.
1: बिल्कुल, हमारा आज का विषय रेनबो हेल्पलाइन, आप सुन रहे हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका. आप भी जरूर अपना प्रश्न भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर. फोन लाइन्स अवेलेबल हैं 0112342108001122342108 2. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
3: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
4: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी। ओह

0: यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
4: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
3: क्या ये जांच उपलब्ध है?
5: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
6: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
5: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
6: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
7: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
8: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से, न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से भी। कार्यक्रम है रेनबो हेल्पलाइन। आज का विषय, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका। बातचीत जारी रहेगी प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा से। आइए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं।

0: बहुत ज़रूरी है कि वो सभी बातें जो कि आपको पॉजिटिव करती हैं, सकारात्मक करती हैं, आप सुने, उन गानों को भी ज़रूर सुनिए और प्रयास कीजिए कि उससे आप जीवन में उतारें उन शब्दों को, उन प्रयासों को जीवन में उतारिए जो कि आपको सही दिशा दिखाते हों, सिर्फ आपके शारीरिक तौर पर ही नहीं, आपको मानसिक मजबूती देने के लिए भी वो शब्द काम करते हों। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। हमारा विषय, रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे चलते हैं और अपने श्रोताओं के प्रश्नों को हम इस सत्र में शामिल करते हैं। मैम, पहला प्रश्न लेना चाहूंगी। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता। सो मैम, राजेश कुमार जी हैं जालंधर से। हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे विषय पढ़ाए जाएं जो उनमें सकारात्मक ऊर्जा भरें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या शिक्षा संस्थानों, कोचिंग संस्थानों को इसके लिए काम नहीं करना चाहिए? मैथ, साइंस ऐसे सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि प्रेरित करते हों, वो बताने चाहिए, वो होने चाहिए, जिससे कि मेंटल हेल्थ को और स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथन।
1: राजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मेंटल हेल्थ को दुरुस्त करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, उन इंस्टीट्यूशन का जो फोकस है वो और भी सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, इससे पहले मैंने अभी आपसे जो यूजीसी के दिशा निर्देशों पे मैंने बात करी, जिसमें यूजीसी ने ये जोर दिया शिक्षा संस्थान जो लाइफ स्किल हैं, जो एजुकेशन है, वो उसको भी प्रमोट करें और अपने करिकुलम का पार्ट बनाए
0: जी,
1: जिसमें कि जो स्टूडेंट है, ताकि वो जो स्टूडेंट है वो अपने जो डिसीजंस हैं वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली ले पाएं, और जिंदगी में अगर कोई वो चैलेंज फेस करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं डे टू डे लाइफ में, उसको अच्छे से फेस कर पाएं। और साथ के साथ जो आजकल हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, क्योंकि हम इमोशनल डिसकनेक्टेड हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन की हम बात करते हैं, हालांकि अगर आप देखेंगे हमारे स्कूल लेवल पे जो वैल्यू एजुकेशन है, अगर आपने भी जब स्कूल में पढ़ाई की होगी, हमने की होगी, जो सुबह की प्रार्थना होती थी स्कूल में
0: जी,
1: राइट, तो उसमें कुछ ना कुछ जो वैल्यू एजुकेशन थी वो इनकलकेट होती थी स्टूडेंट में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: राइट। और साथ के साथ अगर हम बात करें जो फिजिकल हेल्थ है, फिजिकल एजुकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं इसमें राजेश जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो शैक्षणिक संस्थान हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इन वाले, ये वाले जो सब्जेक्ट हैं, इन पे जोर देना बहुत जरूरी है, कि अगर हमें मेंटल हेल्थ की जो एक ये जो प्रॉब्लम है जो एक समाज में बढ़ती जा रही है, अगर हम इसकी रोकथाम करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें इनको अपने करिकुलम का पार्ट, मैंडेटरी जो पार्ट है वो बनाना होगा, कहीं ना कहीं, चाहे वो हफ्ते में एक घंटे की क्लास हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो होनी चाहिए।
0: जी मैम, बहुत सराहनीय जवाब दिया है आपने इस प्रश्न का। एक और प्रश्न लेते हैं। ये पैंथर तोमर जी हैं किशनगंज दिल्ली से, हमारे श्रोता। ये कहते हैं कि मैं कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर चुका हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आया तो आखिर में हताश हो जाता हूँ, परेशान होता हूँ, और कई बार मन में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, वो स्टडी हब्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा होता है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए?
1: जी पैंथर जी, जो आपने सवाल किया है, जो आपका प्रश्न है, वाजिब है, बिल्कुल है। ये अगर आपके साथ हो या मेरे साथ हो, ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत नॉर्मल है कि हम अगर जितनी हमने परीक्षा की तैयारी की है, अगर हमें उतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तो डिसअपॉइंट होना स्वाभाविक है। वो किसी के साथ भी हो सकता है। जो सैडनेस है वो बहुत स्वाभाविक है
0: जी।
1: तो इसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले पैंथर जी को ये बताना चाहूंगी कि इसको कॉप अप करने के लिए, देखो आपको जो बात है, जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट है या सैडनेस है, वो आपको अपने तक नहीं रखनी है, आपको वो शेयर करना है। जैसे आज आपने हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से बात करी है, ऐसे ही आपको बात करनी है। बात करना मेंटल हेल्थ में, जब हम डिसअपॉइंट होते हैं या एंग्जायटी या डिप्रेशन किसी भी मेंटल स्थिति में होते हैं, तो हमें बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करिए अपने पेरेंट्स से, बात करिए अपने टीचर से, फ्रेंड से, मेंटोर से बात करिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है, कंपेयर मत करिए अपने आप को। आपको कंपेयर नहीं करना है किसी के साथ, बल्कि आपको इस पे ध्यान देना लेना है कि मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। बस आप अपने स्लीपिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे आपको अच्छे से नींद लेनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, जिम जाइए, योगा करिए, इन पे ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और कम से कम जो आप अपना जो समय है, वो जो स्क्रीन टाइम है, वो आपको कम करना है, तो जिससे आप ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कुछ दिनों में आप अपने अपने अंदर एक चेंज जो है वो फील करेंगे। वैल्यू एजुकेशन जो है, अपने आप को मोटिवेट करिए कि मैं इम्प्रूवमेंट अपने में कैसे ला सकता हूँ।
0: बिल्कुल मैम, अगले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहूंगी। देखिए, अगर हम एक पूरा स्नैरियो देखें जहाँ पर संस्थान है, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स, टीचर्स सब हैं, वहाँ पर एक आपको शैक्षणिक दबाव मिलेगा, एक कंपटीशन मिलेगा, और साथ ही आपको जो है एक सोशल मीडिया इमेज क्रिएशन, मीन्स जो हम सोशल मीडिया वर्चुअल लाइफ में जी रहे हैं, वहाँ पे हमारी क्या इमेज है उसे मेंटेनेंस को लेकर भी एक दबाव मिलेगा। साथ ही अगर हम अब बिल्कुल रियल लाइफ में देखें, स्टूडेंट्स जब किसी न्यूली जाते हैं किसी संस्थान में, बुलिंग, रैगिंग, कई चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पर, इन सब पर बात करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने जो आज के टाइम पे बात करी, मैंने आपसे, हमने अपनी इस चर्चा में पहले भी जिक्र किया कि जो कारण है, जो जैसे मानसिक, क्योंकि पहले तो ये नहीं था लेकिन अब कारण बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इसका मुख्य वजह क्या है?
0: जी,
1: मुख्य वजह कई हैं इसके। जो मुख्य वजह में हम बात करते हैं, जैसे अगर स्कूल से या कॉलेज से विड्रॉल होता है, उसमें बुलिंग या रैगिंग है। देखिए, आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे जो एंटी रैगिंग स्क्वाड हैं, एंटी रैगिंग अभी आज के टाइम में इसको हम क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, इसके लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे केसेस आते हैं, हालांकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे मैंडेटरी दिशा निर्देश हैं जो जो भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उनको रेगुलेट करते हैं,
0: राइट
1: तो उसमें इनको जोर दिया गया है कि कैसे हम इनको कम कर सकते हैं। देखिए, खत्म करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें अवेयर करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयर करना बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा इंसिडेंट आता है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट, अगर जैसे कॉलेज में फर्स्ट डे है उसका या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे है, एडमिशन लेता है, अगर उसके साथ कोई रैगिंग या कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है या फिर किसी के भी तरह का कोई बुलिंग है, वो साथ के साथ उसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट करना किसी भी उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा, बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास उस इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इनकी जो टाइम टू टाइम जो रोकथाम है वो की जा सके।
0: जी, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था जिसमें मैंने आपसे जानना चाहा कि इंस्टीट्यूशंस या संस्थान क्या कर सकते हैं जब जो प्रतिस्पर्धा है या फिर अचीवमेंट का लेवल बहुत हाई है, स्टूडेंट्स पर प्रेशर है, क्या करना चाहिए?
1: देखिए, जो संस्थान है

0: प्राइवेट हैं, चाहे वो फॉर दैट मैटर कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं,
1: जी
0: उनमें एक काउंसलर होना चाहिए. 100 पे, हर 100 स्टूडेंट पे एक काउंसलर होना चाहिए.
1: जी
0: लेकिन मैं साथ के साथ इस पे ये जोर देती हूँ, बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि हमें साथ के साथ जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस कहाँ पे किस लेवल पे होनी चाहिए, नॉट ओनली अमंग द टीचिंग स्टाफ, हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है
1: जी
0: उनको भी अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहचान पाए. देखिए, हम सबसे, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ये ऐसा विषय है कि
1: जी
0: जब तक अवेयर नहीं है, आप सामने वाले की मनोस्थिति को नहीं समझ पाते कि वो किस प्रॉब्लम से जूझ रहा है.
1: बिल्कुल.
0: तो उसके लिए जो सेल्फ अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के प्रति. तो वो जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक हम इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर नहीं
1: जी
0: पाएंगे.
1: मैम, यहीं पे एक प्रश्न और जानना चाहूंगी. आपने कहा कि एक काउंसलर होना चाहिए, लेकिन एक स्टूडेंट और उस काउंसलर के बीच में जो ये एक वे है, ये जो मार्ग है, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है उन तक पहुंचने का, वो कैसे प्रशस्त किया जा सकता है कि वो मजबूत हो, हम इजीली अपनी बात वहां तक पहुंचा सके और हमें पता है कि शायद उस कमरे तक जाते हुए, उस पर्सन तक जाते हुए हमें बहुत सारे लोग देख रहे हों.
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया. और ये है भी, क्योंकि हमने मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको, जो हमारा नजरिया है,
1: जी
0: हमारा क्या समाज का जो एक नजरिया है, हम उसको एक टैबू की तरह समझते हैं,
1: जी
0: स्टिग्मा, क्योंकि हम लेबल करते हैं, हम जज करते हैं. तो कहीं ना कहीं जो एक जो छात्र है जो इस से जूझ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घबराहट है वहां
1: जी
0: तक, उस कमरे तक जाने के लिए, उस काउंसलर से बात करने के लिए. तो ये जो दूरी है, इस दूरी को कम करने के लिए सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए. इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात करने की जरूरी है, जैसे आप और मैं आज कर रहे हैं. और साथ के साथ ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको अवेयर करें थ्रू ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स, ज्यादा से ज्यादा मेंटल हेल्थ पे बात करें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में.
1: बिल्कुल.
0: तो ये सबसे बड़ा जो हमारा जो बैरियर है, लैक ऑफ हेल्प नहीं है बैरियर, आस्किंग फॉर हेल्प है.
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही कहा
0: सबसे
1: मैम
0: बड़ा
1: आपने.
0: बैरियर है. इस बैरियर को हमें कम करने की ज्वाइंट एक एफर्ट करने की एक जरूरी है, जिसमें कि सबका एक ज्वाइंट एक योगदान होगा, तभी हम एक सशक्त जो समाज है उसका निर्माण कर पाएंगे.
1: बिल्कुल. हमारा रेनबो हेल्पलाइन कार्यक्रम का आज का विषय है रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. एक छोटी सी ब्रेक के बाद विषय पर आगे बढ़ते हैं.
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
3: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
4: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका.
5: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका.
6: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
5: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ.
7: 3 से 5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए.
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ सृजन राजपूत। विषय है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण में संस्थानों की भूमिका। मैम, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, आप एज अ लॉ एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे कि क्या भारत में, हम अगर अपने देश के कंटेक्स्ट में ही बात करें, तो कोई ऐसा कानून है जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता हो, छात्रों को सपोर्ट करता हो कि हाँ, यदि इस व्यक्ति विशेष की अभी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कुछ किया जाना चाहिए संस्थानों की ओर से भी, क्या रास्ता है?

0: कैसे उस मदद तक पहुंचा जा सकता है?
1: जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य से लेके एक बहुत पुख्ता और एक अहम कानून है जिसको हम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017
0: ठीक है
1: के अंदर जो स्टूडेंट है, जो छात्र है, उसके पास राइट है. नॉट ओनली छात्र, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट एक्सेस टू अफोर्डेबल मेंटल हेल्थ केयर. और उसमें उसमें ये भी प्रावधान है कि अगर कोई भी ऐसा सिटीजन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई एडल्ट है, कोई भी मेल है, फीमेल है, उसको ट्रीट किया जाए डिग्निटी के साथ,
0: ठीक है,
1: उसको जज ना किया जाए, उसको लेबल ना किया जाए, और साथ के साथ उसकी जो डिग्निटी है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसको मेंटेन किया जाए और उसको किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. और उसको और उसको हमें प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उसके ट्रीटमेंट की, प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है उपचार की, जो प्रॉपर जानकारी है वो प्राप्त करने का उसके पास अधिकार है. तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आज के समय में मेंटल हेल्थ पे हमारे पास एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, साथ में इंस्टीट्यूशन के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस, निशा निर्देश, और सुप्रीम कोर्ट में अमित कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का निर्णय. ये इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उस निर्णय ने जो एजुकेशन है उसको ट्रांसफॉर्म किया है, और उसने जो फोकस किया है कि जो इंस्टीट्यूशन को की जो अप्रोच होनी चाहिए वो एकेडमिक सेंट्रिक ना होके स्टूडेंट सेंट्रिक जो अप्रोच होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन की होनी चाहिए. क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हेल्दी माइंड है, मैं इसके प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बोलूंगी कि जो हेल्दी माइंड है बिल्ड हेल्दी सोसाइटी, एंड हेल्दी सोसाइटी बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन. तो इसीलिए जितने भी जो भी हमारे जो छात्र हैं उनको किसी भी लेवल पे घबराने की जरूरत नहीं है. सबसे ज्यादा जो इसमें जो जरूरत है वो बात करने की जरूरत है.
0: आप बार बार इस बात पे जोर देती हैं कि बात कीजिए, जागरूक रहिए, बहुत जरूरी है कि आप अवेयर भी हों.
1: हाँ, और इसमें जागरूकता के साथ साथ ये है कि अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना है, अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. ये एक टेम्परेरी फेज है जो कि शायद बात करने से ही खत्म हो जाएगा लाइफ में. स्क्रीन टाइम कम करिए, पेरेंट्स के साथ समय बताइए, फ्रेंड्स के साथ बात करिए, उसके साथ अपने पीयर्स के साथ बात करिए, अपने टीचर्स के साथ बात करिए. क्योंकि आज का जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, मैं इसका पार्ट हूँ लास्ट 25 ईयर्स से, अब वो बहुत चेंज हो गया है. जो स्टूडेंट और टीचर का जो गैप है वो डे टू डे कम होता जा रहा है. पहले एक गैप था कि स्टूडेंट जो था वो टीचर के सामने जाने से पहले थोड़ा हिचकिचाता था, घबराता था, लेकिन आज का जो समय है वो इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि उसमें क्या है, टीचर बहुत अहम भूमिका अपनी निभा रहे हैं. तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि फ्रेंड मुझे जज ना कर ले, तो आप अपने फैकल्टी से बात करिए, टीचर से बात करिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंस्टीट्यूशन लेवल पे इतना सपोर्ट मिलेगा कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होता देखेंगे.
0: मैम, कार्यक्रम में अपनी बातचीत के जरिए आपने पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को क्या करना चाहिए, पूरा बताया. लेकिन अब ये जो एक ट्रायंगल बना है जिसमें स्टूडेंट्स तो बीच में है, इंस्टीट्यूट्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है, तो इन सबको कैसे ब्रिजिंग किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, कैसे ये सब मिलकर काम कर सकते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक दिशा देने के लिए.
1: जी, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए ये तीनों ही जो ये जो ट्रायंगल है, पेरेंट्स, इंस्टीट्यूशन और टीचर्स, बहुत अहम भूमिका निभाते हैं.
0: सबसे पहले सुझाव, उपाय और संदेश के साथ इस बात को हम लेकर चलते हैं.
1: जी, तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के टाइम पे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं, अब कजन्स के साथ कंपेयर करते हैं, दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं, तो पेरेंट्स को सबसे पहले ये है जो दिशा निर्देश हैं, एक तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, उनको अपने घर का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से करना है, क्रिएट करना, इतना सेफ और इतना सिक्योर करना है कि जो उनका जो बच्चा है वो उनसे बात कर पाए. क्योंकि अगर उसमें गैप होगा, अगर पेरेंट्स बार बार कंपेयर करेंगे तो जो, क्योंकि देखिए बच्चा इंटाइटल्ड है लव एंड अफेक्शन के लिए, वो किसी भी ट्रॉमा का इंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप उससे ऐसी बात करेंगे तो वो ट्रॉमा में आ सकता है. तो इसीलिए जो स्टूडेंट है तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो दिशा है वो यही है कि उनको जो पेरेंट्स हैं उनको कंपैरिजन नहीं करना है.
0: जी, बेहद शानदार बात कही आपने, और मुझे लगता है हमारे आज के सभी श्रोताओं के लिए आज की जीवन शैली को देखते हुए ये एक बहुत परफेक्ट संदेश था. तो इसी बातचीत को अब हम इन सकारात्मक शब्दों के साथ अंत पर लेकर चलते हैं. हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता गगनेजा, लॉ एक्सपर्ट. मैम, मैं बहुत खुश हूँ कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने ये बातचीत की और आपसे मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानने को मिली. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम.
1: थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी.
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन. हमारा विषय रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मेंटल हेल्थ वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट्स. मैं हूं सृजन राजपूत. अब आप दीजिए अनुमति और सुनते रहिए कार्यक्रम रेनबो के साथ. और अगला कार्यक्रम आशियाना होगा स्वाति गुप्ता के साथ. नमस्कार.

कविता कृष्ण मूर्ति और अभिजीत की रेशमी आवाजें अभी आपने सुनी फ्रॉम द मूवी ग्रहण 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। प्रोग्राम आशियाना लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति आप सभी के साथ। और जितनी खूबसूरत बातें इस गाने में कही गई ना, मैंने सोचा शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि आशियाना का ये जो बुधवार का खास एडिशन होता है, इसको हम कदम के नाम से जानते हैं। और इसमें हम बात करते हैं आपके हम कदम की, आपके हम सफर की, जिंदगी के सबसे खूबसूरत सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते की। तो इतने प्यार से जब कोई आपकी तारीफ करता है ना, और जब कोई इतने प्यार से आपको अपनी आपकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी की जिंदगी में वो बताता है, तो वाकई में एक बहुत बड़े पावर बूस्टर का काम करता है किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए। अगर नहीं यकीन है तो आज ये ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्रेशन बड़ी ही खूबसूरत चीज है। और एक्सप्रेस करना अपने आप को, हालांकि हर इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने मन में कुछ भी महसूस करते हैं तो उसे एक्सप्रेस करना बनता है, खासतौर पर अच्छी बातें। गुस्से में तो मुंह से हर बात निकल ही जाती है ना, लेकिन जो अच्छी बातें हैं उनको मन में दबाकर भला हम क्यों बैठे रहते हैं, खासतौर पे जब वो हमारे लिए इतने काम की हो। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, मैं हूं आप सभी के साथ स्वाति। और मैं आप सभी के लिए प्ले करने जा रही हूं एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना। आप चाहें तो गानों की भी मदद ले सकते हैं, हमारे जो हिंदी गाने हैं ना, हिंदी फिल्मों के, वो ऐसे में आपके बहुत काम आते हैं। तो गाने के जरिए भी आप अपने बात को कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके अलावा आपके अपने शब्द तो हैं ही।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
4: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
5: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
6: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
7: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
6: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
8: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
9: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800

0: 1178000 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक
4: आकाशवाणी रेनबो
5: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हम कदम मेरे यानी कि स्वाति के साथ। बात हो रही थी कॉम्प्लीमेंट्स की, बात हो रही थी अच्छी बातों को एक्सप्रेस करने की, और अक्सर हम लोग ना यहीं पर तो चूक जाते हैं। अगर हम अपनी अच्छी बातें जो हैं, जो हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं, हम नहीं कहते हैं, तो रिश्तों को वो मजबूती भला कहाँ से मिलेगी जी, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जिसकी हम आकांक्षा करते हैं। भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं या फिर अपनी अच्छी बातें जो हैं ना, दिल की बातें जो हैं, उसे कह देने से आपके रिश्ते को एक पावर बूस्टर जैसा जो है ना, वो काम तो वो करती ही है, मगर उसके साथ साथ वो एक बहुत अच्छा मूड चेंजर भी है। बात बदलनी हो ना तो तारीफ से अच्छा कुछ नहीं होता है, कभी आजमा के देखिएगा। इसके साथ साथ बॉन्डिंग तो मजबूत होती ही है, अटैचमेंट जो है बढ़ती है, लेकिन उसके साथ में क्या होता है, क्या होता है, रिश्ते को वो मजबूती मिलती है कि छोटे छोटे जो झटके लगते हैं ना अक्सर जिंदगी के, और हमारे रिश्ते जो हैं उस स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन चीज़ों से छुटकारा पाने में ना बहुत मदद मिलती है। आपके साथी का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, मगर उसके साथ साथ उसको एक इमोशनल सिक्योरिटी जो होती है ना, वो भी हासिल होती है। देखिए ना कितने सारे फायदे हैं, और अगर ये छोटी छोटी बातें हम ध्यान में रखें तो हमारे रिश्ते को कोई भी मजबूत होने से नहीं रोक सकता। फिलहाल आपका और मेरा रिश्ता जो है ना, वो हमारा जो है आज थोड़ा सा हमें समय ज़रूर कम मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिश्ता जो आपका हमारा और रेनबो का है, ये सदा जो है इसी तरह मजबूती से बना रहेगा। फिलहाल आज का हम कदम समाप्त करने के स्वाति को दीजिए इजाज़त। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, और थोड़ी देर में आप सुनेंगे खास कार्यक्रम। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुर।

मिलवदास, जयदास, देवेशदास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोता, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं, जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी, चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं, यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहाँ पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहाँ पानी हमेशा टपकता रहता है। पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहाँ की चट्टाने चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं, इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदें टपकाकर बनाया। अद्भुत है ना? जी, किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं, कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की। आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहाँ के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है? ना ये बड़ी अजीब बात। जी हाँ श्रोताओं, वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गईं। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुम्बसर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है।

0: श्रोताओं, यहां पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुम्बसर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
2: The leaves on the trees are turning green, turning green, turning green.
1: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
2: The leaves on the trees are turning green, grow, grow, grow.
1: Very nice. The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
2: The flowers on the trees are beautiful, beautiful, beautiful.
1: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
2: The flowers on the trees are beautiful, busy, busy bees.
1: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
2: The leaves on the trees are falling down, falling down, falling down.
1: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
2: The leaves on the trees are falling down, yellow, red and brown.
1: Yes, and now the leaves on the trees have fallen down, fallen down, fallen down.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्सकपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
4: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि

0: उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
3: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
3: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए

0: विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
1: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
2: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
1: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
2: जी जी,
1: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
2: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
1: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
2: जी,
1: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
2: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
1: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी,
0: तो फिर क्या था, विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की सभा बुलाई गई और लंबे विचार विमर्श के बाद नियमावली में विधिवत परिवर्तन किया गया। फादर का ये अनुरोध मान लिया गया। भारत के शोध परिदृश्य में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके द्वारा देवनागरी में शोध प्रबंध लिखने का रास्ता सबके लिए साफ हो गया और आदिवासी भाषाओं में भी PhD स्तर तक पढ़ाई होनी शुरू हो गई।
3: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है,
1: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं है, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है, बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
3: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
1: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
3: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार

0: आकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। उन्होंने लिखा था,
1: जब मैं अपने जीवन पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है ईसा मसीह, हिंदी और तुलसीदास ये वास्तव में मेरी आध्यात्मिक साधना के तीन प्रमुख घटक हैं और मेरे लिए इन तीन तत्वों में कोई विरोध नहीं है बल्कि गहरा संबंध है। मैं ईसा मसीह का परम भक्त हूं, हिंदी मेरा अनुराग है और गोस्वामी तुलसीदास मेरी प्रेरणा।
0: कामिल बुल्के की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जब लोग उन्हें फादर कहते तो वे किंचित संकोच से बोल उठते,
1: फादर अंग्रेजी शब्द है, यदि मुझे कामिल बाबा कहो तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
0: 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।
2: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
0: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
3: डॉक्टर कामिल बुल्के, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां सेहत से जुड़ी हर बात हम आप तक पहुंचाते हैं। आपसे जुड़ते हैं प्रतिदिन इसी चैनल पर इसी समय और आप रहते हैं हमारे साथ उसी कार्यक्रम में जिसे आप प्यार से कहते हैं रेडियो डॉक्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत कॉमन होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी अभी तक बहुत कम लोग अच्छे से जान पाए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, लंबे वर्किंग आवर्स, अनियमित खान पान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, इन सब का असर सबसे पहले हमारी सेहत पर पड़ता है और खासकर हमारे वजन पर। और वजन जब बढ़ जाता है, या यूं कहें कि बढ़ती जो ये मोटापे की समस्या है, ओबेसिटी की समस्या है, ये सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में हेल्थ समस्या बनता जा रहा है। तो ये जो सिर्फ देखने के लिए जब हम बात करते हैं कि ओबीस है या कोई मोटा है, तो वो लुक्स पर ही सिर्फ इफेक्ट

0: नहीं डालता है, वो कभी कभी गंभीर बीमारियां भी उत्पन्न कर सकता है। और इन सब के लिए जरूरी होता है वजन कम करना। पर कई बार कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि वो हर तरह से डाइट प्लान करने के बाद, जिम जाने के बाद, योग करने के बाद भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा पाते हैं। तो उनके लिए एक और तरीका है, उसी तरीके पर आज हम बात करेंगे, और वो है बेरियाट्रिक सर्जरी। क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी और ये किस तरह का विकल्प है, और क्या इसे हम ये माने कि ये वजन कम करने का आसान तरीका है, या इसके भी कुछ गंभीर या रिस्की आउटकम्स हो सकते हैं? ये सारी बातें आज हमने सोचा हम इस कार्यक्रम में करें। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो रेडियो डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रही हूं, क्योंकि आज हम इन सवालों पर बिल्कुल सही, साफ, अनबायस्ड तरीके से जानकारी चाहते हैं हमारे अपने दोनों एक्सपर्ट से। तो हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे दोनों रेडियो डॉक्टर्स, डॉक्टर निखिल गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में, एसोसिएट डीन हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर निखिल, स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मुकुंद खेतान, आप को चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक सर्जरी सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको।
2: नमस्कार जी, और आप सभी का स्वागत है। और हम इस ओबेसिटी, जैसे मैम ने बताया, उसके बारे में अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाएंगे।
0: जी बहुत धन्यवाद आप दोनों स्पेशलिस्ट को कि आप लोग आए हैं और समय निकाला है आपने, और इस कार्यक्रम में आप आज एक घंटे हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में एजुकेट कीजिए कि ये किस तरह की सर्जरी होती है। और इसके, क्योंकि मैंने टॉपिक इसमें यही रखा है कि बेरियाट्रिक सर्जरीज प्रोस एंड कॉन्स, क्योंकि जहां तक हमें पता है इस सर्जरी या हर सर्जरी के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान या रिस्क भी हो सकते हैं। तो हम आज उन दोनों पर जानकारी चाहेंगे आप दोनों से, और हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम के साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं आज भी जुड़ गए होंगे, आपको हमारे साथ रहना है इस कार्यक्रम में और अपनी समस्याओं को यहां हमारे रेडियो डॉक्टर्स के सामने रखना है जैसे आप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जो दिमाग में आता है, पहले डॉक्टर मुकुंद आपसे पूछूंगे कि ये जो सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी, व्हाट इज दिस?
2: बेरियाट्रिक सर्जरी इज बेसिकली, जब ये सर्जरी शुरू हुई थी आज से 2 दशक पहले, तब ये सर्जरी सिर्फ वेट लॉस सर्जरी के हिसाब से शुरू हुई थी। तब जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देखते हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वजन वाले और वजन की वजह से ही परेशान थे, बट पिछले 1 दशक में हमने क्या देखा है कि ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी है ये मेटाबॉलिक सर्जरी बन गई है। जैसा आपने अभी बताया कि ये खाली एक वजन के लिए नहीं है, बट ये वजन के साथ साथ बीमारियां जो अपने साथ लाती है उनको ठीक करने का एक मेजर तरीका है, जो मरीज अपने एक्सरसाइज या डाइट या और किसी तरीके से अपना वजन नहीं कर पाते। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी एक तरीके से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। ये होती तो 1958-59 में शुरू हुई थी। अच्छा। बट तब ओपन सर्जरीज होती थी, तो ओपन सर्जरीज की अपनी प्रॉब्लम्स होती थी। अब ये जब से लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति वाला इरा शुरू हुआ है, इसने इस पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया है, और अब ये इतनी कॉमन हो गई है कि अगर हम देखें तो रोज, अगर मान के चले हम अगर दिल्ली शहर में भी माने तो रोज करीब 100 मरीज इसके ऑपरेट होते होंगे। अच्छा। तो ये इतना कॉमन सर्जरी हो गई
0: जी, पर अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो इस बारे में हमें जाननी जरूरी हैं। अभी तक लोग उतनी सही तरीके से इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं, और इसीलिए रेडियो डॉक्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर मुकुंद ने हमें कहा कि बहुत सारी और कारण होते हैं जो वेट कम होना चाहिए, जिसमें बीमारियां जो हो जाती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर निखिल कि अगर कोई ओबीस है, ओवरवेट है, सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे, कैसे उसकी कैटेगराइज कैसे किया जाता है, जैसे बीएमआई जिसकी बात लोग जानते हैं, और सेकेंडली कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हो जाती हैं अगर मोटापा हो तो?
1: देखिए, जैसा डॉक्टर मुकुंद सर ने बताया, और अगर हम बात करें आज से 40-50 साल पहले, खासतौर पे अपने देश की बात करें, तो जब भी हम किसी मोटे आदमी से मिलते थे तो एक इम्प्रेशन माइंड में आता था भी खाते पीते घर का है आदमी या औरत। लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कि ये एक खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये एक बीमारी है। और सिर्फ मरीज वो इंसान कैसा लगता है, सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, मोटापा अपने आप में पूरा पैकेज है, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेकर आता है। या मैं ये कहूँगा कि शायद ही शरीर का ऐसा कोई सिस्टम होगा या ऐसा कोई ऑर्गेन होगा जिसकी बीमारी मोटापे के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आप ये इसको ऐसे कल्पना कीजिए कि एक 60 किलो के आदमी के ऊपर अगर 120 किलो का वजन उसको उठाना पड़ जाए तो उसके शरीर के सारे हिस्से किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उसके हार्ट को डबल काम करना पड़ रहा है, उसके फेफड़ों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उसके जोड़ जल्दी घिस रहे हैं, उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जिनसे वो आदमी अफेक्ट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से। और अगर अपने वो मोटापे पे काबू पा ले, जिसमें सबसे पहले तो हम यही सलाह देते हैं, खाने पीने की सलाह, एक्सरसाइज, अपना डाइट रेगुलेट करके, लेकिन अगर कोई मरीज ये सब करके भी अपने मोटापे से छुटकारा नहीं पा पा रहा है, तो अब आज की डेट में बेरियाट्रिक सर्जरी या मेटाबॉलिक सर्जरी अवेलेबल है जिसकी मदद लेकर वो दोबारा से फिट हो सकता है और इन सब बीमारियों से काफी हद तक छुटकारा पा सकता है। अब मोटापा कहते किसको है? मोटापे के लिए बेसिकली जो शरीर का वजन कितना होना चाहिए, ये या मोटापे में है या नॉर्मल इंसान है, डिपेंड करता है उसका वजन और उसकी हाइट पे। जैसा कि ये समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि हर आदमी का आइडियल वेट उसकी हाइट पर डिपेंड करता है, तो BMI जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं वो निकाला जाता है वजन किलोग्राम में और इसको अगर डिवाइड किया जाए हाइट मीटर में उसका स्क्वायर, तो वेट बाय हाइट मीटर स्क्वायर, तो इससे BMI निकलता है। BMI ऑन एन एवरेज कहते हैं 25 से 28 के बीच में रहे तो वो एक आइडियल रहता है। अगर हम मेटाबॉलिक सर्जरी की बात करें कि उसके लिए कब हमको जाना चाहिए, इंडिया अपने देश की बात करें सेटिंग में, तो नॉर्मली अगर पेशेंट का BMI 32.5 32.5 से ऊपर है, साथ में उसको कोई कोमोर्बिडिटी या जो मोटापे के साथ जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनकी हमने बात करी अभी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कुछ और, तो इस तरह के मरीज में हम मेटाबॉलिक सर्जरी कंसिडर कर सकते हैं।
0: इस बारे में और मैं डिटेल में जानना चाहूंगी आप दोनों से कि किसकी सर्जरी की जा सकती है, किसको एक्चुअली सोचना चाहिए कि मैं इस तरह की सर्जरी कराऊं, पर यहां पर पहले हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, डॉक्टर निखिल की पसंद का ये गीत मैंने निकाला है और वो सुनकर हम वापस आएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए, आप हमें मैसेज करिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और आज हम बात कर रहे हैं बैरियाटिक सर्जरी, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। हमारे दो स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात डॉक्टर निखिल ने भी बोली थी कि कुछ इतना बीएमआई से ऊपर होगा, जैसे 32 से ऊपर या कुछ तो किया जाता है। आप थोड़ा सा इसमें बताइए कि क्या यही एक क्राइटेरिया होता है कि बीएमआई, या कुछ और भी देखा जाता है, या कौन ये डिसाइड कर सकता है कि मुझे करानी चाहिए कि नहीं?
1: देखिए, जब हम छोटे बच्चों में, आजकल हम देखते हैं स्कूल में भी ओबेसिटी या वजन ज़्यादा हो रहा है, और करीब हम जब स्कूल का सर्वे, हमने भी आज से 3-4 साल पहले सारे स्कूल्स का दिल्ली का मिलकर के कुछ एसोसिएशंस के साथ किया था, तो हमने देखा था कि 25-30% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ओबेज हैं, है ना। ओबेसिटी मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ओबेसिटी। जैसे डॉक्टर निखिल ने बताया, क्लास 1 ओबेसिटी है कि हमारा बीएमआई जो है वो 23 से 28 हो। क्लास 2 ओबेसिटी है कि 23 से 28 से लेकर के 32.5 तक हो। और जो क्लास 3 ओबेसिटी में आ गए 32.5 वाले, उनको किसी तरीके की मदद चाहिए,
0: उन्हें चाहिए, चाहे
1: उन्हें
0: वो किसी
1: मदद
0: तरह
1: चाहिए,
0: से भी
1: वो
0: हो।
1: किसी भी तरीके से मदद चाहिए, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाले तरीके हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट है, एक्सरसाइज है, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब उनको फ्रूटफुल नहीं रिजल्ट्स दे पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि एक बीएमआई एक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा वेस्ट हिप रेशियो, है ना, कि वेस्ट और हिप रेशियो मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए 0.8 से ऊपर हो, फीमेल्स के लिए 0.9 से ऊपर हो, तो हम कहते हैं कि ये आपका वेट ज़्यादा है, अगर वेस्ट हिप रेशियो बढ़ जाए तो। जैसे मैंने बताया कि यंग बच्चों में अगर हम देखते हैं तो हम परसेंटाइल देखते हैं, बीएमआई नहीं देखते, उसमें हम परसेंटाइल देखते हैं, परसेंटाइल वेट गेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कुछ हमारे क्राइटेरियाज हैं, बट ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिनके ऊपर हम बेसिकली डिसाइड करते हैं कि आपकी ओबेसिटी क्लास क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तरीका है जो आपको वेट लॉस में मदद करेगा।
0: तो जैसे कोई पेशेंट आपके पास आया, ओबीस है, जिसको आप कह रहे हैं थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तो क्या आप उसको अपने सामने वो सारे ऑप्शंस देते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्जरी, कि आप लोग सर्जरी पार्ट ही डील करते हैं?
1: नहीं, ओबेसिटी जो है वो एज ए होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, जैसे हमारा मेटाबॉलिक इंस्टीट्यूट है वहां, जहां हम ओबेसिटी एज ए होल को होलिस्टिकली अप्रोच करते हैं। यानी ये नहीं कि हमारे पास, बीइंग अ सर्जन, मेरे पास पेशेंट आया तो मैं उसको खाली सर्जिकल ऑप्शंस बताऊंगा, तो उसको हमारे पास डाइटिशियन भी है, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी है अलग से, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एंड देन द लास्ट इज व्हेन वी कम इनटू पिक्चर।

0: रिसर्जेंस कम इन टू पिक्चर।
1: यस, तो हमारे एक अभी श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए बात कर लेते हैं, कुछ पूछना है। हेलो
2: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी और डॉक्टर साहब दोनों को भी नमस्ते।
1: जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं और नाम बता दीजिए अपना।
2: मैं योगराज बोल रहा हूँ गुड़गांव से।
1: जी जी बताएं क्या पूछना है।
2: सवाल मेरा ये है जी, 23 साल की बिटिया है और उनका जो है वजन कम हो रहा है। 23 साल की बिटिया का वजन 35 किलो वजन है, उनका वजन कम होता है और खाना खाती है तो पेट में दर्द की शिकायत है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो इन्फेक्शन आया हाथों में।
3: अच्छा योगराज जी, जैसा आपने बताया कि आपकी बिटिया का वजन कम हो रहा है और कुछ खाने पे पेट में दर्द भी होता है और जांचों में शायद पेट का इन्फेक्शन आप बता रहे हैं, तो इसमें मैं यही कहूंगा कि वजन कम होने के बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें एक वजह पेट का टीबी भी हो सकता है या कोई और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी बिटिया को लेकर जो है नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, फिजिशियन हो या सर्जन हो या पेट के डॉक्टर हो, उनसे मिलके जो जरूरी जांचें हैं जिसमें हो सकता है एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी, दूरबीन की जांच या सीटी स्कैन वगैरह हो, जिससे कि बीमारी पकड़ में आए और उसका इलाज शुरू हो सके। हाँ
2: जैसे करवाया था
3: जी
2: तो उसमें इन्फेक्शन आया और 4-5 जांच और भी करवाई, जैसे टीवी की है या 6-7 जांच हमने करवाई, लेकिन उसमें कोई बीमारी नहीं आई।
3: देखिए, अब ये तो सारी रिपोर्टें देख के ही कुछ बता पाएंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पेट का टीबी एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी जांच में पकड़ पाना उसको आसान नहीं होता, और कई बार सिर्फ लक्षणों के आधार पे ही हमको दवाई शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह यह है टीबी हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत में बहुत कॉमन भी है। तो अगर उसके लक्षण उस तरफ जा रहे हैं तो टीबी की दवाई शुरू करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये फैसला जो डॉक्टर उनको देख रहा है, उनका इलाज कर रहा है, वो ही ले पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि सारी जांचों की रिपोर्ट लेकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए, जिनसे भी आप इसका इलाज करा रहे हैं, और वो ही आपकी इसमें मदद कर पाएंगे।
1: चलिए धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ कॉल पर हैं। हेलो
4: हेलो,
1: जी जी नमस्कार।
4: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
1: जी जी राजेंद्र जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
4: जी, 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75-80 केजी के आसपास मेरा वेट है, वजन है। तो पहले तो शालिनी मैम को शालिनता से ही नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी।
4: दोनों डॉक्टर साहिबान को भी नमस्कार।
5: नमस्कार जी।
3: नमस्कार।
4: डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को या पेशेंट को अगर थायराइड है या शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका वेट और मतलब मोटापा और वजन घटेगा या बढ़ेगा, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई शख्स ऐसे मैंने देखे लाइफ में, कुछ भी खा ले कुछ भी पी ले, ना वो मोटे होते ना उनका वजन बढ़ता, वो बेचारे क्या करें। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे कि उनके हिप्स पे और मतलब कुल्लों पे, टोंट पे और ये चेस्ट पे और गर्दन पे और गालों पे बहुत चर्बी होती है, वो लोग बेचारे क्या करें ये मतलब चर्बी और वजन घटाने के लिए। और चौथा सवाल मेरा ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं वजन और मोटापा घटाने के लिए। और पांचवा, जो आप ये सर्जरी बता रहे हैं पैराबेडिक सर्जरी, तो इसमें अगर सर्जरी होती है तो इसमें मतलब इसमें टाइम कितना लगता है, खून खराबा ज्यादा तो नहीं होता, जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो पूरा कार्यक्रम अपने प्रश्नों में समेटने की कोशिश की है राजेंद्र जी। बहुत सारी चीजें हैं, हम आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन हाँ आपके जो प्रश्न हैं डॉक्टर साहब उनके जवाब दे रहे हैं। सर बताएं, इन्होंने सबसे पहले ये पूछा था कि थायराइड शुगर जो जिनको होता है उनका वजन पर क्या इफेक्ट होता है इसका।
5: देखिए राजेंद्र जी, जो आपका थायराइड और शुगर है ना, ये दोनों ही तरीके से काम करता है। अगर हमारा थायराइड डिस्टर्ब्ड है या शुगर अनकंट्रोल्ड है तो हमारा वजन बढ़ता भी है। तो थायराइड की बीमारियां दोनों ही तरीके की होती हैं, जिसमें थायराइड लेवल्स बढ़ भी जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। तो अगर आपके थायराइड हार्मोन के लेवल्स बढ़ गए हैं तो आपका वजन कम होता है, अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन लेवल्स कम हो गए हैं तो आपका वजन बढ़ने लगता है। सिमिलरली ब्लड शुगर का है कि शुगर, ऐसा नहीं कि शुगर की बीमारी से वजन बढ़ता है या वजन कम होता है, अगर अनकंट्रोल्ड शुगर होगी तो आपका वजन बढ़ भी सकता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है जब, या कुछ शुगर की मेडिसिन भी होती हैं जो हमारे वजन को कम करती हैं, तो ये जब तक हम जाँचें नहीं कराएंगे या कारण नहीं ढूंढेंगे, जब तक हम ऐसे डिक्टेट नहीं कर सकते टर्म्स को कि आपका थायराइड की वजह से वजन ज्यादा या कम है या शुगर की वजह से ज्यादा कम है।
1: और कुछ लोगों का नहीं बढ़ता है, ये भी उन्होंने पूछा था, चर्बी बहुत होती है उसका, तो बहुत सारी चीजें तो हम बात करते ही जा रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम में, लेकिन सर्जरी पे जो उन्होंने बात की जो हमारे इस कार्यक्रम से संबंध रखती है कि क्या इतना कितना समय लगता है इस सर्जरी में, और मैं इसमें और जोड़ूंगी कि इसमें जब सर्जरी के बाद डॉक्टर

0: निखिल, आप बताएं कि इसको नॉर्मल रूटीन में आने में कितना टाइम लगता है पेशेंट को?
1: देखिए, अगर हम सर्जरी के टाइम की बात करें तो ये मेटाबॉलिक सर्जरी की 3-4 वैरायटीज हैं और हर सर्जरी का अपना अलग अलग टाइम है। फिर भी अगर मोटी मोटी बात करें तो 45 मिनट से लेकर आप कह सकते हैं करीब 2 घंटे इसमें लग सकते हैं। लेकिन सर्जरी से पहले का भी टाइम होता है, मरीज़ की पोजिशनिंग वगैरह। और इस तरह के मरीज़ अपने वज़न की वजह से सर्जरी के लिए भी थोड़े से हाई रिस्क केसेस होते हैं। इनका हार्ट, इनका लंग, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज लेवल पे है, तो उसको सर्जरी तक ऑप्टिमाइज करने के लिए एनेस्थेटिस्ट को भी, यानी कि बेहोशी के डॉक्टर को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो टाइम, लेकिन अपने आप में मैं कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानूंगा। ये सारे ऑपरेशन दूरबीन से, यानी कि लैप्रोस्कोपिकली या रोबोटिक तरीके से होते हैं, और कोई खून या ब्लड लॉस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ऑपरेशन हो जाते हैं। 24 घंटे के बाद ही, या कभी तो उससे भी पहले, मतलब 12 घंटे के बाद मरीज को सिप्स यानी कि लिक्विड शुरू किए जाते हैं, और 1 से 2 दिन के बाद मरीज के अस्पताल से छुट्टी भी हो जाती है। 6-8 घंटे में ही मरीज खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है, और एक बार जब 24 घंटे के बाद मरीज लिक्विड्स ले पाता है और चल फिर पाता है, तभी उसके अस्पताल से छुट्टी की जाती है। ये सब फायदे हैं लैप्रोस्कोपी के, और सर्जिकल टेक्निक्स में जितनी एडवांसमेंट आई है उस सब के सारे फायदे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी के मरीज को दिए जाते हैं।
0: जी
1: एक इनका सवाल बड़ा अच्छा था जो मैं चाहूंगा उसका जवाब देना। ये
0: जी
1: एक्चुअली में ये ऐसा देखा गया है, ये एक फर्क है हमारे देश के मोटे मरीजों में और वेस्टर्न वर्ल्ड के मोटे मरीजों में। हमारे देश में इसको ट्रंकल ओबेसिटी हम कहते हैं, कि पेट निकला हुआ है,
0: जी
1: कंधे और बाजू पतले पतले होंगे, लेकिन सारा का सारा वजन जो है
0: जो
1: वो, जिसको
0: हाँ
1: पहले जमाने में टोन कहते थे या बेली, लेकिन
0: ये
1: यही
0: एशियन
1: सबसे
0: पॉपुलेशन में
1: एशियन
0: ज्यादा।
1: पॉपुलेशन
0: जी
1: में, और सबसे ज्यादा खराब यही है जो ट्रंकल ओबेसिटी है।
0: जी
1: अगर आप बाहर के मोटे मरीज देखें, वो 200-250 किलो के भी होंगे, लेकिन वो लंबा आदमी
0: जी
1: है,
0: डिस्ट्रीब्यूटेड होता
1: कंधे
0: है।
1: चौड़े हैं उसके,
0: हाँ
1: और उसके बाजू है, उसकी थाइज है। यहाँ पे हम लोगों में, हिंदुस्तानियों में या एशियन पेशेंट में, सिर्फ और सिर्फ ट्रंकल ओबेसिटी जो ज्यादा खराब है,
0: जी
1: ये शुगर ज्यादा कॉज करती है। तो इसीलिए बाहर के मरीजों में मोटापा की सर्जरी की जाती है वजन कम करने के लिए ज्यादा, लेकिन हमारे देश में मोटापे के साथ बीमारियां बहुत जुड़ी हुई हैं इस फैट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से।
0: तो शायद ये हमारे लिए और उतना
1: हमारे
0: उपयोगी
1: लिए
0: है,
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: उपयोगी है।
0: उपयोगी है।
1: इसीलिए ये जो अभी हम बीएमआई की बात कर रहे थे, बीएमआई की सारी कट ऑफ एशियन पॉपुलेशन में वेस्टर्न वर्ल्ड से 2.5 कम है। मतलब बाहर के मरीज में इंडिकेशन 35 से ऊपर है बीएमआई, लेकिन एशियन पेशेंट्स में यही बीएमआई की कट ऑफ 32.5 है, 32.5।
0: तो वो रीजन बिकॉज
1: ये
0: ऑफ
1: इन्हीं
0: दिस।
1: सब की वजह से।
0: जी, तो आपने बताया कि जिस तरह से सर्जरी होती है वो तो एक आम सर्जरी की तरह होता है, उसमें वापसी भी लोगों की नॉर्मल लाइफ में वैसे ही है, लेकिन इस सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है? और एक टाइप्स की भी बात कर रहे थे आप, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, डॉक्टर मुकुंद आप भी बताएं कि ये कितनी टाइप्स की सर्जरीज होती हैं इसमें
1: देखिए,
0: बेरियाट्रिक
1: ये
0: में?
1: जो बेरियाट्रिक सर्जरी है, ये बेसिकली मेनली 2 तरीके की सर्जरीज होती हैं। एक रेस्ट्रिक्टिव, जिसमें हम खाने की आपकी जो कैपेसिटी

0: है उसको कम कर रहे हैं खाली.
1: अच्छा
0: दूसरी होती है कि जिसमें रेस्ट्रिक्शन और माल एब्जॉर्प्शन. माल एब्जॉर्प्शन मतलब हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पहले उसको डाइजेस्ट होता है, उसके बाद हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है और इंटेस्टाइन्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, जिससे हमारे शरीर को एनर्जी और सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. तो वो कहलाती है माल एब्जॉर्प्टिव सर्जरी. तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड माल एब्जॉर्प्शन है कि जिसमें हमारे खाने की कैपेसिटी तो कम हुई बट हमारा कुछ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन बायपास हो गया. जैसे हम शहरों में बायपास रोड देखते हैं, वो बड़ी रोड है बट हमने ट्रैफिक को बायपास कर दिया. इसमें हम जो इंटेस्टाइन्स को बायपास करते हैं तो जो खाने का मिक्सिंग है विथ दी बॉडी जूसेस, मेनली जब खाना हम खाते हैं तो वो बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट ग्लैंड से जो हमारे जूसेस बन रहे हैं, वो जूसेस उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. उन जूसों से जब तक वो मिक्स नहीं होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपरली. तो जब हमने बायपास कर दिया तो उसका वो जो डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन है कुछ हद तक रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में डबल तरीके से इफेक्ट करती है, ये रेस्ट्रिक्टिव और माल अब्सॉर्प्टिव सर्जरीज.
1: लेकिन आपने बोला कि हम उसको बायपास कर देते हैं, तो क्या बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाएगी अगर किसी की ये सर्जरी हुई है तो?
0: ये जो जिन मरीजों में हम ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी वाला प्रोसीजर करते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक बायपास सर्जरीज कहते हैं, उनमें अमूनन हम देखते हैं जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं. जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादातर पब्लिक वेजिटेरियन होती है, तो वेजिटेरियंस में थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि उनकी डाइट में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और दूसरा प्रोटीन्स कम होते हैं. तो हम जैसे पहले पढ़ते थे मेडिकल कॉलेज में भी, जब हम सोशल अपना पढ़ते थे, कि प्रोटीन कैलरी माल न्यूट्रिशन होता है. तो हम सिर्फ कैलरी माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं, ना हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का माल न्यूट्रिशन चाहते हैं. तो कई बार इन मरीजों में हमें शुरू के कुछ टाइम, जब तक मरीज रिकवर कर रहा होता है, अपना वेट लॉस जर्नी में चल रहा होता है, उस जर्नी के दौरान हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या फिर प्रोटीन के सप्लीमेंट्स लेने के लिए एडवाइस करते हैं.
1: ओके, तो सप्लीमेंट्स देने पड़ सकते हैं और बाद में जब वो ठीक हो जाए तो उसके बाद भी क्या डॉक्टर निखिल बताएं कि किस तरह का खान पान उन्हें रखना होता है या प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, क्या तब भी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं या टेस्ट कराना पड़ता है?
2: देखिए, बिल्कुल सही जैसे अभी बात बताई कि बाईपास सर्जरी के बाद खास तौर पे कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स की या सप्लीमेंट्स की मरीज को जरूरत पड़ सकती है और उसको रेगुलर फॉलोअप में रखा जाता है. टाइम टू टाइम उसके हाँ टेस्ट जरूर कराए जाते हैं और एक बार जब एडिक्वेट वेट लॉस हो जाता है या जो हमारा टारगेट वेट है वो अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ये सप्लीमेंट्स बंद किए जा सकते हैं. अगर पेशेंट ने अपना वेट लॉस अचीव कर लिया है, एक आइडल वेट कर लिया है, उसका लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन ये सब हो गई है, तो इन सप्लीमेंट्स को बंद किया जा सकता है पहली बार. लेकिन तब भी मैं जरूर कहूंगा कुछ कुछ मरीजों को इनकी रिक्वायरमेंट लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर दिन में एक गोली लेनी भी पड़े तो. लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो उसके उससे अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि वही मरीज जो ऑपरेशन के पहले दिन में ब्लड प्रेशर की और शुगर की 5-6-7 गोलियां खा रहा था, वो सब बंद हो जाती हैं, डायबिटीज ठीक हो गई, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हार्ट अटैक का खतरा कम हो गया, एस्थमा में
1: तो ये दवाइयां इमीडिएट बंद हो जाती हैं उसके बाद,
2: बहुत जल्दी.
1: अच्छा,
2: बहुत जल्दी. बिल्कुल. तो इनफैक्ट हम ऑपरेशन के एकदम बाद तो पहले बंद ही करते हैं सारी दवाइयां और फिर टाइम टू टाइम उसके टेस्ट करा के देखते हैं कि अब उसको इसकी जरूरत है कि नहीं है. काफी मरीजों में दवाई बंद हो जाती है, मोस्टली पेशेंट्स में अगर बंद नहीं भी होती है तो रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, दैट इज फॉर श्योर.
1: जी, यहाँ पर हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, गीत सुनेंगे और ये गीत डॉक्टर मुकुंद की पसंद का है तो हम सब आनंद लेते हैं इस गीत का. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर और अभी बहुत सारी बातें पूछना बाकी हैं. आप भी कनेक्ट हुई है हमारे साथ फोन लाइन पर और व्हाट्सएप के जरिए.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में आज बात हो रही है बैरिएट्रिक सर्जरी पर, और हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ गए हैं। हमें देवदत्त पारसोलिया जी ने लिखकर भेजा है, नमस्कार टू रिस्पेक्टेड आरजे रेडियो डॉक्टर एंड ऑल टीम ऑफ एफएम रेनबो, नाइस टॉपिक, गुड वॉइस एंड सुपर प्रोग्राम, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। और ये एक मैसेज आया है, लिखा है परिधि ने दिल्ली से, ग्रेट टॉपिक, थैंक यू। इनका एक क्वेश्चन है कि हाउ इज लिपोसक्शन डिफरेंट देन बैरिएट्रिक सर्जरी एंड डू बैरिएट्रिक सर्जरी लीव लाइफ लॉन्ग सर्जरी मार्क्स और इज इट मिनिमल इन्वेसिव, ये दो चीजें पूछी हैं।
2: परिधि मैं, आपने अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये बहुत सारे जो पब्लिक है उनके दिमाग में रहता है कि ये किस तरीके की सर्जरी है बैरिएट्रिक सर्जरी और ये लाइपोसक्शन से कैसे डिफरेंट है। तो लाइपोसक्शन एक तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरी है जिसमें हम वजन की वजह से जहां जहां शरीर में हमारी चर्बी, तो चर्बी जैसे डॉक्टर निखिल ने पहले भी बताया कि चर्बी दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तो हमारे शरीर में बाहर चमड़ी के नीचे है जिसको हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, है ना, एक हमारा विसरल फैट है जैसे हमारा ट्रंक में जो इकट्ठा है वो खाली पेट में बाहर भी इकट्ठा है और पेट के अंदर जो विसरा हमारे ऑर्गन्स हैं उसमें और उसके आसपास भी इकट्ठा है। तो ये जो लाइपोसक्शन है ये हम जो पेरिफेरल फैट है स्पेशली जैसे थाइज में हो गया, आर्म्स में हो गया, एब्डोमन में हो गया, बैक में हो गया, वेस्ट में हो गया, कहीं हिप्स में हो गया, वहां से हम सिर्फ चर्बी की जो सेल्स होती हैं उनको सक्शन

0: करके निकाल लेते हैं, उसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। तो ये प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है जो बॉडी शेपिंग सर्जरी है, और जो हम बैरियाट्रिक सर्जरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अब मेटाबॉलिक सर्जरी है, ये सिर्फ वेट लॉस सर्जरी नहीं है, वेट से एसोसिएटेड बीमारियों को भी ठीक करने में हमारी मदद करती है। तो ये ओवरऑल वेट लॉस में हेल्प करती है, नॉट ओनली पेरिफेरल बट विसरल फैट भी कम करती है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियों की जो जड़ है।
1: हम इसको ऐसा समझें कि वो सिर्फ लुक्स पे इफेक्ट डालेगी और ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, इस तरह से हम इसको समझ सकते
0: बिल्कुल
1: हैं। और इन्होंने ये जो पूछा है कि क्या बैरियाट्रिक सर्जरी में क्या सर्जरी मार्क्स रह जाते हैं लॉन्ग टर्म, या इसको रोबोटिक, या आप जैसे बता रहे थे कि आजकल मिनिमम इन्वेसिव तरीके से किया जाता है तो वो मार्क्स नहीं रहते हैं।
2: जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में भी बात करी थी कि बैरियाट्रिक सर्जरी 99.9% या 100% लैप्रोस्कोपिकली ही होती है या रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक, और ये दोनों ही मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे कट दिए जाते हैं, 10 mm, 5 mm, आप मानिए 1 cm के और आधे सेंटीमीटर के कट होते हैं जो ना के बराबर दिखाई देते हैं। यही इसकी एडवांटेज है। और इन छोटे छोटे कट से हम पोर्ट्स डालते हैं, उससे ही हमारे जो इंस्ट्रूमेंट से पतले पतले वो अंदर जाते हैं और उसके थ्रू सारा ऑपरेशन किया जाता है। इस सब का फायदा यह है कि मरीज की पोस्ट ऑप में रिकवरी बहुत फास्ट है, दर्द का एहसास बहुत कम होता है मरीज को, वो बहुत जल्दी खड़ा होकर चलना फिरना अपने सारे कामकाज कर सकता है, और लुक्स वाइज भी क्योंकि ये स्कार ना के बराबर दिखाई देते हैं, तो यही सब इस कप की एडवांटेज है बजाय की ओपन सर्जरी की।
1: जी
0: तो मैं इसमें एक कमेंट ऐड करूंगा, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था कि हम ये सुनते थे जब हम मेडिकल स्कूल में थे कि बिग सर्जन्स मेक बिग इंसिजन्स, तो हमारे बड़े बड़े सर्जन्स थे कि ये बड़ी अच्छी सर्जरी करते हैं, बड़े चीरे लगाते हैं। वो सर्जन्स का पर्सपेक्टिव था। अब अगर हम पेशेंट पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो ये जो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इसी की वजह से यह लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी का इजाद हुआ है कि हम पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि सर्जन की कंफर्ट नहीं है, पेशेंट की कंफर्ट है। जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि अब वो मरीज जो है वो 4-6 घंटे बाद अपने पैरों पे खड़े होकर चल सकता है, जिस मरीज की सर्जरी 4 घंटे पहले, सर्जरी तो बड़ी है बट मरीज के लिए वो छोटी है क्योंकि उसकी दूरबीन पद्धति द्वारा सर्जरी हुई है।
1: जी जी इसके फायदे हैं। और देखिए एक मैसेज और आया है हमारे पास, इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून प्रकाश फ्रॉम दिल्ली। इन्होंने लिखा है कि मेरा बेटा जो है उसका वेट 150 kg है और 30 ईयर उसकी एज है, वो सब कुछ करता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, पर उसका वेट कम नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए और कुछ और सर्जरी करा के, अगर हम ये सर्जरी कराते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या तो साइड इफेक्ट्स होते हैं क्या, इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं सर?
2: देखिए जैसे इन्होंने बताया अपने बेटे के वजन के बारे में, लेकिन क्योंकि इन्होंने हाइट नहीं बताई है तो हम BMI तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 150 किलो तो बहुत ज्यादा है और हर लिहाज से इसका बच्चे का जो BMI है वो 45 से ऊपर ही आएगा मेरे हिसाब से। और जैसा बताया कि वो खाने पीने का परहेज और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन तब भी इच्छा मुताबिक वो वेट लॉस नहीं अचीव कर पा रहा है, तो जितना इस हिस्ट्री से जो पता लग रहा है कि यस वेट लॉस सर्जरी या बैरियाट्रिक सर्जरी मेटाबॉलिक सर्जरी जरूर इसकी मदद करेगी, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने साइड इफेक्ट्स की बात करी, तो देखिए साइड इफेक्ट में कहूंगा किसी भी दवाई के या किसी भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा ऑपरेशन या दवाई नहीं है जिसके साथ साइड इफेक्ट ना हो, लेकिन ये जरूर है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है किसी भी ऑपरेशन से पहले, इवन मेटाबॉलिक सर्जरी से पहले भी हम सब तरह की सावधानियां बरतते हैं। इस तरह के मरीजों का बहुत ज्यादा चेकअप किया जाता है ऑपरेशन के पहले, क्योंकि जैसे हमने बात करी थी इनके पूरे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इनके हार्ट का, लंग का, शुगर स्टेटस, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें ऑपरेशन के पहले चेक की जाती हैं, सारी सावधानियां बरती जाती हैं जिससे कि ऑपरेशन के समय और ऑपरेशन के बाद कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहे। इसीलिए इन मरीजों को बहुत जल्दी हम जैसे बात की थी खड़ा कर देते हैं 4-6 घंटे में ही, जिससे कि ऑपरेशन के बाद जो कुछ मरीजों को निमोनिया हो जाता है लंबे समय तक लेटे रहने से या खून के क्लॉट जम जाते हैं, उन सबको रोकने के लिए ही इन सब मरीजों को जल्दी खड़ा किया जाता है, जल्दी खाना पीना शुरू किया जाता है। आज की डेट में मैं कहूंगा ये सर्जरी इतनी सेफ हो गई है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी और ऑपरेशन से, चाहे वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो या हर्निया का ऑपरेशन हो और चाहे वो मेटाबॉलिक सर्जरी हो, इनकी कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट बराबर हो गई है।
1: यहाँ पर हम अपने एक श्रोता को फोन लाइन पर जो वेट कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
3: बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार
3: जी, मेरा नाम संजीव कुमार है और मेरी एज 44 इयर्स है, 44 साल सर। और मेरा मतलब वजन पीछे था अभी कुछ दिन पहले 102 किलोग्राम था सर, और हाइट है मेरी 5 फुट 10 इंच या 11 इंच। तो सर मेरा पेट बहुत निकलो है और मेरे भाई का भी पेट बहुत निकलो है, जबकि खाने को तो 3 टाइम की रोटी भी मिलती है सही हिसाब से हमें। तो अब इस बड़े हुए पेट को कैसे कम किया जाए सर, प्लीज ये बताइए।
1: वेट को कैसे कम करें, इन्होंने बताया 102 किलो इनका।
0: देखिए जैसे आपने बताया तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, जैसे आपने कहा कि आपकी हाइट 5, 10 या 11 है, इसका मतलब है आप 175 सेंटीमीटर आपकी हाइट नाप लें, तो एक सिंपल कैलकुलेशन होता है कि हम आइडियल वेट कितना माने, तो उसमें से अगर हम 100 घटा दें, जो हमारी हाइट है उसमें से अगर हम 100 घटा देते हैं तो हमारी जो हाइट है उसके लिए जो हमारा वेट है उसकी अपर लिमिट आ जाती है। तो अगर 175 आपकी माने तो आपका 75 किलो वजन होना चाहिए, यानी आप 25 से 30 किलो अपने वजन से ऊपर हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हम BMI कैलकुलेट करेंगे तो आपका BMI जो है वो Grade 2 लेवल ओबेसिटी में आएगा। तो Grade 3 ओबेसिटी जहां आपको किसी तरीके की सर्जिकल हेल्प चाहिए, आप उस कैटेगरी में अभी नहीं फॉल करते हैं ऐसा लगता है, जब तक हम पूरे टेस्ट नहीं करेंगे हमें नहीं मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट। बट अगर आप Class 2 ओबेसिटी में है तो ये आपके लिए अभी आंख खुलनी चाहिए, है ना, कि जब आंख खुली तब सवेरा है। अगर आप अभी नहीं जागेंगे तो आप धीरे धीरे करके वो कब Class 3 ओबेसिटी में आ जाएंगे आपको नहीं मालूम। तो आपको एक एडवाइस लेना चाहिए, या तो फिजिशियन से लेना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ इसमें बीमारियां हैं जैसे डॉक्टर निखिल ने बोला ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, नींद की बीमारी, थायराइड की बीमारी, जोड़ों की बीमारी या गुर्दे की बीमारियां, तो इन सब बीमारियों के साथ अगर आप वजन ज्यादा लेके चल रहे हैं तो आपको एक फिजिशियन को दिखाना चाहिए। अगर फिजिशियन आपको एडवाइस करता है कि नहीं, आपको एक सर्जिकल एडवाइस भी लेना चाहिए, तो आपको एक जो बेरियाट्रिक सर्जन होते हैं, मेटाबॉलिक सर्जन होते हैं, उनसे भी कंसल्ट करना चाहिए, वो आपकी मदद कर पाएंगे कि किस तरीके से क्या तरीका आपके लिए बेहतर है आपको वजन कम करने का।
1: जी, जोया हमें लिख रही हैं, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे कार्यक्रम सुन रही हैं, और ये लिख रही हैं कि क्या मैदा, जैसे हमें पता है, इन्होंने लिखा है मैदा इज वेरी नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड स्टमक, बट वी ईट आउटसाइड फूड एंड इन मोस्ट ऑफ द फूड मैदा एंड सारडो इज यूज्ड, हाउ डज इट इम्पैक्ट आवर हेल्थ एंड कैन वी गो फॉर बैरियाट्रिक सर्जरी।
2: देखिए, एक तो जोया जी ने अपना वेट और हाइट मेंशन नहीं जी, करी जी। है तो अभी हम ये नहीं बता पाएंगे,
1: इन्फॉर्मेशन ही चाहिए उनको। जी।
2: अच्छा, जो बात करी इन्होंने मैदा की इस तरह की, तो ये मैं जरूर कहूंगा कि खाना जितना प्रोसेस्ड हम जितना करते हैं, यानी कि वी आर मेकिंग इट मोर एंड मोर सिंथेटिक, उसमें नेचुरल कम हो रहा है और सिंथेटिक को ज्यादा होता जा रहा है, तो उतना ही खराब होता जा रहा है, उससे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जा रहा है और जो हार्मफुल एलिमेंट्स उसमें ऐड हो रहे हैं, इसीलिए मैदा को जो है सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता। तो जब जोया जी को ये सारी बातें पता भी हैं तो जरूर इनको अपने खाने पीने में मैदा की मात्रा कम रखनी चाहिए, और आटा का मात्रा है जो हम जिसको हम नेचुरल खाना अपना कहते हैं वो लें, और एक्सरसाइज, योगा किसी भी फॉर्म में जो है वो इनको अपना वेट मेंटेन करने में मदद करेगा।
1: जी, क्योंकि हम कार्यक्रम ओबेसिटी भी कर रहे हैं तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाह रहे हैं कि खान पान में क्या सही है क्या गलत, और ये हमें लिखकर भेजा है हमारे रेगुलर लिसनर है नरदेव सिंह चौहान जी, कोटद्वार उत्तराखंड में रहते हैं। इन्होंने लिखा है शालिनी मैम, डॉक्टर निखिल और डॉक्टर खेतान को गुड आफ्टरनून। मैम, मोटापे की बात कर रहे हैं, पहले का खान पान और आज के खान पान, उसका जो फर्क हुआ है उसके कारण भी मोटापा बढ़ रहा है क्या, तो हम इस पे भी बात कर लें थोड़ी सी। वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास कि मोटापा बढ़ क्यों रहा है, क्या खान पान मेजर रोल प्ले कर रहा है
0: इसमें? खान पान और हमारा लाइफस्टाइल दोनों चीज ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। खान पान जो पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि खान पान पहले हमारा नेचुरल खाना ज्यादा था, है ना, अभी हमारा जैसे डॉक्टर निखिल ने कहा कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है और अवेलेबिलिटी है। पहले हमारे खान पान के लिए हमें जाना पड़ता था, अब मैं घर बैठे और मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फूड के प्लेटफॉर्म पे घर बैठे खाना मंगा लेता हूँ, तो मेरे लिए इजी एक्सेस ऑफ फूड हो गई, तो एबंडेंस ऑफ फूड भी हो गया, इजी एक्सेस ऑफ फूड भी हो गया और प्रोसेस्ड फूड भी हो गया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फूड की तरफ से कंट्रीब्यूट कर रही हैं वजन में। जैसे पहले के जमाने में हम ये मैदा, सूजी, ये सब चीजें कम होती थी, आटा, चावल, ये खाना, सब्जी, 3 तरीके की सब्जियां, रोटी, चावल, हमारी प्लेट रेनबो जैसी कलरफुल दिखती थी। अब हमारी प्लेट जो है वो सिंगल कलर की होती है, तो अगर रेनबो जैसी प्लेट दिखेगी हमारी तो वो न्यूट्रिशियस खाना है। अगर हमारे खाने में 1 या 2 कलर की चीजें दिख रही हैं वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जैसे वाइट्स जो होते हैं ना, हमें वाइट्स जो भी खाने में चीजें, सूजी, मैटा, आदा, चावल, या हम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो बहुत सारे ठीक है, हेल्थ के लिए एवरेज चीजें हैं, बट वो न्यूट्रिशंस नहीं है इतने। तो न्यूट्रिशंस चीजें जितनी कलरफुल होंगी उतनी न्यूट्रिशन, सबकी अपनी डिफरेंट न्यूट्रिशंस वैल्यू है। अगर हम वो कलर्ड फूड खा रहे हैं तो, अगर हम वाइट फूड खा रहे हैं तो उनकी सबकी मोर और लेस कॉमन न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है।
1: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, पहले इनसे बात करते हैं, फिर और कुछ बातें हैं आपसे इससे संबंधित पूछने की। हेलो
4: हेलो
1: जी जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, नाम बताएं।
4: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार,
4: मेरा नाम अमन कुमार है सर, मैं गांव कुकरी चाची हिंदी जिला बरनाल से हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
1: जी बताएं, क्या पूछना है आपको?
4: मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोटापे कम करने के लिए कौन सा योगा या प्राणायाम सबसे लाभदायक है?
1: देखिए, आज हम योगा या प्राणायाम पे तो बात नहीं कर रहे हैं, ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ ये भी वेट लॉस कर सकते हैं अगर आप इसको नियमित दिनचर्या में शामिल करते हैं, एक्सरसाइज को या योग को, पर यहाँ पर हम बात आज बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में कर रहे हैं और ये सर्जरी की आवश्यकता क्यों पड़ती है इस पर कर रहे हैं। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जैसे अब वेट लॉस की जब हम बात कर रहे हैं, हम खान पान की बात कर रहे हैं, तो क्या जब ये सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी खान पान पे ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कुछ लोग इस तरह की थिंकिंग से आते हैं कि वेट लॉस हो गया, अब तो सर्जरी हो गई, अब हम कुछ भी खा सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: देखिए, जरूर, जैसा हम पिछले आधे एक घंटे से बात करते हुए आ रहे हैं कि वजन कम करने के लिए जो मुख्य हमारा फोकस होना चाहिए वो तो खाने पीने की आदतों पर और एक्सरसाइज पे ही होना चाहिए। बैरियाट्रिक सर्जरी हम उसी मरीज को ऑफर कर रहे हैं जो ये सब ट्राई करके भी एडिक्वेट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहा और साथ में वो मोटापे की वजह से और बहुत बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। इस सर्जरी से हम उसका वजन एक बार आइडियल कैटेगरी में ले आते हैं जितना उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए वही दो चीजें जिसकी हमने शुरू में बात करी थी, यानी कि खाने पीने की आदत और एक्सरसाइज, यानी कि वो तो करनी ही करनी है। अगर कोई भी मरीज सोचे कि सर्जरी शॉर्टकट है कि मैं खाने पीने में परहेज नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं सर्जरी करा लेता हूँ और बाकी मैं ऐसे ही करता रहूंगा, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि नहीं, मरीज का मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना वेट लॉस को मेंटेन रखने के लिए, दोबारा कह रहा हूं मैं, डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज,
1: यानी ये सर्जरी एक बार हो गई,
2: सर्जरी अगर आपने उनका रिप्लेसमेंट नहीं है,
1: फॉलो नहीं किया, तो आप वापस वेट गेन कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, इनफैक्ट वेट रीगेन जो होता है ऑपरेशन के बाद 2-3-4 साल के बाद, वो मुख्य इन्हीं वजहों से होता है कि मरीज मोटिवेटेड नहीं होता, खाने पीने की आदत में बदलाव नहीं कर पाता, एक्सरसाइज व्यायाम का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता, और यही मरीज जो है वो वेट रीगेन लेकर आते हैं।
1: तो डॉक्टर मुकुंद, मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि फॉलो अप का क्या महत्व है, कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा दोबारा से वेट गेन हो सकता है, तो कितना फ्रीक्वेंटली उन्हें डॉक्टर से इन टच रहना पड़ता है?
0: देखिए, जैसे हम डाइट की बात कर रहे हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो कुछ डेफिनेटली डाइट प्लान होता है हमारा, और उस डाइट प्लान और आपकी आगे की जर्नी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप और मैं मिलकर, आपकी या मेरी एक्सपेक्टेशन अलग नहीं है, तो वो एक्सपेक्टेशन हमारी खरी उतरे उसके लिए हमें रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। जैसे किसी भी ऑपरेशन के बाद हम 7-10 दिन के अंदर मरीज को पहले फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, देखने के लिए कि उनकी हेल्थ सेहत सही है कि नहीं। उस वक्त हमारा टारगेट वेट लॉस नहीं होता कि कितना वेट हुआ, फिर हम पहले महीने पर बुलाते हैं, फिर पहले एक साल हम उसको 3-3 महीने के अंतराल पर बुलाते हैं। कुछ जांचें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपको कुछ बीमारियों से पहले से ग्रसित हैं तो उन बीमारियों से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ रेगुलर टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि आप में कोई न्यूट्रिशनल की कमी तो नहीं हो रही या प्रोटीन्स की कमी तो नहीं हो रही, उनके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, और एक फिजिकल चेकअप होता है, और साथ में आपका कॉम्प्लायंस, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पेशेंट कॉम्प्लायंस जरूरी है। अगर आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज या सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले गए, आपको वेट लॉस तो मिलेगा

0: हम कंसल्ट करें, उनसे एडवाइस लें और समझें कि हमारी जो जर्नी है वो ठीक चल रही है कि नहीं, हम वेट रीगेन की साइड तो नहीं है। कई बार कुछ मरीज हैं जिनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, वो अदर साइड ऑफ कोर्ट में चले जाते हैं कि हम चाह रहे थे 40 किलो वजन कम हो, वजन तो 40 किलो कम हो गया बट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो गई जिनकी वजह से वो कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो उन सबको भी मेडिकल एडवाइस या मेडिकल केयर की जरूरत होती है, तो उनको भी फॉलोअप जरूरी होता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बेसिक प्रश्न है, अभी तक हमने बात नहीं की है, कि आपके पास लोग आते होंगे और बोलते होंगे रैंडमली कि मुझे इतना कम करना है या उतना कम करना है, एक्चुअली कितना कम किया जाता है, इसका भी कोई कैलकुलेशन होता है क्या?
2: ये देखा जाता है, इसके लिए जो टर्म है वो है एक्सेसिव वेट, या कितना वेट उसका ज्यादा है उसके आइडल वेट से। और फिर हम टारगेट करते हैं कि उसका कितना वेट लॉस हम चाह रहे हैं, उसका हम कहते हैं अगर 75% ऑफ द एक्सेसिव वेट अगर वो पेशेंट लूज कर ले तो कहते हैं कि उसने एडिक्वेट वेट लॉस अचीव कर लिया है। अब उसके लिए डिपेंड करता है कि फिर कितना वो हमारा टारगेट कितना आ रहा है, पेशेंट को 20 किलो लूज करना है या 40 किलो करना है या 50 किलो करना है, वो डिसाइड करता है हम कौन सी सर्जरी के लिए जा रहे हैं। जैसा बाईपास सर्जरी की हम बात कर रहे थे, अगर मरीज को जितना ज्यादा वेट लूज करना है तो उसका बाईपास उतना ही हमको बड़ा करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए जैसे हम टीम की बात कर रहे थे कि होलिस्टिक अप्रोच, पेशेंट के साथ बैठकर बात की जाती है कि आपका वेट इतना होना चाहिए आपकी हाइट के हिसाब से, और है ये इतना, इतना वेट हम लूज करना चाह रहे हैं और उसके लिए ये हमारे पास ऑप्शंस हैं।
1: जी, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर में आज हमने काफी सारी बात की है बैरियाट्रिक सर्जरी प्रोस एंड कॉन्स पर। अभी भी बहुत सारी बातें मन में हैं, क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर मुकुंद, कि अगर सर्जरी हो जाती है उसके बाद भी आपने कहा है कि खतरा रहता है कि वेट रीगेन हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट क्या कर सकता है?
1: देखिए, जैसे हमने कहा तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि वेट रीगेन का कारण क्या है। तो ये एक दो पहिए की साइकिल है। हमारा जो सर्जरी हमने कर दी वो एक पहिया है कि वो ऑपरेशन हो गया और आपको एक डिजायरेबल वेट, यानी जो हमें वेट चाहिए था, एक्सेस वेट का जो एक परसेंटेज वेट लॉस है वो हमें मिल गया। अब हमें दूसरे पहिया अपना चलाना है। तो साइकिल का जब दूसरा पहिया चलेगा मतलब आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो ये एक इजी वे आउट नहीं है कि हम कहें कि मैंने सर्जरी करा ली और मेरा वेट लॉस हो गया, अब मैं वेट मेंटेन होता रहेगा और मैं कुछ भी खाता पीता रहूं। तो आपके अपने लाइफस्टाइल को, थोड़ा एक दैनिक दिनचर्या को, चाहे वो खान पीन का हो चाहे हमारी एक्सरसाइज का हो, बनाना पड़ेगा। अगर हमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है, वेट गेन होता है, तो उसके लिए ही जो फॉलोअप, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम रेगुलर फॉलोअप में होते हैं तो हम उसके कारण को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए आप किसी कारणवश आप रेगुलर फॉलोअप में नहीं रहे और आप 5 साल बाद अब आप देखते हो कि आपका 50 किलो वजन कम हुआ था और अब 25-30 किलो वजन बढ़ गया है, तो डेफिनेटली यू अगेन हैव टू गो टू दी कंसर्न सर्जन जिससे आपने ऑपरेट कराया है। और वो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेट रीगेन के बाद भी सिर्फ सर्जरी ही ऑप्शन होती है, आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा, मेडिसिंस भी हैं, एक्सरसाइजेस भी हैं। तो जैसे हमने पहले भी शुरुआत में डिस्कस करा था कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर के भी हम ये वेट लॉस को दोबारा अटेन कर सकते हैं।
0: जी जी, लाइफस्टाइल तो बहुत बड़ा आपने बताया, रीजन खान पान बताया, लेकिन बच्चे आजकल बहुत ओवरवेट हो रहे हैं, तो डॉक्टर निखिल ये बताइए कि क्या सिर्फ खान पान लाइफस्टाइल ही इसके लिए दोषी हम माने, या कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं?
2: नहीं, बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आजकल स्टडीज में ये देखा गया है कि काफी सारे जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। और इसीलिए हम देखें कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में, मतलब इवन 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल के बच्चों में भी बहुत ज्यादा ये बीमारी पाई जा रही है। इसमें एक वजह ये जरूर है, जैसे बात की थी हमने खाने पीने के बारे में, प्रोसेस्ड फूड, मैदा, जंक फूड, ये सब इसका भी मात्रा इस्तेमाल बढ़ रहा है, एक्सरसाइज करने की टेंडेंसी कम होती जा रही है, लेकिन जेनेटिक्स भी अपना रोल प्ले कर रही है। इसलिए हमने देखा है कि पूरा का पूरा खानदान, पूरी फैमिली में ही, पिता भी, दादा भी और बेटा बेटी भी, सबके सब इससे ग्रसित हैं।
0: जी बिल्कुल। तो अब इतना ही समय है कि मैं अपने धन्यवाद दूं अपने आज के गेस्ट को, और आपको बता दूं कि आज हमने ढेर सारी बातें की बैरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। हमारे साथ रहे डॉक्टर निखिल गुप्ता, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, एसोसिएट डीन, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आरएमएल हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकुंद खेतान, को चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एक्सेस बैरियाट्रिक सर्जरी, सर गंगाराम हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों यहां आए, समय निकालकर इस विषय पर ढेर सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: I also refer to the unwarranted...
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान में तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमेरिका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते की जानकारी देंगे। श्री रूबियो का संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलोग्राम मादक पदार्थ आयात मामले से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्दुरून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में

वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम जून

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, अभी पिछले रविवार को फादर्स डे मनाया गया और सबने इस बात को माना है कि पिता वो है जो हर वक्त अपने बच्चों के लिए सोचता रहता है। पिता वो है जो खुद पुराने जूते पहनकर आपके लिए नए जूते लाता है। पिता वो है जो अपनी चाय आधी छोड़कर आपका दूध पूरा कर देता है। पिता वो है जो कभी बच्चों से आई लव यू नहीं कहते, मगर अपने बच्चों से हर रात जरूर ये पूछते हैं कि बेटा या बेटी खाना खाया या नहीं। पिता वो है जो हर बात पर माँ की तरह गले नहीं लगाते, मगर हर गलती पर एक ढाल बनकर जरूर खड़े रहते हैं। पिता वो जड़ है जो दिखते नहीं है, मगर परिवार रूपी पेड़ को कभी गिरने नहीं देते। और दोस्तों, इसीलिए बाहर से कड़क और दिल से नरम पिता को हर किसी ने याद किया इस रविवार, और दिल से पिता के लिए निकला थैंक यू।

0: जी हाँ, एक पिता जितना अपने बच्चों के लिए करता है उस कर्ज को बच्चा कभी चुका नहीं सकता, लेकिन हाँ, आई लव यू बोलकर उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर ला सकता है। दोस्तों, बच्चों की जिंदगी में एक पिता की क्या अहमियत होती है, आइए सुनते हैं कुछ लोगों से।
1: मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली से हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को एक ऐसा दोस्त जरूर मिलता है जो हर सिचुएशन में उसके साथ खड़ा रहे। मुझे लगता है कि मुझे वो दोस्त बहुत पहले ही मिल गए थे और वो हैं मेरे पापा। मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ, इसलिए शायद मेरा और पापा का रिश्ता थोड़ा अलग हो सकता है। हम सिर्फ फादर और डॉटर नहीं हैं, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बचपन में जब साइकिल चलाना सीख रही थी तो उन्होंने पीछे से साइकिल पकड़ी, और आज जब जिंदगी चलना सीख रही हूँ तब भी वो वैसे ही मेरे साथ खड़े हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि पापा लोग एक अजीब ही सुपर पावर लेकर आते हैं। हम कुछ बोलते नहीं, फिर भी उन्हें पता चल जाता है कि हम खुश हैं या परेशान। और जब पूरी दुनिया हमसे सवाल पूछ रही होती है तब वो एक इंसान होते हैं जो कहते हैं, तू बस कोशिश कर, मैं हूं ना। मैंने अक्सर देखा है कि माँ का प्यार बहुत खुलकर नजर आता है, लेकिन पापा का प्यार उन छोटी छोटी बातों में छुपा होता है। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना, अपनी जरूरतों से पहले हमारी जरूरतें पूरी करना और फिर भी कभी शिकायत ना करना। और सच कहूं तो जिंदगी में बहुत लोग हैं जो आपकी सक्सेस पर तालियां बजाते हैं, लेकिन पापा वो इंसान होते हैं जो आपके फेलियर्स में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। और पापा

0: अगर आप सुन रहे हैं तो थैंक यू, सिर्फ मेरे फादर होने के लिए नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त होने के लिए।
1: मेरा नाम कृष्णा है और मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ तो एक बेटे के लिए उसके पापा उसके पहले हीरो होते हैं। हम लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं तो हम चुपचाप अपने पापा को ही नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि वो कैसे करके सारी टेंशन अकेले हैंडल कर लेते हैं और हम तक कोई परेशानी नहीं आने देते। मम्मी तो सामने से प्यार दिखा देती हैं लेकिन पापा अपना प्यार अपनी मेहनत से और हमारे ज़रूरत पूरी करके दिखाते हैं। वो बाहर से भले ही हमें थोड़े सख्त लगें या हमें डांट दें लेकिन वो ऐसे इसलिए करते हैं ताकि हम लाइफ में मजबूत बने और अपनी जिम्मेदारी लेना सीखें। जब तक पापा का हाथ हमारे सिर पर होता है तो अंदर से एक अलग ही हिम्मत मिलती है।
2: नमस्कार, मैं खुशबू यादव बाराबंकी की निवासी। पिता वह मजबूत नींव है जिस पर बच्चों के सपनों की इमारत खड़ी होती है। एक बेटा अपने पिता से संघर्ष, जिम्मेदारी और आत्मसम्मान सीखता है। वहीं एक बेटी अपने पिता में अपना पहला दोस्त, पहला हीरो और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच देखती है। पिता अक्सर अपने प्यार को शब्द में व्यक्त नहीं करते लेकिन उनका हर त्याग, हर मेहनत और हर चिंता बच्चों के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाती है। जब बच्चे गिरते हैं तो पिता उन्हें संभालते हैं और जब बच्चे सफल होते हैं तो सबसे ज़्यादा गर्व भी पिता को ही होता है। पिता वो दीपक है जो खुद जलकर घर को रोशनी करते हैं। पिता वो बरगद है जो धूप खुद सहकर बच्चों को छांव देते हैं। इसलिए हमें अपने पिता के त्याग, प्रेम और संघर्ष का सम्मान करना चाहिए क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन पिता जैसा निस्वार्थी साथी और मार्गदर्शक बहुत

0: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आइए अब बात करते हैं लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ से। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू संतोष।
0: अच्छा विनीता जी, अभी फादर्स डे मनाया गया, एक बात बताइए, जैसे माँ का रिलेशनशिप बेटी के साथ दोस्ताना होता है, वैसे पिता और बेटे का क्यों नहीं होता?
1: हाँ ये तो है कि जितना बेटियाँ अपनी माँ के नजदीक होती हैं और जितना दोस्ती वो अपनी माँ से रखती हैं, माँ बेटी से रखती है, वो दोस्ती अक्सर पिता और बेटे में नहीं पाई जाती, क्योंकि पिता को अपने बेटों को जिम्मेवार बनाना होता है, घर का भार उठाना सिखाना है, उनको अनुशासित करना है, उनको गाइड करना है, तो अगर वो दोस्ती में रहेंगे तो फिर वो सब नहीं हो पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए अक्सर देखा गया है कि पिता जो होते हैं रौब से
0: जी
1: और अनुशासन डिसिप्लिन से अपने लड़कों को पालते हैं।
0: अच्छा आपको नहीं लगता कि अगर एक पिता का अपने बेटे के साथ एक दोस्ताना संबंध हो जाए तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान अपने आप ही निकल आएगा?
1: जी हाँ, फ्रेंडली तो हो सकते हैं, लेकिन इतने भी फ्रेंडली नहीं हो सकते, इतना भी दोस्ती नहीं कर सकते कि बेटा उनको फिर संजीदगी से ले ही ना, है ना?
0: जी।
1: अगर प्रिंसिपल दोस्ती करने लग जाएगा तो कोई स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल की ना तो इज्जत करेगा ना तो उसकी सुनेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो कुछ सख्ती भी पेश करनी पड़ती है और अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बेटा बड़ा होके पूरा उसको घर संभालना है।
0: जी।
1: तो दोस्ती मस्ती में वो शायद अपने पिता को सीरियसली ना ले, इसलिए पिता स्ट्रिक्ट रहते हैं।
0: बहुत सही कहा आपने विनीता जी। अच्छा पिता और बेटे के बीच जो दूरियां देखने को अमूमन मिल जाती हैं, उसकी वजह क्या क्या हो सकती हैं?
1: मुझे लगता है ये दूरियां इसलिए भी होती हैं कि कई बार पिता जाने अनजाने में

0: बच्चों को, बेटों को खास तौर से चोट पहुंचा देते हैं। उनका मतलब नहीं होता है, पर ये होता है कि अक्सर वो ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं
1: जी।
0: बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। जिस तरीके से माएं अपने बेटों को बिगाड़ देती हैं, उस तरीके से पिता भी अपने बेटों पर कुछ ज्यादा ही सख्ती कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर परिवार में हो, लेकिन अधिकतर ऐसा हो जाता है, जिसके कारण कई बार बेटे रिश्ता तोड़ देते हैं अपने पिता से या घर छोड़ के चले जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस, एक संतुलन, माता को भी इतना भी मुलायम नहीं होना चाहिए कि बेटे सीरियसली ना लें, और पिता को भी इतना सख्त नहीं हो जाना चाहिए कि बेटे रिश्ता तोड़ दें।
1: अच्छा, एक बेटे के लिए अपने पिता को आई लव यू बोलना समय समय पर कितना जरूरी होता है?
0: जो आई लव यू बोलना और अपने प्रेम और इज्जत का इजहार करना, वो तो बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है। और जिस तरीके से माता पिता अपने बुजुर्गों के साथ पेश आते हैं, पाया गया है, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे हमारी सुनने से ज्यादा हमारे को देखकर चलते हैं, कि हम अपने बड़ों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, वो हमको देखकर चल रहे हैं। तो अगर हम अच्छी रीति से अपने बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, तो हमारे बच्चे भी हमारा ख्याल रखेंगे।
1: अच्छा विनीता जी, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे?
0: चलते चलते मैं यही कहना चाहूंगी कि पिता की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है एक परिवार में, और बचपन की जो हमारी यादें होती हैं, जो हमारे जिस मोहल्ले में हम पले बड़े, उसमें तरह तरह के पिता मैंने देखे
1: जी।
0: अपनी सहेलियों के पिता, कोई बहुत गुस्से वाले थे, कोई बहुत मार पिटाई करते थे, कोई थे जो अच्छे थे, परिवार में प्यार से रहते थे। तो हम किस तरीके की यादें छोड़ के जा रहे हैं, जब पिता इस दुनिया से जाएगा तो बच्चे किस तरीके से अपने पिता को याद करेंगे? जैसे मेरे पिता जल्दी चले गए थे, 57 के थे, और मैं उनको आज भी बहुत याद करती हूँ। वो एक अध्यापक थे, लेखक थे
1: जी।
0: मैं बहुत याद करती हूँ उनको, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और आज वो ना बोलते हुए भी बहुत कुछ मुझसे बोलते हैं। हर एक मुद्दे पर बोलते हैं, हर एक विषय पर मुझे उनके विचार पता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पिता की भूमिका है, वो ये सोच कर निभाई जाए कि किस तरीके से बच्चे, बेटे बेटियाँ उन्हें याद करेंगे। और देखिए, हम किसी यूनिवर्सिटी से तो सीख कर आते नहीं है कि माता पिता का भूमिका किस तरीके से निभानी है। हम सब सीखते ही हैं, जीवन में सीखते हैं। आजकल तो फिर भी काफ़ी मटेरियल अवेलेबल है कि हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो किस तरीके से हम एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग कर सकते हैं, कि बच्चों को हम जिम्मेवार भी बनाएं, उनके साथ एक रिश्ता भी बना के रखें, और ईश्वर के भय में हम अपने बच्चों का लालन पालन करें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो ईश्वर ने हमको पिता होने के लिए, माता पिता होने के लिए दी है।
1: याद रखिए, कुछ शब्द अगर समय पर ना बोलकर देर से बोले जाएं, तो वो शब्द अपनी न सिर्फ अहमियत खो देते हैं, बल्कि वो शब्द अधूरे भी रह जाते हैं। इसीलिए अगर आप एक पिता हैं, तो अपने बेटे से एक दोस्त बनकर बात कीजिए, और अगर आप बेटे हैं, तो बिना वक्त गवाए अपने पिता को कह दीजिए, आई लव यू। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपने बेटे के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो जाए, तो आप हमारे काउंसलर से जरूर बात करें। हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा बात करने के लिए हमारा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें 7678438471 पर। तो दोस्तों

0: दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो आप सुन रहे हैं और आकाशवाणी रेनबो पर आज ये बहुत ही स्पेशल एडिशन मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। वैसे तो बुधवार का हर जो हमारा एडिशन होता है अल्फाजन का वो स्पेशल होता है और एक बार फिर से एक और बहुत ही स्पेशल कॉलेज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। भाई नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल। और कैंपस कॉलिंग के आज के एडिशन में हम कहाँ पहुँचे, हम नहीं पहुँचे, इनफैक्ट मेरी सहयोगी पहुँची, मेरी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुँची मिरांडा हाउस कॉलेज। मिरांडा हाउस कॉलेज जो कि अक्सर जो है CUET एस्पिरेंट्स की लिस्ट में बहुत ऊपर रहता है और जितनी भी हमारी महिला छात्र हैं वो सभी जो हैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती हैं। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी वजह होती हैं हर कॉलेज की अचीवमेंट्स के पीछे, बहुत सी वजह होती हैं हर कॉलेज में जाने की, हर कोर्स को चुनने की। कोर्स वर्सेज कॉलेज, CUET के एग्जाम्स, आपके ट्वेल्थ के एग्जाम्स के मार्क्स एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस समय पे आप सबके दिमाग में जो है वो घूमती रहती हैं। एंड ऑब्वियसली एडमिशन्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इस समय में। तो एडमिशन्स के इस फीवर के दौर में जब हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची मिरांडा हाउस कॉलेज तो वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई ना केवल वहाँ की फैकल्टी से, वहाँ के प्रिंसिपल से, बल्कि वहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स से, एस्पिरेंट्स से, उनके पेरेंट्स से और बहुत सारे लोगों से। आइए जानते हैं कि हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा जब पहुंची मिरांडा हाउस कॉलेज तो उन्होंने वहां पे किस किस से बात की।
2: हेलो, मेरा नाम है ऋचा। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में आज मैं आई हूँ सभी लड़कियों का ड्रीम कॉलेज मिरांडा हाउस। इस ओपन हाउस सेशन की जो कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आशिमा खरे मेरे साथ हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर।
3: थैंक यू ऋचा, थैंक यू सो मच।
2: मैम ओपन हाउस आप हमें जरा समराइज करके बताइए।
3: स्टूडेंट्स, गर्ल्स, पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। वो एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे उनकी क्वेरी सॉल्व हो चुके दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जैसे कि सब्जेक्ट कैसे चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट उनके करियर के लिए अच्छा है। पेरेंट्स आर आल्सो वेरी एक्साइटेड कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। सो ओवरऑल दे आर क्यूरियस आल्सो, एक्साइटेड आल्सो।
2: पेरेंट्स ज्यादा एक्साइटेड है या बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है?
3: सी पेरेंट्स तो मुझे थोड़े से वरिड भी लग रहे हैं। ठीक है, बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनके पास CUET रॉ स्कोर है, एक आइडिया उनके पास है क्योंकि लास्ट कट ऑफ बच्चों ने देखी है कि कौन से कॉलेज में कितना जाता है और कितना जा सकता है मैक्सिमम।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ऐसे कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं।
3: सब्जेक्ट मैपिंग को लेके भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें। सी हमारे पास दिल्ली NCR से भी बच्चे आ रहे हैं तो गुड़गांव से वो यहाँ पे जहाँ जो भी कॉलेज वो चूज कर रही है वहां से वो आना जाना कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। वो ये भी प्रेफरेंस है कि हमारे घर के आसपास अगर DU का कोई कॉलेज है वहां पर भी हम एडमिशन मिले तो वहां पर भी प्रेफर करेंगे।
2: और मैम अगर किसी की यूनिवर्सिटी में जान पहचान है, किसी टीचर से जान पहचान है, किसी प्रिंसिपल से जान पहचान है या यूनिवर्सिटी घूमते हुए कोई उन्हें कह दे कि हम एडमिशन करवा देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में, तो क्या करना चाहिए उन्हें?
3: बिल्कुल मत सुनिए, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। जो रूल्स हैं वो सबके लिए हैं। आपने CUET एग्जाम दिया है, आप एलिजिबल हो, आपके स्कोर आए हैं, आप एलिजिबल हो, लेकिन कॉलेज का कट ऑफ क्या जाता है या कॉलेज में कौन से स्कोर पे एडमिशन होता है वो आप पिछले स्कूल से, पिछले साल के जो स्कोर्स हैं या एडमिशन जिस भी स्कोर पे हुए हैं उससे आप एनालाइज कर सकते हो, पता कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। तो प्लीज किसी की बातों में मत आए, रूल्स रेगुलेशन पढ़ें ध्यान से, वेबसाइट को देखें, समझें और फिर ही आपको डिसीजन लें।
2: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम श्योर कि सुनने के बाद बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज ऐसे ही सॉल्व हो गई होगी। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू।
2: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ मिरांडा हाउस और यहाँ के ओपन हाउस सेशन में एक पेरेंट्स से मैं बात कर रही हूँ। सर आपका नाम क्या है?
4: कुलदीप त्यागी।
2: सर अपनी बेटी के लिए कॉलेज चूज करते वक्त आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी?
4: मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि यहाँ पर कितना उसको एक्सपोजर मिल सकता है

0: Second is faculty, because faculty plays a very crucial role. Second, the overall environment, like how the teachers are behaving, how the kids are respecting teachers and everything.
1: So, Miranda House के बारे में आपको कैसे पता लगा?
0: Miranda के बारे में, I would say it's one of the top ranked college. You look at the NIRF ranking, it is at the top level position.
1: सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी बेटी के लिए ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से.
0: थैंक यू.
1: मैम, क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम आभा शर्मा है. मैं अपनी डॉटर के साथ आई हूँ.
1: आप अपनी बेटी के लिए कॉलेज चूज करने जा रही हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं और आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी के लिए किस तरह का कॉलेज आप ढूंढ रही हैं?
2: बिल्कुल, ये एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है कॉलेज ढूंढना, क्योंकि मेरी डॉटर है, वो सेफ होना चाहिए सबसे पहली चीज. तो दूसरा, जो कोर्सेज है जिसमें वो अप्लाई करना चाहती है उसकी फैकल्टी कैसी हो, अप्रोचेबल हो थोड़ा कॉलेज, ताकि कोई अगर बीच में प्रॉब्लम आती है तो फैकल्टी इस तरीके की हो कि हम उनसे बात कर सके.
1: और मैम, एक ऐसी सीख जो आप अपनी बेटी को देना चाहती है उसकी बेटर कॉलेज लाइफ के लिए?
2: बी बोल्ड, ऑलवेज फॉलो रूल्स एंड गाइडलाइंस गिवन बाय योर पेरेंट्स टीचर्स. और अगर कोई भी बात होती है किसी लाइफ पे, किसी भी उस पे पड़ाव पे अगर कोई भी मुश्किल आती है, तो अपने पेरेंट्स पे फेथ जरूर रखना है, आके उन्हें जरूर वो बातें बतानी है.
1: मैम, पेरेंट्स से तो हम हमेशा सीखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. कोई एक ऐसी बात जो आपकी बेटी ने आपको सिखाई हो?
2: बेटी ने बहुत सारी बातें सिखाई है मुझे. सबसे बड़ी बात जो मैंने उससे सीखी है, मतलब वो हमेशा मेरी सपोर्ट बनी है जब भी मुझे जरूरत पड़ी है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही वो मुझे भी समझे, जब उसको जरूरत पड़े तो मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर.
1: चलिए मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपकी बेटी को मनचाहा कॉलेज मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए.
2: थैंक यू.
1: क्या नाम है आपका?
3: माय नेम इज आशीष सिंह.
1: सर, आज मंडे है, आज से ऑफिस स्टार्ट होते हैं, कल छुट्टी थी, और आज आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर यहाँ पर ओपन हाउस अटेंड करने आए हैं. सो हाउ मच दिस इज इम्पोर्टेंट टू यू?
3: इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी डॉटर ने अभी 12th पास किया है और CUET का एग्जाम है और रिजल्ट भी उनका कल आ गया है. तो किसी भी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है कि उसका नेक्स्ट जो आफ्टर कंप्लीटिंग 12 ईयर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो कॉलेज में जाएंगे, आगे उसके आगे क्या पढ़ेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये एक पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. और इसी को हम कहते हैं कि हमने अपने टाइम पे जब एजुकेशन करी थी वो एक डिफरेंट थी, और आज की डेट में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, उसके हिसाब से काफी चेंजेस हैं. तो वो सब हम समझ रहे हैं इस सेशन में, टीचर्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, उन्होंने भी हेल्प करी, तो इससे काफी क्लैरिटी आती है पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, सही कोर्स और सही कॉलेज चुनने में बहुत हेल्प होती है.
1: सो व्हाई मिरांडा हाउस?
3: मिरांडा हाउस डेफिनेटली हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ, इट्स अ कॉलेज ऑफ मोर देन 75 ईयर्स ओल्ड, एंड इट हैज वेरी गुड एकेडमिक फैकल्टी, इट हैज अ ग्रेट लेगेसी, एक्सीलेंट फैकल्टी, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. आज हमने जब टूर किया कॉलेज का, तो हमने देखा कि लाइब्रेरी में 10,000 से ज्यादा किताबें हैं, उनके पास मल्टीपल कैंटीन्स हैं, प्लस वो मटेरियल को भी रीयूज कर रहे हैं. ये सब इनिशिएटिव एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन लेता है.
1: सो कहते हैं कि बेटियां और जो फादर हैं, जो डॉटर और फादर का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो बहुत ही स्पेशल होता है. सो आई एम श्योर कि आपकी बेटी का के साथ भी आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होगा. तो ऐसी कौन सी खास बात है उसमें जो जिसे आप बताना चाहेंगे?
3: मेरे को जो मेरी डॉटर काशवी में लगता है कि वो शुरू से ही बहुत ही क्लियर है अपने ऑप्शंस को लेकर. जैसे उसने 12th किया, उसके बाद उसने हमारे से इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने की बात करी और UN में जाने की बात करी, तो मेरी और मेरी वाइफ के लिए बिल्कुल ही डिफरेंट और नई चीज. तो मैं ये कहूँगा कि आजकल लड़कियाँ ज़्यादा फोकस भी होती हैं, और मेरी डॉटर में मुझे ये भी दिखा कि उसकी बहुत क्लियर उसका प्लान है कि उसको आगे करियर में क्या करना है. तो ये चीज मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अगर चीजों को आप सिंपल रखो तो आप ज्यादा अचीव कर सकते हो.
1: एब्सोल्युटली सर. सर, पेरेंट्स से तो हम बच्चे बहुत कुछ सीखते ही हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है जो आपने अपनी बेटी से सीखी है?
3: मैंने सबसे अच्छी बात उससे ये सीखी है कि कई बार सिचुएशंस में जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और आप बहुत कंफ्यूज होते हो, तो भी आप कैसे एक पर्टिकुलर चॉइस को बाकी सब चॉइसेस से आगे रख सकते हो एलिमिनेट करके. उसने ये बहुत अच्छे से किया, चाहे वो कॉलेज के सिलेक्शन हो, चाहे वो स्कूल का सिलेक्शन हो. उसने हमेशा मतलब चूजिंग द राइट ऑप्शन विद अ काम माइंड, मैंने अपनी डॉटर से ये सीखा.
1: क्या बात है सर, वो छोटी सी उम्र में इतनी क्लियर है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड साइन सर. आगे वो बहुत सक्सेस पाए, बहुत सफल हो, आपको बहुत प्राउड फील करवाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं. सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
3: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.
4: क्या बात है, सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि पेरेंट्स और बच्चे भी हैं जो कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, एक दूसरे में उन क्वालिटीज को एडमायर करते हैं. वैसे कहते रहना ना बहुत अच्छा रहता है. तो अगर आप भी एक पेरेंट हैं और एक टीचर हैं, देन ऑब्वियसली एनकरेजमेंट ना ऐसे ही वर्ड्स से आती है, ऐसे ही शब्दों से आती है, बताते रहना चाहिए. और जब आप

कुछ अच्छा उनमें देखें तो तारीफ जरूर करें। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल। हम आज आपको शेयर करवा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में से एक बहुत बड़ा नाम जिसे हम कहते हैं, वो है मिरांडा हाउस, उसकी हम आपको शेयर करवा रहे हैं। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा वहां पर पहुंची हैं और उन्होंने वहां पर अभी आपको सुनाया कि किस तरह से जो एस्पिरेंट्स हैं वहां पर ओपन हाउस अटेंड कर रहे हैं। इसके बाद और इसके अलावा और बहुत कुछ है हमारे पास आपको सुनवाने के लिए। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूं मैं स्वाति एक बार फिर से आप सभी के साथ। और मैं आपको बताना चाहती हूं एक बहुत ही खास बात, स्वाध्यायन प्रमदितव्यम, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वैदिक वाक्य है और ये उपनिषद से लिया गया है और ये पाठ है उस कॉलेज के लोगों का जहाँ की सैर हम आपको करवा रहे हैं। वैसे इस वाक्य का मतलब होता है कि आपको अपने स्व अध्याय यानी कि स्वयं के अध्ययन से या उसके ज्ञान अर्जन से ना कभी भी आपको आलस नहीं करना चाहिए, कभी भी उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए जी। और इसका मतलब यह है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ को आप लगातार बढ़ाते रहें, अपनी सेल्फ लर्निंग को जो है लगातार बढ़ाते रहें और ज़िंदगी की एक तरह से कहना चाहिए कि जो नॉलेज है, लर्निंग है, इन सब से उसको एनरिच करते रहें। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे मिरांडा हाउस की सैर करवा रहे हैं हम आपको आज के हमारे इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची वहां पर और वहां पे उन्होंने बहुत सारे एडमिशन के समय पे जो सरगर्मी चल रही होती है ना, बहुत सारी वो है जो उन्होंने कैच की है। आइए जानते हैं कि अगली बातचीत उन्होंने किससे की।
1: अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आई हूँ मिरांडा हाउस और ओपन हाउस में स्टूडेंट मुझे मिली है। क्या नाम है आपका?
2: महक।
1: महक, आप उन्हें अभी भी 12th पास किया है?
2: हाँ जी।
1: कैसे मार्क्स आए आप?
2: मेरे 87% है।
1: तो आगे आप कौन सा कोर्स लेने की सोच रही हैं कॉलेज में?
2: बीएससी ऑनर्स मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स।
1: तो मिरांडा हाउस आपकी पहली चॉइस है?
2: हाँ जी।
1: मिरांडा हाउस ही क्यों?
2: मैम यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है और करिकुलम और हर चीज अच्छी है, मतलब बाकी कंपैरिजन में। पर से अगर गर्ल्स कॉलेज का देखा जाए तो उसमें भी सबसे टॉप पे यही कॉलेज है, साइंस स्ट्रीम के लिए बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, इस कॉलेज के बारे में पता कैसे लगा आप?
2: तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब कॉलेज के लिए मैं विजिट कर रही थी तब मैंने इसके लिए सर्च करा था।
1: अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा कॉलेज कैसा होता है, एक अच्छे कॉलेज में क्या क्या होना चाहिए?
2: हम बच्चों को जो भी चाहिए मतलब वो प्रोवाइड करे कॉलेज, और प्लेसमेंट्स अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो और बाकी आईटीज वगैरह भी अच्छी हो वैसा सब।
1: यूजी का एग्जाम दिया है आपने?
2: हाँ जी।
1: कैसा एक्सपीरियंस रहा?
2: अच्छा था, मतलब आ जाएंगे नंबर लगता था।
1: तो आपका ड्रीम करियर क्या है, क्या बनना चाहती हैं आप?
2: एक्चुअली मैं डिजाइन में परस्यू करना चाहती हूँ बट मैं एक स्टडी वाली डिग्री भी लेना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं मैथ्स से लेकर रही हूँ।
1: चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी बेस्ट विशेज, आपका फेवरेट कॉलेज, आपका फेवरेट कोर्स मिले आपको।
2: थैंक यू मैम।
1: आपका नाम क्या है?
3: स्वाति।
1: स्वाति, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सीयूईटी का?
3: मैम बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस सीयूईटी का, स्कोर्स भी सही आए हैं मेरे अभी तक, रॉ स्कोर्स जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, बाकी आगे अब देखते हैं रिजल्ट आएगा उसके बाद।
1: अच्छा, अब स्कूल छूट रहा है, आप लोग कॉलेज में आ रहे हैं, क्या कैसा मतलब कॉलेज के बारे में आपकी क्या ड्रीम्स है?
3: हमें से सच कोई ड्रीम्स तो नहीं है बट लगता है नया स्पेस,
1: इमेजिनेशन होती है ना एक, हमारा कॉलेज ऐसा होगा जैसे हमने मूवीज में देखा है।
3: मैम है मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारी हो एकेडमिक्स के साथ, मेरे को ऐसा कॉलेज चाहिए।
1: अच्छा, तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि कोई एक बात स्कूल की मैं पूछूं कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो स्कूल की सीख आप कॉलेज में भी कंटिन्यू रखेंगी?
3: डिसिप्लिन और उसके अलावा अपना काम सही से करना।
1: क्या बात है, बहुत सारी हमारी तरफ से गुड विशेस आपको।
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: क्या नाम है आपका?
4: अविका।
1: अविका, 12th में कैसा रहा आपका रिजल्ट?
4: 12th में अच्छा था, 97%।
1: ओके, तो इतने अच्छे मार्क्स के बाद क्या आपका प्लान है?
4: अभी तो फिलहाल डीयू एंड मिरांडा ही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, प्राइमरीली बिकॉज रिसर्च में जाना है आगे एमएससी एंड पीएचडी का और सोचा है, एंड आई हैव हर्ड कि डीयू में अलुमनाई नेटवर्क भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है एंड प्लस नॉर्थ कैंपस में स्पेशली काफी ज्यादा कनेक्टिविटी एंड सोशलाइजिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है।
1: अच्छा, आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, व्हाट डू यू थिंक, इज इट हार्मफुल और इज यूजफुल?
4: या डेफिनेटली इट्स अ टूल बट इट्स अ टूल दैट शुड बी यूज्ड रियली केयरफुली, देयर आर अ लॉट ऑफ साइबर स्कैम्स बट देन अगेन वी हैव साइबर सिक्योरिटी एज वेल, सो या इट शुड बी यूज्ड रियली केयरफुली।
1: अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए कोई सुपर पावर मिल जाए तो आपको कौन सी सुपर पावर चाहिए और उससे क्या करना चाहेंगे आप?
4: इनविजिबिलिटी, फिर मैं सब पैसे चेक करती रहूंगी।
1: अच्छा, तो अभी आप अपना कॉलेज सर्च कर रही हैं और कॉलेज के फर्स्ट डे, जैसे कि हम बहुत सारी मूवीज में देखते हैं कि बहुत सारी फैंटेसीज होती हैं कॉलेज को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा होगा?
4: मन तो मेरा भी है कि मैं ऐसे बाल उड़ाऊं कि सिर्फ चार लोग हों, पर मतलब ऐसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो ये है कि जो मैंने कॉलेज चूज किया है वो मेरे को पसंद आए एंड आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स।
1: चलिए, ऐसा ही हो, हमारी ऐसी शुभकामना है कि जैसा आपका सपना है, जो तो सोचा है, वो सब कुछ सच में हो।
4: थैंक यू।
1: आपका नाम क्या है?
5: तनुष्का।
1: तनुष्का, आपके क्या ड्रीम्स हैं?
5: मेरे को रिसर्च में जाना।
1: रिसर्च में जाना है और किस सब्जेक्ट में?
5: बायो से रिलेटेड कुछ भी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, न्यूरोलॉजी कुछ।
1: अच्छा, एक बात बताइए, आपकी हॉबीज क्या क्या है?
5: मेरी हॉबीज, मैंने अभी भी रिसेंटली क्रोशे करना सीखा है और मेरे को डांस पसंद है और मतलब अभी मेरे को स्विमिंग भी सीखनी है, मतलब आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग ऑल द हॉबीज। आई थिंक आई लाइक लर्निंग.
1: ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जो भी आपके सपने हैं वो जरूर पूरे हों. आप इतनी हार्ड वर्किंग हैं कि आपने कहा आप इतने सब्जेक्ट्स पढ़ती हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ती हैं, इतनी सारी हॉबीज परस्यू करती हैं. आई एम श्योर आपको जो चाहिए वो जरूर मिले. थैंक यू सो मच हमसे बात करने.
5: थैंक यू.

0: आपका नाम क्या है?
1: दीपिका।
0: दीपिका, इस बार आपने 12th एग्जाम दिया है।
1: यस।
0: कैसे मार्क्स है?
1: 93.8%।
0: तो आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं?
1: आई एम प्लानिंग टू डू इंग्लिश ऑनर्स एंड देन डू मास्टर्स इन इंग्लिश बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश।
0: फिर मैं कहूँ कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात करें जो कोई ऐसे इंग्लिश के राइटर हो जिनके साथ आपको एक दिन बिताने का मौका मिले, तो इंग्लिश राइटर कौन सी होंगे?
1: इट हैज टू बी शेक्सपियर बिकॉज आई लव हिज प्लेस। The twists, the turns of his plays, fantastic. I have also participated in Shakespeare plays in my school. So,
0: जब college अब start होने वाले हैं, so one thing that really makes you excited about the college life?
1: It is the freedom to do whatever we want because.
0: और अगर मैं कहूँ कि एक word में आपको खुद को define करना है in just a word, तो वो क्या होगा?
1: I think that will be discipline because I was the discipline captain in my school.
0: आपका नाम क्या है?
1: दीक्षा।
0: दीक्षा, आपका कैसा score रहा इस बार 12th में?
1: 96.8.
0: And what's your future plan?
1: I am planning to do geography honors.
0: अच्छा, तो क्योंकि आप geography में interested हैं, तो मुझे बताइए इंडिया की ऐसी 5 अलग अलग geographical places जो कि tourism के लिए भी बहुत best.
1: Thar desert, Himalayas हो गए हमारे, eastern Himalayas beauty जो north east की beauty है, south के beaches, plateaus, Deccan plateaus.
0: तो चलिए आपको success मिले and आप सब कुछ achieve करें जिस जिसका आपने dream देखा है, यही हमारी शुभकामनाएं. Thank you so much हमसे बात करने के लिए दीक्षा.
1: थैंक यू सो मच.
0: क्या नाम है आपका?
2: अंशिका त्यागी.
0: अंशिका, कैसी तैयारी चल रही है आपकी कॉलेज में आने की?
2: इट्स गुड, आई एम वेरी एक्साइटेड. सब शॉपिंग वगैरह चल रही है एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स टू कम आउट.
0: ओके, तो कौन सा कोर्स आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में है?
2: कोर्स ऑफ कोर्स जूलॉजी, देन बॉटनी एंड देन लाइफ साइंस.
0: एंड कॉलेज की बात करें तो?
2: कॉलेज ऑफ कोर्स मिरांडा हाउस सबका टॉप पे रहता ही है.
0: अच्छा, आपने ओपन हाउस अटेंड किया?
2: या.
0: कैसा रहा आपका?
2: इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस.
0: क्या क्या सीखा आपने यहाँ से और क्या हेल्प हुई आपको?
2: आई हैड अ क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड टू सम गाइडेंस आई नीडेड एंड इट वॉज डेफिनेटली वेल आंसर्ड बाय द हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट वशिष्ठ मैम एज फार एज आई रिमेम्बर.
0: तो यानी आपकी सारी क्वेरीज यहाँ के सॉल्व हुई और ये वर्दी लगा आपको आना?
2: या डेफिनेटली.
0: Your all dreams comes true. ऐसी हमारी शुभकामनाएं. Thank you so much for talking.
2: Thank you so much.
0: क्या नाम है आपका? ऊर्जा. ऊर्जा, क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में?
3: मेन तो मेरा साइकोलॉजी ही परस्यू करना है. हाउएवर मिरांडा में वो कोर्स नहीं है, सो माय सेकंड ऑप्शन वाज पॉलिटिकल साइंस. दैट्स व्हाई आई केम फॉर दिस. बट मेन अगर मैं बोलूँ तो साइकोलॉजी परस्यू करना है.
0: साइकोलॉजी क्यों?
3: साइकोलॉजी मेरे को पता है अगर 11th में आई टुक साइकोलॉजी तो सब्जेक्ट एंड तब तक तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था साइकोलॉजी करने में. बट मैंने जैसे सब्जेक्ट पढ़ा वो तो मतलब मेरे को जेन्युइनली सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट भी वो इतना अच्छा लगा. एंड यू नो आप उसमें नए नए लोगों से मिलते हो एंड आपको मतलब नई नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलती है. आई थिंक मतलब आई रियली लाइक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. तो
0: कहते हैं साइकोलॉजी जो है वो मन का विज्ञान है. तो अच्छा ये बताइए कि जब अभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कभी स्ट्रेस होता है, तो आप उससे कैसे कॉप अप करती है?
3: आई थिंक माई बेस्ट वे वुड बी मैं टीवी देखती हूँ. दैट इज माई वेरी बिग स्ट्रेस रिलीवर, टीवी देखना. या फिर आई हैव स्केचिंग एज अ हॉबी. मतलब मैं ऑलमोस्ट बचपन से लाइक 5-7 साल की उम्र से वो कर रही हूँ. तो ड्रॉइंग करना मेरे को बहुत पसंद है. तो दैट इज माई वेंटिंग आउटलेट की ड्रॉइंग करो, स्केचिंग करो, गाने सुनना.
0: आजकल हर एक चीज के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो AI का यूज करते हैं. आप उसे कैसे देखती हैं? ये एक चैलेंज है या एक बून है या एक कर्स है स्टूडेंट्स के लिए?
3: मेरे लिए ऑनेस्टली AI के लिए कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस बिकॉज मैं एज अ स्टूडेंट भी अपनी डे टू डे लाइफ में वो यूज करती हूँ. एंड आई थिंक इट मैटर्स कि आप किस एक्सटेंट तक यूज कर रहे हो. अगर आप अपने लाइफ टू लाइफ हर एक चीज के लिए उस पर डिपेंडेंट हो कि आप किसी पढ़ाई कर रहे हो ना, आपको जेन्युइन रिसर्च करनी है, आप उस पर भी AI पे डिपेंडेंट हो, देन इट्स रियली हार्मफुल बिकॉज उससे आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हैम्पर करे. क्योंकि जो आप रिसर्च करके करते हो, जो आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो आप अगर AI में डालोगे, यस वो इफेक्टिव है, बट आपकी फिर मतलब इट्स लाइक कि आपका कोई ब्रॉड बेस, मतलब आप कुछ नई नई चीजें एक्सप्लोर नहीं करो. आपने बस एक वो फॉर्म डाला, उसने आपको उतने ही आंसर दे दिए. इंस्टेड अगर आप रिसर्च करोगे, आपको 10 और नई चीजें पता चलेंगी जो शायद आपको AI से ना पता चलती.
0: वैसे तो ये जो हमारा प्रोग्राम है अल्फा जेन कैंपस कॉलेज, इसमें हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई करनी ना हो, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगी?
3: अगर बिल्कुल ही ना करनी हो तो आई फील लाइक आई वुड टर्न ड्राइंग एंड आर्ट इनटू अ करियर बिकॉज वो मेरा बहुत बचपन का ही पैशन है. एंड मतलब इट्स लाइक अ वेरी क्रिएटिव फील्ड में ना कंपटीशन वगैरह एंड स्कोप बहुत थोड़ा कम रह जाता है उसमें जाके. तो मैंने कभी मतलब अपनी आर्ट वगैरह को ऐसे प्रोफेशनल मैनर में कभी देखा ही नहीं. तो अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो मैं ऑब्वियसली अपने पैशन को भी करियर में करना चाहूंगी.
0: क्या बात है, जो भी आपकी प्लानिंग्स है वो सारी एग्जीक्यूट हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस.
3: थैंक यू सो मच फॉर.
4: इसे कहते हैं हाउस द जोश. हाई सर, ऑब्वियसली बहुत ही हाई स्पिरिट्स हैं, बहुत ही हाई जोश है, क्योंकि एंटर करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में. ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं और मिरांडा हाउस में हो रहे ओपन हाउस में पार्टिसिपेट कर रहे थे. हमारा ये प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन डेडिकेटेड है हमारी कैंपस लाइफ को, हमारी स्टूडेंट लाइफ को, और इन सभी कैंपसेस में, इन सभी कॉलेजेस में जहाँ की अपनी अलग अलग पहचान है, अपने अपने लेगेसीज हैं और अपने अपने आइडियल्स हैं, अपने विजन्स हैं और मिशंस हैं। वैसे जहाँ पर मिरांडा हाउस की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे सामने आंखों के आगे जो आता है और जो यहाँ के स्टूडेंट्स की आंखों के आगे आता है, वो है हायर एजुकेशन, हाई गोल्स, हाई आइडियल्स और उसके साथ साथ हाई लेवल ऑफ सक्सेस एंड ऑब्वियसली उसका रिकॉग्निशन भी। लेकिन सबके बेस में होती है एक चीज और वो है हाई लर्निंग। जी हाँ, 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं रुक रही हूं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं इस ब्रेक के बाद।
5: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक आकाशवाणी।
6: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
7: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
6: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
7: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
8: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
9: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
10: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
9: क्या ये जांच उपलब्ध है?
11: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
12: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
11: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
12: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
13: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
14: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ,
15: दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
16: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
17: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
16: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन, पुरुषों और महिलाओं के लिए खास कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
18: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।

0: करें indiapost.gov.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
2: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: म्यूजिकली योर्स 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और हमारा ये प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग पहुंच रहा है आप तक हमारे यहाँ के ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो से। और आज जहां पर पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा, वो है मिरांडा हाउस कॉलेज। और मिरांडा हाउस कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा इस्टैब्लिश्ड भी है और मेंटेन्ड भी। अगली बातचीत जो ऋचा ने की वो की यहाँ के प्रिंसिपल से, और आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है।
4: आज मैं आई हूँ अल्फा जन कैंपस कॉलिंग में मिरांडा हाउस, और मेरे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम अल्फा जन में।
5: थैंक यू रिचा। मैं प्रोफेसर विजयलक्ष्मी नंदा, प्रिंसिपल ऑफ मिरांडा हाउस हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं अल्फा जन के माध्यम से आपके साथ बात कर रही हूँ।
4: मिरांडा हाउस मैम, ये किसी भी कॉलेज के नाम जैसा नहीं लगता। मिरांडा हाउस के नाम के पीछे की क्या हिस्ट्री है?
5: मिरांडा हाउस का नाम, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा रिचा, ये सबको ही हमें पूछता है। और हमने कभी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी, हम भी जब इस कॉलेज में ज्वाइन किए थे एज ए टीचर, आई वांटेड टू नो कि क्यों मिरांडा हाउस। तो हमें जो पता चला, यहाँ के जो फर्स्ट, हम मॉरिस गॉयर ने इस कॉलेज को किया, जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने इस कॉलेज की एस्टैब्लिशमेंट की और उन्होंने ही नाम दिया। जब उन्होंने नाम दिया तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, वेदा ठाकुर दास जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे, उन्होंने लिखा था कि तुमको अब सबको ही पूछेंगे कि इसका नाम मिरांडा हाउस क्यों है, तो तुम्हें तीन तरह से इसका आंसर देना है। नंबर वन, ये पहले हॉस्टल बना था और हॉस्टल का जो ब्लॉक है वो पहले बना था, तो इसीलिए हाउस फॉर गर्ल्स फॉर स्टडिंग इन दिस कॉलेज, तो मिरांडा हाउस इसीलिए था। सेकेंड जो पॉइंट था, उन्होंने टेम्पेस्ट, शेक्सपियर की जो प्ले है टेम्पेस्ट, उसकी जो कैरेक्टर है मिरांडा, उस पे बेस किया था, उसके क्वालिटीज ऑफ इनोसेंस ऑफ करेज, उसको एग्जेम्प्लीफाई करते हैं मिरांडियंस, तो मिरांडा। उनके जो फेवरेट एक्ट्रेस थी वो थी कार्मेन मिरांडा, तो उन्होंने उनका बताया। बाद में उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मिरांडा रखा था, तो यही सब कारण था कि मिरांडा नाम रहा, और हाउस बिकॉज ये बिगिन किया एक हॉस्टल होके, जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल, और बाद में इसकी टीचिंग ब्लॉक्स बनी।
4: मैम, ये कॉलेज जो है ये सभी का ड्रीम कॉलेज है, तो मैम ऐसी क्या खास बात है इस कॉलेज में कि हर एक स्टूडेंट इस कॉलेज का एक पार्ट बनना चाहता है?
5: बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि किस जो स्टूडेंट्स है वो मिरांडा हाउस को अपना ड्रीम कॉलेज मानते हैं। एक तो पहली बात, इसकी लेगेसी है। 1948 में जब एस्टैब्लिश किया गया तब ये लिबरल आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस की भी थी और साइंस कॉलेज बस थी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, और गवर्नमेंट कॉलेज के होने के नाते यहाँ पे जो फर्स्ट जो वीमेन आए उन्होंने नेशन बिल्डिंग में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। तो ये है लेगेसी ऑफ विमेन्स लीडरशिप, ये पहली चीज है। सेकंड चीज है कि जो सिर्फ लेगेसी पे ये रेस्ट नहीं किए, उसके आगे बढ़ाते गए, कॉलेज की डायनेमिज्म बढ़ी, यहाँ की जो एल्युमिनाई है, जो टीचर्स है, इनकी कहानी दूर दूर तक गई। अभी तो सोशल मीडिया है, उस समय ये नहीं था, लेकिन हमारी एल्युमिनाई ही हमारे स्पोक्स पर्सन थे, ये लोग साइंटिस्ट बने, पोलिटिकल लीडर्स बने, तो कहानी हर तरह से अच्छी ही थी, और इसीलिए इस कॉलेज के लोग पार्ट बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये एस्टैब्लिश जो इसका जो नाम है, और NIRF की रैंकिंग भी इसकी टॉप कॉलेजेस में रही हर समय, तो ये सब कारण है कि मिरांडा हाउस की इस तरह की सेलिब्रेशन है।
4: मैम, इतना नाम होने के बाद भी इस कॉलेज ने इनिशिएट किया ओपन हाउस सेशन, इसकी क्या वजह है?
5: हाँ, ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आप में तो एडमिशन की कोई इश्यू नहीं आती होंगी, तो आप क्यों ये ओपन हाउस किए?
4: एब्सोल्युटली
5: तो इसके इसके कारण भी कुछ थे।

0: पहली बात ये थी कि हमें काफी पेरेंट्स के फोन्स आते थे और कुछ स्टूडेंट्स के भी जो क्लास 12th पास के, कि हमें बता दीजिए, गाइड कर दीजिए, हम CUET फॉर्म भरना चाहते हैं, तो हम उनको इंडिकेट करते थे, आप डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी के बहुत अच्छे वीडियोज है, आप वो देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ओपन हाउस ओरिएंटेशन होता है, उसमें आप आइए। फिर भी मुझे लगा कि नीड बहुत ज्यादा है, और पहले हमारी पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो जाती थी एडमिशन के दौरान, अब वो नहीं होती है क्योंकि ऑनलाइन हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये एक मौका है कि हम उन पेरेंट्स को मिले, उन डॉटर्स को मिले, डॉटर्स आर डूइंग द बेस्ट इन
1: एब्सोल्युटली
0: 12th रिजल्ट्स, कि उनको मिले किसी भी कारण ये फॉर्म फिलअप या कोर्स या कॉलेज की जो जो प्रॉब्लम्स आती है कि मैचिंग में वो गलती हो जाए, इसके लिए किस कोई स्टूडेंट मिरांडा हाउस से वंचित हो जाए, हम ये नहीं चाह रहे थे, इसीलिए ये ओपन हाउस।
1: मैम, जो स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आना चाहते हैं, जो पहली बार आएंगे, उनके लिए आपकी एक सलाह क्या रहेगी?
0: जो पहली बार मिरांडा हाउस आएंगे उनके लिए मेरी यही सलाह है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आइए, और जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं उसको बिल्कुल आप फॉलो कीजिए। दूसरी जो मेन चीज है, आप जब कॉलेज में आते हैं, आप इसके एम्बियंस अपने पियर्स के साथ, आप वेबसाइट जरूर देखें आने से पहले, क्या सब्जेक्ट्स है, किस तरह की सोसाइटीज है, DU के रूल्स को भी अच्छे से आप पढ़ लीजिए, अटेंडेंस रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने सोसाइटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो देख लीजिए। क्लासरूम टीचिंग पे आप बिल्कुल भरोसा कीजिए, और ये मत सोचिए कि चलो कोई बात नहीं, हम एडमिशन ले लिए, कहीं इंटर्नशिप कर लेते, तो कीप इन माइंड अटेंडेंस इज अ मस्ट।
1: मैम, आप आपने इतनी अच्छी सलाह दी स्टूडेंट्स को। मैम, आई एम श्योर कि जब आप एक स्टूडेंट रही होंगी तो उस वक्त आपके भी कोई गोल्डन मंत्रास होंगे जो आज आप पास ऑन करती हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैम, वो गोल्डन मंत्रास आपके क्या हैं जो आज स्टूडेंट्स को भी फॉलो करने चाहिए?
0: मेरे जो गोल्डन मंत्राज है, मैं तो अभी तक अपने आप को स्टूडेंट ही मानती हूँ, तो मेरा गोल्डन मंत्रा है इनेट क्यूरियोसिटी। मुझे हर समय सब चीज के बारे में बहुत जानकारी रखने का इच्छा होता है। सेकेंडली मेरा कहते हैं कि आई ट्रस्ट की सोल्यूशंस हैं और मुझे मिल जाएंगे। मैं सिनिकल या क्रिटिकल, उस तरह से डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में बिलीव नहीं करती, तो मैं कहूंगी कि होप रखना बहुत जरूरी है। थर्ड जो मेरा गोल्डन मंत्र यह था कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है तो उससे भी अगर हम कुछ सीख सकते हैं, चलो आई डिड नॉट, आई फेल्ड, तो इससे मुझे कुछ अगर सीखने को मिलेगा तो मैं सीखूं। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न इवन फ्रॉम योर फेलियर्स। एंड फोर्थ दिस, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली। नहीं हुआ, आगे जाके आप सेंस ऑफ ह्यूमर, कुछ एक हॉबी ये आप रखिए, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ट्रस्ट योर टीचर्स, ट्रस्ट योर पेरेंट्स, ये भी जरूरी है।
1: थैंक यू सो मच मैम, हमसे इतनी सारी बातें साझा करने के लिए और इतना कुछ कॉलेज के बारे में हमें जानने को मिला, और ये ओपन हाउस रख के जो आपने स्टूडेंट्स की क्वेरीज सॉल्व की ना, दैट इज रियली कमेंडेबल। एक ऐसे कॉलेज जो कि टॉप लेवल पर है, अभी इसकी NRF जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट इंडिया के सेकेंड बेस्ट कॉलेजेस में है, उसके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लेना शायद एक बहुत बड़े दिल वाला कॉलेज ही कर सकता है।
0: थैंक यू सो मच रिचा, आपकी अप्रिसिएशन भी हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अप्रिसिएशन से आदमी मोटिवेट होता है और फिर हम लोग और अच्छा काम करते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू यू।
2: क्या बात है, हर कॉलेज की अपनी अलग एक जर्नी रही है, हर कॉलेज की अपनी एक अलग हिस्ट्री रही है, और साथ ही हर कॉलेज के पास अपना खुद का जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया भी है। लेगेसी के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ये हर कॉलेज जो है वो अपनाने की कोशिश करता है, और यही कर रहा है मिरांडा हाउस भी। आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा पहुंची दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज मिरांडा हाउस में, और हर बार इसी तरह हम आपके लिए समेट लाते हैं एक ऐसा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और उससे मिलवाते हैं आपको, सैर करवाते हैं आपको वहाँ के गलियारों की। आज का एल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन था बस यहीं तक, अगले हफ्ते एक बार फिर से एक नए कॉलेज के साथ होंगे हाजिर। तब तक आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। स्वाति को दीजिए इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और यूएई के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 2029 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो मादक पदार्थ आयात से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के 5 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ये तलाशी हरप्रीत सिंह तलवार, शमशुद्रून और उनके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर की जा रही है। मादक पदार्थ से प्राप्त धन का कथित तौर पर दिल्ली के नाइट क्लबों में निवेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SMKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं तथा स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। खेदिन शिलेमा चानू कप्तान तथा निधि और एंगिल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर दमन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और आपके साथ है आपका दोस्त वीर दमन। और सिटी दिल्ली NCR की तमाम जानकारी, तमाम न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं सिटी लाइट्स में। और आपको बता दें कि दिल्ली में 4 घंटे बंद रहेगा भोगल फ्लाईओवर। जी हां, गुरुग्राम में 15 दिनों का रूट डाइवर्जन है। और ये क्यों है, चलिए, और कब से कब तक है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली के भोगल फ्लाईओवर मथुरा रोड पर नाइट क्लोजर और गुरुग्राम के MDI चौक पर सिविल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। भोगल फ्लाईओवर 24, 27, 29 जून और 2 जुलाई को रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक बंद रहेगा। MDI चौक पर डाइवर्जन है 23 जून से 20 जुलाई 2026 तक ये लागू रहेगा। तो अगर आप रात को यहाँ से निकल रहे हैं तो प्लीज़ इस रास्ते को अवॉइड कर चलें और सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक। और अगर आप भी इस वक्त कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं या फिर जा रहे हैं कहीं, तो आप हमें ट्रैफिक अपडेट भेज सकते हैं अपने नाम और अपनी जगह के नाम के साथ। और नंबर वही है 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर ये तमाम जानकारी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, और आगे आपको मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा मौसम के रिलेटेड है। जी, आंधी बारिश के बावजूद दिल्ली में मानसून दूर है लगातार बढ़ रहा है उसका इंतज़ार। तेज हवाओं और बिखरी बारिश के बीच दिल्ली में मौसम ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन मानसून की असली दस्तक अब भी दूर है। लगातार बना रहे जो ये हमारी बारिशें हो रही है ना, इससे मौसम तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश आने को है, मानसून आने को है, लेकिन ये कमज़ोर मौसम सिस्टम और ट्रैफिक लाइन की मौजूदगी के बावजूद दिल्ली की राजधानी तक मानसूनी बादल नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? जिसके इंतज़ार और लंबा होता जा रहा है। तो आपको बता दें कि दोस्त, अभी इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रोग्राम तो खैर चलता रहेगा। और दिल्ली एनसीआर में कल आंधी बारिश के साथ मौसम में एक बार फिर राहत देखने को मिली थी, लेकिन मानसून की असली दस्तक अभी भी राजधानी से दूरी बनी हुई है। तेज आंधी और हल्की बारिश के बीच लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन गर्मी और उमस से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल पाया है। मौसम के इस उतार चढ़ाव के मौसम के इंतजार को और लंबा कर दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में कई छोटे स्तर की चक्रवाती परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसके चलते कहीं कहीं तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि मानसून जो है ना, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, और ऐसा कहा जा रहा है कि 29 जून तक रुक रुक दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। अधिकांश बारिश देर शाम और रात के समय होने की संभावना है। हालांकि ये बारिश 5 मिलीमीटर से कम रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी। दिन के समय तेज हवाओं और कम बादलों के कारण तापमान एक बार फिर बढ़कर 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। और दिल्ली में 1 जून से अब तक बारिश सामान्य से काफ़ी कम दर्ज की गई है, जिससे मानसून की कमी और ज़्यादा महसूस हो रही है। पर डोंट वरी, यहाँ पर आपके साथ है आकाशवाणी एफ एम रेनबो, तो आपको थोड़ी म्यूजिक के साथ राहत तो ज़रूर दे सकते हैं। कमिंग अप A beautiful track for you, Akashvani FM Rainbow. Dil se, dil tak.

0: दिल्ली वालों तैयार हो जाओ, दिल्ली सरकार लेकर आया है मौका।
1: 400 से भी ज्यादा आम, देखने और खरीदने का सुनहरा मौका।
2: जी हाँ, दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित 35वां आम का महोत्सव,
1: जिसमें है मैंगो ईटिंग कॉम्पिटिशन पुरुषों और महिलाओं के लिए खास, कल्चरल रंगारंग प्रोग्राम, खान पान और खरीदारी का साथ।
3: 3-5 जुलाई दिल्ली हाट जनकपुरी नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक आम के रंग में घुलिए, आना ना भूलिए।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स। और अगली खबर जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं वो है, जी हां, IGI एयरपोर्ट से रिलेटेड। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए जल्द ही नई एक्सरे तकनीक की शुरुआत की जाएगी। यात्रियों को आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा जांच को और अधिक बेहतर बनाने के लिए टर्मिनल 3 पर उन्नत एक्सरे सुविधाएं जोड़ने की तैयारी की जा रही है। है ना बढ़िया मज़ेदार खबर। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि कई बार एयरपोर्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम हो जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है और वहाँ पर कोई ऐसा विकल्प उपलब्ध नहीं होता कि जहाँ पर हम एक्सरे मशीन की सुविधाएं उपलब्ध हो और वहाँ पर उनकी सेवाएं ले सकें। तो अब जल्द ही एक्सरे मशीन की जो ये सुविधा है वो टर्मिनल 3 पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर दिल से दिल तक सिटी लाइट्स प्रोग्राम चल रहा है और सिटी लाइट्स में हमारे एक लिसनर ने हमें मैसेज लिखकर भेजा है और ये भेजा है ऑस्ट्रेलिया से सोया ने, मेलबर्न से मैसेज भेजा है। लिखते हैं कि हम भी ट्रैफिक अपडेट्स देना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सड़कें बिल्कुल खाली हैं और लोग ऑलरेडी अपने बेड पर सोने के लिए चले गए हैं क्योंकि सुबह 6 बजे उठना है क्योंकि वहाँ पर इस वक्त रात है। थैंक यू फॉर दिस ट्रैफिक अपडेट। और मैं दिल्ली की अगर बात करूँ तो दिल्ली में अब ट्रैफिक अपडेट्स में आपको बता दूँ कि कई जगह पर ट्रैफिक अपडेट्स जो इस वक्त है थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जो है देखने को मिल रहा है कई जगह। और आपको एक ट्रैफिक अपडेट्स और देना चाहते हैं कि जल निकासी और कार्य निर्माण के कारण GT करनाल रोड के आसपास ट्रैफिक धीमा रह सकता है और ये आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो कि 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक रहेगा और वहाँ पर ड्रेन एक्सकवेशन चल रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा बाधित रहेगा। ये आज़ादपुर मंडी के पास है जहाँ पर ये ट्रैफिक एडवाइजरी है वहाँ पर कि वहाँ अगर आप उस तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सा उस रास्ते को अवॉइड कर चलें, अदरवाइज आपको ट्रैफिक जाम मिल सकता है। दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक अपडेट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। अपने नाम और जगह के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार फिर बता देता हूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 जिस पर आप ट्रैफिक अपडेट भेज सकते हैं। अगर आप किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है तो आप ट्रैफिक अपडेट वो भी भेज सकते हैं। और आपको अगली जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं वो है नई साप्ताहिक ट्रेन के बारे में। दिल्ली आनंद विहार से बिहार छपरा के लिए छपरा के बीच 28 जून से नई सुपरफास्ट साप्ताहिक ट्रेन का नियमित संचालन शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स, जुड़े रहिए हमारे साथ।

और अगली खबर जो हम लेकर आ रहे हैं वो है जी हाँ गोवा से। ये हमारे एक लिसनर ने हमारे साथ शेयर की है, श्याम सुंदर जी ने लिख के भेजा है हमें। कह रहे हैं संजाव गोवा में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक कैथोलिक त्यौहार है। ये मुख्य रूप से हर साल 24 जून को मनाया जाता है और सेंट जॉन द बैपिस्ट के जन्म और मानसून का प्रतीक है। 2026 में यह त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और भारी बारिश और इलाकों की हरियाली भरी प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थानीय लोग कुओं और तालाबों में कूदकर इस मौके का जश्न मनाते हैं। वीवा गोवा, क्या बात है। और हमारे साथ राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल ट्रैफिक स्मूथ है जी, क्या बात है। और कमल बिष्ट दिलशाद गार्डन से कह रहे हैं कि ट्रैफिक यहाँ पर जाम होता है जब हम आईटीओ की तरफ जाते हैं, दिलशाद गार्डन से आईटीओ की तरफ तो ट्रैफिक जाम हमेशा देखने को मिलता है शाम के वक्त। तो कमल बिष्ट थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ जानकारी शेयर की। और शिवशंकर शर्मा कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है और हमारे यहाँ जो है ट्रैफिक अभी स्मूथ है। थैंक यू सो मच, आप सभी का तहदिल से शुक्रिया। और अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक अपडेट है तो दोस्तों आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैफिक जाम में फंसे हैं या फिर आप दिल्ली के किसी एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ जा रहे हैं तो उसके भी हमें जानकारी दे सकते हैं कि वहां पर ट्रैफिक इस वक्त कैसा है। तो करना क्या है, आपको व्हाट्सअप करना है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9868107070।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में जो अगली खबर है वो है जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल का अब कितना काम बचा है और कब शुरू होंगी उड़ानें, क्योंकि आपको भी बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल टर्मिनल का काम तेज़ी से जारी है। टर्मिनल पर अब फिनिशिंग का ही काम बाकी रह गया है, जो अगले 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा और इसी साल के आखिरी तक यहाँ से विदेशों के लिए उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। जी हाँ, तो इंतज़ार, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स में आपको बता दें कि आगे जो प्रोग्राम लेकर आ रही हैं वो हैं मुक्ति सैनी, मैसेज मसाला मिक्स लेकर आएंगी 6 बजे, 6:05 पर आप जुड़ेंगे मुक्ति सैनी के साथ। और आज कौन सा क्या मज़ेदार टॉपिक लेके आएंगी वो वही बताएंगी, ये एक सरप्राइज रहेगा आपके लिए। तो सुनते रहिएगा आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। और अगली खबर जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव भी है और आपके लिए बड़ी मज़ेदार है। और वो खबर ये है कि दिल्ली मेट्रो ने सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए शुरू कर दिया है अपना काम। जी हाँ, और क्या है खबर, पूरी खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बुधवार को सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह स्टेशन फेज़ 5A के तहत जनकपुरी पश्चिम से RK आश्रम मार्ग तक मौजूदा मेजेंटा लाइन के विस्तार के तौर पर बनाया जा रहा है और ये 3 लाइनों से जुड़ेगा केंद्रीय सचिवालय स्टेशन। इस स्टेशन के बन जाने के बाद केंद्रीय सचिवालय स्टेशन एक ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा, जहां नई मेजेंटा लाइन का स्टेशन मौजूदा येलो लाइन वॉयलेट लाइन से जुड़ेगा। इससे सरकारी कर्मचारी और लुटियन जोन तथा आसपास के प्रशासनिक इलाकों में आने जाने वाले यात्रियों को बहुत सहूलियत होगी। ये 9 स्टेशन यहाँ पर बनेंगे। यह कॉरिडोर 9.913 किलोमीटर लंबा है। इसमें 9 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, जैसे कि शिवाजी स्टेडियम, युगीन भारत, केंद्रीय सचिवालय, कर्तव्य भवन, इंडिया गेट, समर स्मारक और हाईकोर्ट, बड़ौदा हाउस, भारत मंडपम, इंद्रप्रस्थ शामिल हैं। यह परियोजना नई दिल्ली के मुख्य इलाकों तक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और इस मेट्रो लाइन से प्रमुख सरकारी दफ्तरों, न्यायिक संस्थानों, राष्ट्रीय स्मारकों और कन्वेक्शन सेंटरों और आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकेगा। साथ ही पूरे नेटवर्क की क्षमता और यात्रियों के लिए सुविधा भी बेहतर होगी, है ना। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर अब अपने दोस्त वीर धवन को दीजिए इजाज़त और आपसे 26 तारीख को फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम शो सिटी लाइट्स में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और ज़िंदगी से हाथ मिलाते रहिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत जैमिसिन ग्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि ये कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार की जा रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित, सुगम और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाना है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम लेकर मैसेज मसाला मिक्स। यहाँ पे होगा आपके मैसेजेस का साथ और साथ में होंगे हमारी प्यारी प्यारी बातें, बहुत ही बेहतरीन गीत। तो फिर देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे और सुनेंगे वो सभी गीत जो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही लाजमी है। तो किस पे करेंगे खास चर्चा, विशेष बात किस किस पर होगी बता देती हूँ आपको, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती हूँ। फिलहाल आप नंबर नोट कर सकते हैं 9868107070 पर। और हमारी आज की बात जो है वो ये है कि आज आप किस बात के लिए थैंकफुल हैं और क्यों हैं। कई बार दिल करता है ना धन्यवाद करने का कि हे आज ये कितना अच्छा रहा, आज ट्रैफिक नहीं मिला, आज बस टाइम पर मिल गया, आज कैब बुक हो गई, रैपिडो बुक हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद अदा करते हैं। तो आज की बात अगर मैं करूं तो आप किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, किस चीज़ का धन्यवाद करना चाहते हैं तहे दिल से और क्यों करना चाहते हैं, 9868107070 पर बता सकते हैं अपनी बात। मुक्ति को रहेगा आपके मैसेजेस का इंतज़ार।

जी हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्या तो होने लगा, कुछ तो होने लगा, वो कुछ ही हम जानना चाहते हैं आपसे। फिलहाल यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन में कोई ऐसी बात आपके साथ रही है जिसका आप तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, उस पल का, उस बात का, या जो भी वो लम्हा रहा है, अगर ऐसी बात कोई है जिसका आप धन्यवाद करते हैं, थैंकफुल हैं उस चीज़ के लिए, तो वो क्या है और क्यों है, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। भाई ये रंगीन सी शाम है। जी हाँ, आप कहेंगे भाई इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतना पसीना रहा है, ये जो झट से मौसम बदल रहा है ना, तो कभी कुछ हो रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो गर्मी अगर पड़ रही है तो फिर उसके बाद मौसम की जो फुहार है, जो बारिश है, रिमझिम बरसात है, वो भी जल्द आ जाती है, ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, पल में कुछ है, पल में कुछ है, और कहीं बीमारियां भी साथ में हैं तो कहीं मौसम की ये तब्दीलियाँ जो हैं न जाने क्या कुछ कह के चली जाती है। वैसे आप बहुत कुछ कहने वाले हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसका आप तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं पूरे दिन में, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ, बहुत बेताब हूँ, क्या हैं वो बातें जो आप जानना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं। देखिए जो दिल आपका धड़क रहा है ना, शायद इसके लिए भी आप शुक्रगुजार होंगे, तो वही दिल की जो बातें हैं ना वो लिख दीजिए। और बार बार सवाल मैं इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपके मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने प्रोग्राम थोड़ा सा लेट ऑन किया, हम सवाल नहीं सुन पाए, आपने क्या पूछा है क्या नहीं। भाई देखिए, हाजिरी अगर लगानी है ना तो शुरुआत से ही आपको लगानी होगी। बीच बीच में जो आप दस्तक देते हैं ना, बीच बीच में जो आप आते हैं ना कि भाई हमने तो सुना ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं, तो चलिए आज टॉपिक पर ही रहेंगे और इसी पर जुड़कर हम बात करेंगे। और प्यारे प्यारे गीतों के लिए आपको कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी तैयारी कर मैं खास आपके लिए आई हूँ। आपको बताना है ये कि वो क्या बात है जिसके लिए आप तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, थैंकफुल हैं जिस चीज़ के लिए, और हमारे साथ जुड़ जाइए।

जी हाँ आशिकी, बस तुम ही हो और यहाँ पर ये बात बता दी है हमें कि रेनबो और गोल्ड को जब हम जुड़ते हैं तो हम अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनते हैं और हम इन्हीं सब चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रकाश गोगिया का जागृति एनक्लेव दिल्ली से ये मैसेज आया है और उसके साथ ये मैसेज है मीना का खरगांव मध्य प्रदेश से। आज मैं एक वंडरफुल मौसम के लिए थैंकफुल हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद आज फाइनली हमारे यहाँ बारिश हुई है और मौसम खुशनुमा हो गया है। मैं रोज़ आपको इतने मैसेज करती हूँ पर आप लेते हैं। देखिए कहीं थैंकफुल है तो साथ में जो वो है ना, क्या कहते हैं, शिकायतें कभी रुकती नहीं है चाहे आप कितने ही थैंकफुल हो जाइए। चलिए आपकी शिकायतें भी हैं कि भाई इतने सारे मैसेज भेजते हैं। जो मैसेज बेस्ड प्रोग्राम है उसमें मैसेज ज़रूर लिए जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैसेज भेजें। और मेरे अलावा और भी बहुत सारे जितने भी आरजेज यहाँ पे आते हैं सब कोशिश करते हैं कि सारे मैसेजेस हम ले सकें। अनुप कुमार का झारखंड से, इट्स रेनिंग ब्रिंग्स ए स्माइल इन एवरीवन फेस, रेन गो अवे। थैंकफुल किस चीज़ के लिए, हम भी आपको सुन रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, आगाज़ हुए में बहुत देर हो चुकी है, अब आप ये बताइए थैंकफुल आप किस चीज़ के लिए। मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने लाइफ पार्टनर श्रेया गौड़ को जीवन में पाकर। विपुल गौड़ का दिल्ली से ये मैसेज आया, वही बहुत ही खूबसूरत बात है। जोया का मैसेज आया हुआ, हाउस टू लिव, कार टू ड्राइव, मनी टू बाय एनीथिंग, ऑल बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग, ब्रीदिंग इन अ फ्रेश एयर, लिविंग अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ, बीइंग थैंक्स टू गोज़ टू अल्लाह हु हैज़ गिवन मी एवरी थिंग। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, भगवान का शुक्रिया अदा करना तो बिल्कुल बनता है। हर दिन की तरह आज सुबह की शुरुआत सकारात्मक सोच व नव ऊर्जा के साथ शुरू हुआ। मेरे दोनों बच्चों के एडमिशन आज हुए हैं और पूरा दिन भी अच्छा गया, शाम भी अच्छी जा

और जाएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि रेडियो में रेनबो के साथ जो हम जुड़ गए हैं दिल्ली से, उसमें आपका साथ भी मिल गया है, बेहतरीन गीतों का साथ भी मिल गया। हीरामणि का मैसेज हमें आया है छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, हमारा साथ बिल्कुल आपके साथ है, बस आप लोग भी अपना साथ यहाँ बनाकर रखिए। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनलाइन काव्य ग्रुप कारवा का, जो उन्होंने मुझे काव्य लेखन के लिए प्रशंसा सर्टिफिकेट दिया है। वरिष्ठ उम्र में खाली है तब काव्य लेखन, शायरी कविताएँ खुद लिखता हूँ और उसमें व्यस्त भी रहता हूँ, इससे मैं दिमागी स्वस्थ रहता हूँ। अनिश शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज आया है। आज सबसे बढ़िया बात ये हुई कि गर्मी चली गई और बरसात आ गई, मौसम ठंडा ठंडा सुहावना हो गया। प्रवीण चौहान का मध्य प्रदेश से ये मैसेज आया है। तो खासी ठंडक हो चुकी है इस समय मध्य प्रदेश में। मैं मैसेज मसाला मिक्स का शुक्रगुजार हूँ और प्रभु की कृपा से, प्रकृति के जिसने हमें ये सब कुछ दिया है, उस प्रभु की बदौलत हमारी और आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो इन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नीलम स्वाति रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से मैसेज आया है। बिछड़ कर भी तू मुझसे जुदा ना हो सके, तू मेरी यादों की पन्हाओं में आज भी है। भले ही मंजिलें अलग हो गई हों हमारी, मगर मेरा नाम तेरी दुआओं में आज भी है। मोहम्मद सरफराज आलम का अररिया बिहार से मैसेज आया है। तो चलिए, ये मैसेज तो हम आपके लेते ही रहेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि कोई ऐसी चीज तो होगी ना आपकी जिंदगी में जिसका आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो आपके दिल के बेहद करीब होगी, बेहद खास होगी। आज के पूरे दिन में कोई भी वाक्य आपके साथ ऐसा नहीं हुआ या कोई भी पल ऐसा नहीं रहा जिसका आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, है कुछ ऐसा तो बताइए ना और जुड़ जाइए हमारे साथ 9868107070। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
4: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: कोयल सी तेरी बोली।

0: गुकु
1: आए हाय,
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं और साथ ही हम पहुंच रहे हैं 102.6 के माध्यम से। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और बने रहिए। तो वही आप सभी को ये बताना है कि आज किसी खास मौके के लिए, किसी पल के लिए आपने कोई ऐसी बात रही हो कि जिसमें आपने किसी का शुक्रिया अदा किया हो, आपने उस पल का शुक्रिया अदा किया, हम जानना चाहेंगे आपसे। ये है मैसेज हमारे पास, जब कोई मेहमान मेरे घर आता है मैं अल्लाह का अदा करता हूँ, चाहे आज आए या कल आए, मेरे घर पर रोज मेहमान आए। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। आई होप दैट यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम एंड डूइंग गुड। आई एम शैलेश, राइटिंग टू रेनबो टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। लाइफ इज इनवैल्यूएबल, लव इज लाइफ, लव इज द बोट टू द रिवर बैंक। थैंक्स फ्रॉम ऑल द थिंग्स। शैलेश का मैसेज हम तक ये पहुंचा है। मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम हम सुन रहे हैं आज और हम यही कहना चाहेंगे, मैं आपको क्या बताऊं, आज तो मेरा काम सफल हो गया। मुझे आज अपने काम से बाहर जाना था, मुझे अचानक संयोग से बाहर जाने के लिए यात्री बस मिल गई, मेरा कार्य सफल हो गया। मुक्ति जी, भगवान की कृपा से अपना भाग्य ही समझूंगा, इसलिए मैं भगवान को ही धन्यवाद थैंकफुल कहूंगा जिन्होंने मेरे सही समय पर साथ दिया। यही मेरा विचार है आज का और मेरा संदेश शामिल कर लीजिए। यह है नियमित श्रोता हर्षवर्धन मध्य प्रदेश से हमको ये मैसेज आया। भाई देखिए ना, अगर आप निकले सच्चे दिल से या अच्छे मन से निकले भी, या फिर कोई भी आपका काम ऐसा जो आप करना चाहते हैं और एक बार आपने दिल में सोच लिया कि हाँ मैं ये काम करना है, तो वो चीज़ें हो भी जाती हैं। आज मैं उस पल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक और खूबसूरत दिन, स्वस्थ जीवन, परिवार का साथ और कुछ अच्छा लिखने पढ़ने का अवसर दिया और छोटी बड़ी नेमत के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद सरफराज आलम का दर्शना बाजार से ये मैसेज आया है। ये है इकबाल का और वो लिखते हैं कुरुक्षेत्र से मैसेज है, माउंटेन इज नॉट हायर देन आर डिजायर बिकॉज इट इज अंडर एयर फीट व्हेन वी रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये मैसेज है, आई वुड लाइक टू से दैट आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली एंड ऑल माई फ्रेंड्स हु लव मी अ लॉट। आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू गॉड हु हैज़ मेड मी कैपेबल टू गिविंग दैम लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एज मच एज पॉसिबल बिकॉज वॉट एवर आई एम बिकॉज ऑफ देयर लव। भुवनेश का मैसेज आया अशोक विहार से। तो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, भाई किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हैं आज, किसी पल के लिए, किसी बात के लिए, किसी इंसान के लिए, अपने आप के लिए, क्या है वो चीज़ जिसके लिए आप थैंकफुल हैं और क्यों है, बताइए। इतना बेहतरीन तोहफा है, अगर अभी तक आपने सोचा भी नहीं उस पल के लिए, उस बात के लिए थैंकफुल होना, तो सोचिए यही वो वक्त है जब आप थैंकफुल हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 9868107070 पर बता सकते हैं अपनी बात।

और अगर कहीं आपको प्यार हो भी गया है तो क्या ही खराब बातें, क्या ही गलत है, बहुत ही खूबसूरत चीज है अगर आपको हो चुका है। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से मैसेज है, हम तो हर पल प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम तन मन धन से खुश हैं। भाई बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये मैसेज है देव मूवी उत्तराखंड से कविता का, बिना मतलब के किसी भी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, मेरे पति, मेरे भाई और अब भांजा रक्तदान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कर्म ही सर्वोपरि है। एक प्रिय साथी के रूप में रेनबो के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, जो ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ मनोरंजन भी करवाता है, तो हम तो तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। देहरादून से आलोक पवार और मिनी का ये मैसेज आया, भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। भगवान ने मुझे इतना दिया है, ये गाना एकदम फिट बैठता है मुझ पर, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। चलिए भाई इसी का शुक्रिया अदा कर दीजिए। माया एनक्लेव से प्रोफेसर ए के टंडन का ये मैसेज हम तक पहुंचा है। और ये मैसेज है हमारे पास, ये है कि भगवान बहुत अच्छा लग रहा है, मेहमान तो भगवान समान होता है, मेहमान किसी के यहाँ भी आए या वो अपने नसीब का खाना अपने साथ लेकर आता है, इसलिए कभी भी मेहमान से जब भी आए तो खाना हमेशा पूछ लेना चाहिए। आप यकीन करना, जब भी हमारे यहाँ मेहमान आते हैं मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उसी मेहमान के ज़रिए हम भी कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलता ही रहता है। मोहम्मद फुरकान का ये मैसेज हम तक पहुँचा है। तुझे ना देखूँ चैन मुझे आता नहीं, जिस किसी के सहयोगी कार्यक्रम से हम जुड़ रहे हैं हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं। तो भाई धन्यवाद करना चाहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं ना कहीं धन्यवाद अदा करने में आप कंजूसी कर रहे हैं। आज मैं थैंकफुल हूँ, जो काम सोचे थे वो सब आसानी से हो गए, डॉली का ये मैसेज है। और प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं रेनबो के साथ, इसका भी तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। तो भाई आप अपने नाम लिखकर हमें यहाँ भेज रहे हैं, तो बाद में तो लिखकर भेजिए ना किस चीज़ के लिए आप धन्यवाद अदा करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी बात को कर आज मैं ये मैसेज लेकर आई हूँ, ये सवाल आपके लिए लेकर आई हूँ कि वाकई में हम शायद सॉरी बहुत आसानी से बोल देते हैं, लेकिन थैंक यू कहना, किसी को धन्यवाद अदा करना हम बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि भाई उसे बहुत ही घमंड हो जाएगा, बहुत ही प्राउड हो जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा, उसे लगेगा कि वही अच्छा है, वही सब काम अच्छे करता है, तो ये सब बातें आ जाती हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके मैसेजेस जो है वो बहुत ही कम आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप घबराते हैं, दूसरों की बढ़ाई करें, लेकिन आप किस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उसमें कहीं आना का नहीं है। चलिए थोड़ा सा टाइम आपको और दे देती हूँ, अगर आप करना चाहते हैं शुक्रिया अदा किसी बात का, किसी पल का, किसी चीज़ का, किसी इंसान का, तो कह दीजिए, बता दीजिए हमें 9868107070 पर। मुक्ति कर रही है आपके मैसेजेस का इंतज़ार।

जी हाँ, मिलने का मजा तो यहाँ पे आ रहा है और कहीं ना कहीं आपकी अब बातें जो है ना वो थोड़ी शुरू हो गई हैं। धन्यवाद अदा कर रहे हैं आप और आप अपनों का। सुनील कुशवाहा का मैसेज है।

आप जैसे दोस्त ने मिलवा दिया खाटू श्याम। शुक्रगुजार हूँ मैं बैंकों का जिन्होंने मेरी शिकायत सुनी और निवारण का भरोसा दिया। जब उनसे मिलने आज रीजनल ऑफिस गया नेहरू प्लेस तो मेरा काम हो गया। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज आया है और ये है कि मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ रेनबो को और खोजो और हर परिस्थिति में हमारा साथ देती है और अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाते हैं तो हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कैसा भी मूड हो लेकिन अच्छा बना ही देते हैं। सो थैंक यू सो मच रेनबो के परिवार को दिल से। कंचन का सोनिया विहार से मैसेज आया, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद कि बस आप अपना साथ यहाँ पर बना कर रखते हैं। खुशी एक ऐसा इत्र है जो पहले अपने आप पर छिड़कना पड़ता है, उसके बाद उसकी खुशबू सबको खुश कर देती है। इसलिए हमेशा खुश रहें और सबको खुश रखने की कोशिश करते रहें। महेश का अजमेर राजस्थान से ये मैसेज आया है, मैं उन लेखकों कवियों और दार्शनिकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनकी रचनाओं को पढ़कर मेरे जीवन में खुशी के पल आए हैं। रंजीत कुमार का अररिया बिहार से मैसेज आया है और ये है कि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट का साथ ही साथ AI का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी लाइफ बहुत ही आसान कर देती है। कोई भी संदेश, कोई भी नोटिस, कोई भी आर्टिकल हो या सही शब्दों का चयन करना हो, अगर हमारे पास AI है तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सही तरीके से लिख कर प्रस्तुत कर सकते हैं। VS हंडा का चंडीगढ़ से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। अगर आप भी अभी कुछ लोग रह चुके हैं शुक्रिया अदा करने के लिए तो यही समय है, आप कह दीजिए और शुक्रिया अदा कर दीजिए।

और वैसे मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और साथ ही साथ भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हर एक पल का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जो भी मेरे जीवन में हुआ या हर एक पल जो मेरा चल रहा है उन सभी पलों के लिए शुक्रिया अदा, क्योंकि ये बहुत खुशी दे रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, एक एहसास करवा रहे हैं कि जीवन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो आप भी धन्यवाद करके देखिए, फिर देखिए लाइफ में कितना मज़ा आता है। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम कौन सा, जी हाँ, सुहासिनी रहेंगी आपके लिए, और उसके बाद मैं फिर से आपके पास लौटूंगी प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर। तो म्यूजिक की मस्ती चलती रहेगी, 8 बजे आऊंगी आपके लिए और रहूंगी 9 बजे तक। फिलहाल ये सॉन्ग आपके लिए।

0: ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला में आज निर्माणाधीन गोदाम ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायलों का SSKM अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा तथा स्थानीय लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा है कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वत नैनी ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिकार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गई। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार के बावजूद भारतीय नागरिकों को जारी नए परामर्श में अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत सैमीसन ग्रीन और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। श्री शाह इस अवसर पर मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026 से 29 के लिए दृष्टि पत्र जारी करेंगे। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिपुरा में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इस परियोजना से राज्य में 160 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं से राज्य की 96 बस्तियों को पहली बार हर मौसम में सुगम सड़क संपर्क प्राप्त होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने बेंगलुरु और मुंबई में राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से जुड़े 9 ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई कल शुरू की गई। ये जांच राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा के कथित उल्लंघन के मामले में की जा रही है। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज को हराया।

फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया हर्जेगोवना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले कल रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। द टाइम बाय स्टूडियो क्लॉक इज 7:05:52 एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट व्यूज प्रोग्राम विद मी सुहासनी। सो लेट्स बिगिन बिकॉज वेल हेलो एंड वेलकम ऑल द ट्रैवलर्स। वी हैव सेट आर sites on one of the Northeast India's most fascinating and underrated destinations, Tripura.

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट

0: indiapost.gov.in।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कितना ब्यूटीफुल लगता है ना ये ट्रैक, जब पता होता है कि बारिश जो है वो झमझमाझम शुरू हो चुकी है और इस गर्मी से राहत मिल चुकी है। बारिश, हवा, आंधी का तो एक अलग ही रुख चल रहा है। जब दिल करो, जब मन चाहे, तब हो जाती है और आपको राहत सी पहुंचा जाती है। और कई बार ये बारिश जो है ना आपको भिगो के भी चली जाती है, तो कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा सा भी लगता है। लेकिन जो भी है, मौसम है, जी लीजिए इन पलों को, क्योंकि यही पल सबसे खूबसूरत हैं जो हमारी जिंदगी में आ रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्जित दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में, और ये मस्ती चलती रहेगी यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास ब्यूटीफुल ट्रैक्स का सिलसिला जबरदस्त तैयार है। तो फिर आपको कहीं और क्यों जाना है, बारिश में भी भीग रहे हैं तो कोई बात नहीं, भीग जाइए, वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर लीजिए, भीग जाइए, मजे कीजिए। और सबसे अच्छा ये ना, भीगने के बाद चाय पकौड़े या फिर जलेबी खाना बिल्कुल ना भूले। जलेबी का नाम ले लिया तो अब तो जलेबी बनती, देखिए आप अभी खा सकते हैं, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी लेकिन खाऊंगी जरूर।

0: करने की क्या बात है यार?
1: पहले पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।

प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती की मस्ती एकदम जारी है और आपके लिए खास। भाई देखिए, मौसम सुहाना हो चुका है और आप बहाना बना रहे हैं कि बस खा के अब नींद का मन कर रहा है, अब तो एसी चलाने की भी जरूरत नहीं है, कूलर चलाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा कीजिए, थोड़ा सा अपने आप में अगर आपको चाहिए ना कि आपके थोड़े से पसीने बह जाए या फिर आपने कुछ ज्यादा खा लिया है इस अच्छे से मौसम में, चाय पकौड़े कुछ ज्यादा ही हो गया, तो जाइए थोड़ा सा टहल कर आ जाइए, इतना भी मुश्किल नहीं है। कुछ अच्छे से सॉन्ग्स आप लगा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इससे बेहतर सॉन्ग्स आपको कहीं और मिल सकते हैं ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं मिल सकते। 102.6 और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम लगातार आप तक

स्थिर रहेंगे उसके लिए आप हमें ट्यून इन कर सकते हैं और वॉल्यूम थोड़ा सा अप कीजिए, निकल जाइए वॉक पर, कहीं जगह नहीं है छत पर चल जाइए, घर में घूम लीजिए, बालकनी में घूम लीजिए, इतनी जगह आपको मिल ही जाएगी। हज़ार बहाने बना सकते हैं तो उसमें से चार ऑप्शंस भी आप ढूंढ सकते हैं, बस कोशिश करने की देरी है। कोशिश कीजिए और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहाँ पर मुक्ति की ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला जारी है खास आपके लिए, तो चलिए ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो रुकना चाहिए वो नहीं रुकना चाहिए, फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थमना चाहिए सॉन्ग्स का सिलसिला, क्योंकि यही तो है वो कड़ी जो आपको हमारे साथ बांधे रखती है। दिल से दिल का ये कनेक्शन कहीं भी टूटना नहीं चाहिए।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, आपकी नज़रें इस समय कहाँ हैं? आपकी नज़रें किसे ढूंढ रही हैं? क्या आपकी नज़रें ढूंढ रही हैं वही जो कि मैं समझ रही हूँ? जी हाँ, इस मौसम में आप सोच रहे होंगे बस अच्छी सी नींद ली जाए, अपनी कोई फेवरेट वेब सीरीज देखी जाए, कोई फिल्म देखी जाए और बस खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं ताकि जो ये ठंडी ठंडी हवा चल रही ना बस ये कमरे तक आती रहे और हमें प्यारी सी नींद का झोंका दे जाए। तो मुझे पता है इतना आलस ना आप में भरा हुआ है ना कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं वॉक करना या अपने शरीर को ज़रा सा भी समय देना। मुझे लगता है कि शरीर को समय देना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबह नहीं दिया तो शाम को दे दीजिए, लेकिन ज़रूर दे दीजिए। इससे ज़्यादा रिफ्रेशिंग आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हज़ारों टेंशनें जो आप लिए फिरते हैं ना, या आप लेते भी नहीं है, वो खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाती है, वो यूं छू मंतर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि ये जो सारी टेंशनें छू मंतर हो जाए, तो एक बार अपना कर देखिए। कम से कम भी नहीं तो 5 दिन तो आप करके देखिए, चाहे वो वॉक हो, एक्सरसाइज हो, योग हो, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने साथ, जो आपको लगता है कि सिर्फ वो पल आपके लिए होगा, तो फिर देखिए आप में बदलाव आना लाजमी है। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती में मैं हूँ आपके साथ, आपके आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए 102.6 के जरिए लगातार हम आप तक पहुँच रहे हैं ब्यूटीफुल ट्रैक्स का सिलसिला लेकर।

आप लगातार बने हुए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। फिलहाल म्यूजिक की मस्ती जारी है आपके लिए, लेकिन आपको आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा के बारे में बता देती हूँ। आप 9 बजे सुनेंगे आपकी याद आती रही जरीन नाज के साथ, और फिर 10 बजे का समय रहेगा सुहासनी के साथ रेनबो क्लासिक, और फिर 11 बजे का समय रहेगा रंगे महफिल जरीन के साथ। तो मुक्ति कहना चाहती है आपसे इतना ही कि मैं चलती हूँ, जल्द होगी आपसे मुलाकात। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए। आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी।
1: ए बारिश जरा थम के बरस, जब मेरा प्यार आ जाए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस कि वो जा ना सके। तो जनाब, भीगते भीगते आखिरकार आपसे मुलाकात करने हम आए गए हैं, स्टूडियो में दाखिल हो चुके हैं। और बारिश के इस मौसम में कुछ बातें बारिश की, जब मन उलझा उलझा रहता है, जब रास्ते पर चलते हुए छतरी के ऊपर गिरती पानी की बूंदें शोर मचाती हैं, तो कभी उस शोर को सुनकर मन मयूर मचल उठता है। यूं तो बारिश का मौसम पसंदीदा मौसम है मेरा, मे बी आप में से कईयों का होगा, क्योंकि बारिश में भीगना मुझे अक्सर पसंद है। और वो घर की बालकनी में हाथ बढ़ाकर गिरती हुई बूंदों को महसूस करना, ऐसा लगता है जैसे बारिश भी अपना हाथ बढ़ा रही है हमारी ओर कि आओ मुझे छू लो, मेरे साथ झूम लो। ये मौसम होता ही ऐसा है कि दिल में बस कुछ कुछ होने लगता है।

जैसे कि मैंने कहा कि मेरा पसंदीदा मौसम जो है बारिश का मौसम है, और ऐसा कई लोग मानते हैं कि उन्हें भी बहुत मज़ा आता है बारिश देखने में, और जैसे बारिश में लहराकर नाचना, ऐसा मन तो सबको करता है, लेकिन कई बार हम कर नहीं पाते हैं हालात के तहत कि लोग टोक देंगे कि अरे ये क्या कर रही हो, बारिश में भीग रही हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। ठीक किसी हिंदी फिल्म की नायिका की तरह घर के आंगन में जाकर गोल गोल घूमना, गड्ढों में भरे पानी में चई चपचई की तर्ज पर चपाक चपाक खेलना, वैसे सोचिए तो कितना बचकाना लग रहा है ना ये सब बोलने में, लेकिन ये सब करने का मन करता है सबको। एक्चुअली मैं क्या मानती हूँ कि यही वो यादें हैं जिनमें सभी का बचपन जिंदा है, हर वो बच्चा जिंदा है जो हर इंसान के बूढ़ा हो जाने पर कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में छुपा बैठा होता है, जिसे हर कोई जिंदा तो रखना चाहता है मगर रख नहीं पाता। क्या मानते हैं आप?

भाई इस गाने में तो बिल्कुल सजीव चित्रण हो गया है कि कैसे नायिका भीगी हुई है और कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको किशोरदा अपने गानों के जरिए, और फिल्म में बकायदा फिल्माया भी गया है उन पर ही है। और खूबसूरत ब्यूटी मधुबाला जी साथ में, ऑसम गाना, माहौल

0: गया बिल्कुल।
1: मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात।
0: क्या बात है, क्या बात है। जैसे कि चित्रण इन्होंने गाने के जरिए किया, बिल्कुल फिल्मा दिया सीन को। उसी तरह भीड़ में भी जब कोई आपको तन्हा नजर आए, सबके साथ होकर भी कोई अकेला सा दिखाई पड़े, जिसकी सोच समझ सब खोई खोई सी लगे, तो समझ लीजिए कि वो शख्स ना प्यार में है। सोचिए तो सही, लम्हा लम्हा जोड़कर हम इंसान जमाना बना लेते हैं, कभी ना ख़त्म होने वाला फसाना बना लेते हैं। और जब आप प्यार में होते हैं तो भीड़ में भी ना अकेले से होते हैं, अलग से होते हैं बिल्कुल।

वो कह के चले गए थे कि भूल न जाना, वो कह के चले गए थे कि भूल न जाना, हमने भी सदियों से आज को रोके रखा है। वेल, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 21:15, इट मीन्स 9:15, और मैं आपके साथ आपकी दोस्त जरीन हूँ। प्रोग्राम वही पहचाना, आपका अपना, आपकी याद आती रही। अगला ट्रैक अरमान मलिक की आवाज़ में आप तक पहुँचा रहे हैं FM रेनबो इंडिया के जरिए।

0: है बब्बल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज

कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा प्यार है, है ना, जो बांटने से और बढ़ता है। अपनी भीनी भीनी महक से ये चारों ओर खुशबू बिखेर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, बस हो जाता है। प्यार है क्या, किससे करें, कब करें, कहां कोई मिलेगा, कैसे कोई मिलेगा, ये ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिसके जवाब कभी मिलते नहीं, कि अगर जानबूझकर इन्हें हम नजरअंदाज करें तो आखिर में उदासी सी होती है और दिल के टूटने की आहट सी भी सुनाई देती है। कई बार ऐसे कस्में वादे एक दूसरे के साथ लोग खाते हैं, मगर प्यार के परवान चढ़ते चढ़ते जब जिंदगी की हकीकत से सामना होता है तो सारे सपने कदमों तले टूट कर बिखर जाते हैं और कुछ दिनों का खुशनुमा इश्क जिंदगी भर के अश्क में तब्दील हो जाता है। होता है ना ऐसा कुछ लोगों के साथ।

एक्चुअली मौसम खुशनुमा, बारिश का माहौल, चारों ओर शीतलता, यानी कि शाम ढलने के साथ ही खामोश रात के पहर ने इशारा कर दिया एक खूबसूरत सी महफिल से जाने का। जी हाँ, हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम अपना मनपसंद, आपकी याद आती रही लेकर मैं आपके साथ इस वक्त जरीन हूँ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात भी तुम हो, राहत भी तुम हो, मेरे गम और मेरी खुशी को बांटने वाले हम सफ़र भी तुम हो। आप जैसा हम सफ़र हो जाए आगे तो क्या सोचना कि कहाँ जाना है, बस वक्त ठहर सा जाए यही दिल की आरजू होती है। फिल्म जीरो का ये गाना आप तक पहुंचा रहे हैं, अब है जोधपुरकर की आवाज में।

कभी कभी ना दिल की बड़ी मुश्किल होती है। मैं क्या सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने ये दिल बनाया ही क्यों? दिमाग से काम नहीं चल सकता था क्या? लेकिन भाई ऊपर वाला तो ऊपर वाला, बस दिल बना देता या फिर बस दिमाग बना देता तो ये जो कॉम्बिनेशन है गड़बड़ा नहीं जाता। जब आप दिल की सुनते हो फिर दिमाग लगाते हो, जब आप केवल दिमाग लगाते हो तो फिर दिल की नहीं सुनते। तो इन दोनों का होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। लेकिन मुश्किल तब हो जाती है कि जब कभी कभी दिल लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि दिल पर कुछ बोझ सा है जिसे लफ्ज़ों में ढालना मुश्किल हो जाता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा भारी भारी सा लगता है, मन भीतर से बहुत थका थका सा महसूस होता है। इसलिए ऐसा भी होता है कि किसी से बात करने का जी नहीं करता, कुछ देर सिमट कर खामोशी में रहना आप पसंद करते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर महसूस कर सके और फिर से खुद को दोबारा दुनिया के सामने ला सके। जब ऐसा हो ना तो बेशक आप अकेले पड़ जाएं, अपने आप को समेट लें, लेकिन हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना FM रेनबो इंडिया का, इसे सीने से लगाकर जरूर रखिए। ये हर दुख में, हर सुख में, दिन में, रात में आपका हमेशा वाला सच्चा साथी है। यकीन मानिए मेरा।

जी हाँ, आप सुन रहे थे प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। ये विजय भट्ट का गाना कुमार सानू की आवाज में। सब हम कह सकते हैं कि लफ्जों की रुमानियत का कमाल कहें इसे या गाने की गहरी आवाज का सुरूर, कि किसी 90s के सॉन्ग को सुनते ही तबीयत खुश सी हो जाती है। किसी महबूब के ख्यालों में खोए खोए गहरी अंधेरी रात में बिस्तर पर लेटे लेटे आधे जागे आधे सोए आधे खोए आधे होश में, बत्ती बंद करके या धीमा करके जब आप किसी को सोचते हैं ना, तो यकीन मानिए आपके होठों पर शरारत भरी एक मुस्कान तैर जाती है। और हम दिल से ये दुआ करते हैं कि आपका प्यार अगर आपसे दूर है तो वो आपके पास ज़रूर आए, और अगर पास आए तो उसका जुड़ाव दिल से हो जो कभी जुदा ना हो, जैसे आपका और हमारा जुड़ाव दिल से दिल तक FM रेनबो इंडिया पर हमेशा। मिलेंगे दोबारा आपसे 11 बजे रंगे महफिल में। फिलहाल इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रिर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रिर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि

0: वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इस बीच ओमान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को हल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के समन्वय से विकसित की जा रही है। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
3: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज एसएसकेएम अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना एनडीआरएफ सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी के मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। अन्य मुकाबलों में पुर्तगाल, क्रोएशिया और कोलंबिया ने जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Well, that was Jukebox Jive by The Rubettes. And before we go ahead and take a break, let's take a few messages. We have a message from Dave from Delhi. He says, hi, good evening. Good evening and welcome to the program. That is Rainbow Classics and all the night owls who are tuned into the program. Welcome once again. So let's take a little break and we'll be back with more songs.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: otherwise I'll have that or not. And also he says that please play Thanks Surjeet Jabalji. Of course, if I have it, I'll definitely try and search for that song. But nonetheless, let's take a little bit of break, and we have other songs as well. We have Roxette, we have Culture Club, we have Blondie as well.
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि

0: हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
2: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: शाम ढलने के साथ ही खामोश रात के पहर ने इशारा कर दिया है एक महफिल सजाने का। जी हाँ, हमेशा की तरह महफिल सज चुकी है गजलों की रंग महफिल में। तो इस महकती रात में आपके दिल से निकलती हर बात को समझेंगे और कुछ खूबसूरत गजल आप तक पहुंचाएंगे। पहली गजल जगजीत साहब की आवाज में।

0: बहुत खूबसूरत हैं आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: मोहब्बत में सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन जब दिल में दर्द होता है, जुबां फिर भी खामोश होती है, तो हम जिसे सबसे ज्यादा याद करते हैं वो है खुदा, ईश्वर, भगवान। मुस्तर खैराबादी साहब कहते हैं कि मेरे गुनाह ज्यादा हैं या तेरी रहमत, करीम तू ही बता दे हिसाब करके मुझे। और जाहिर सी बात है कि खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे, यानी वो होते आपके आसपास ही हैं, आपके गम में भी शरीक होते हैं, आपकी खुशी में तो वो रहते ही हैं। और वो कहते हैं ना कि जब कोई नज़र नहीं आता है तो सिर्फ वही तो नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं रब, खुदा, ईश्वर।

रोमानियत और मोहब्बत का रंग घोलने के लिए जब जब हम रंगे महफिल को आप तक लेकर आते हैं तो बहुत सारी बातें जहन में आती हैं कि ये गजल है क्या, क्यों इतनी रोमानियत, क्यों इतनी मोहब्बत भरी है इसमें। मोहब्बत की खुशबू जब हवाओं में घुल जाती है तो हर धड़कन एक गजल बन जाती है। दिल के एहसास जब अल्फाज का लिबास पहन ले तो पैदाइश गजल की होती है, या फिर इश्क की नर्म नर्म बारिश में भीगी हुई कुछ खूबसूरत गजलें

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
0: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
0: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

नजरें मिली तो दिल ने ये पैगाम दे दिया, तुम सामने क्या आए हर गम को भुला दिया। तेरा ख्याल आया तो बहकने लगी फिजा, जैसे किसी गुलाब ने मौसम सजा दिया। तुम पास हो तो वक्त ठहर सजाता है, हर लम्हा जैसे प्यार का नगमा सुनाता है। अगर आपके दिल में भी किसी की मीठी यादें दस्तक दे रही हैं तो ये गज़लें आपके लिए हैं। मोहब्बत की राहों में चलने वालों के नाम, खूबसूरत रात और ये दिलकश गज़लें। लग रहा है ये सफ़र रुकने न दे, बस चलती रहे चलती रहे।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही

सियासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, 102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगी महफिल जरी के संग। कहते हैं कि जब लफ्ज साथ छोड़ दे तब ये आंखें बोलती हैं। कभी खुशी का पैगाम देती हैं, कभी दर्द का अफसाना सुनाती हैं, कभी किसी की याद में नम हो जाती हैं, तो कभी किसी अपने को देखकर चमक उठती हैं। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, ये हमारे जज्बातों का आईना भी है। मोहब्बत की शुरुआत अक्सर आंखों से होती है और कई बार बिछड़ने का दर्द भी इन्हीं आंखों में उतर आता है। और महबूबा की आंखों का क्या कहना, महबूब अक्सर ये कहता पाया जाता है मोहब्बत में गिरफ्तार होने पर कि तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है, और ऐसी आंखें नहीं देखी।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंगे महफिल जरी के संग। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ अजीज शक्लें गुजरते लम्हों की परतों पर स्याह होती चली गईं? कुछ तो ये वक्त भी अजीब सी चीज है। खुद तो कभी बूढ़ा नहीं होता, पर अपने साथ रिश्तों की मुलायमियत में सिलवटें जरूर खड़ी कर देता है। पुराने चेहरे या रिश्ते वैसे ही हो जाते हैं जैसे कच्ची सड़क पर चलती गाड़ियों की वजह से धूल से भरे सूखे बिना चमक वाले पत्ते। और इन धुंधले चेहरों के सरीखे पत्तों पर सालों से न सुनी गई आवाज की बौछारें जब अचानक से पड़ती है ना, तो फिर हरियाली लौट आती है अपने आप और सब खुशनुमा हो जाता है। तो आपकी सदियों से सूखी जिंदगी में प्यार की चंद बौछारें पड़ेंगी, किसी की रुमानियत किसी के इश्क का शीतल छीटा अगर पड़ेगा

हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी है और यही मोहब्बत कहता है, इंसानियत कहता है। तो बस जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि दस्तक देते रहे अंदर की खुशी को, और जिंदगी जीने का जज्बा जरूर खिड़की खोलेगा और देखेगा कि बाहर की दुनिया में कौन कौन है। तो किसी खूबसूरत मोड़ पर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज, शब खैर। अपना ना खूब सारा ख्याल रखिएगा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में आयोजित

की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीक के दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, दिल कहता है चल उनसे मिल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में मेरा दिल भी कितना पागल है। 12:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो मेरे यानी अलचित के साथ।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: बारह बजकर 25 मिनट हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: बारह बजकर 44 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

12:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे जीरो आवर शो मेरे यानी अर्चित के साथ। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के

आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:05 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सुहानी रात, जिसमें एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सोनू निगम जी की आवाज में साथिया। 1:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहानी रात मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली
1: है?
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय,
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

Are you with me? Yeah! Can you feel it? Yeah! Then let's go for it.

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक बजकर 34 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जरूरी ना हो।
1: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
2: ठीक है,
1: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। अच्छा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्हें दक्षिणपंथी कारोबारी एबेलार्डो देला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी

जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 2:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भुलाए ना बने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कोयल सी तेरी बोली, कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: हाय।
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दो बजकर 27 मिनट हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भुलाए न बने।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ 1000 दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता

0: इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा किले होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

2:59 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भुलाए न बने। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगले चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 3:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: तीन बजकर 59 मिनट हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल है, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
2: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर के विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, NDRF, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगला चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को वर्ष 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 4:05 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सारेगामा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।

0: इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

4:49 हो चुके हैं, 4:59 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम सारेगामा। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया

0: यह संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-2029 के लिए दृष्टि पत्र भी जारी करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

क्या दृश्य है, कन्हैया और मैया दोनों एक दूसरे के गले से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों जानते हैं माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो माँ मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। शब्दों का चमत्कार देखिए, कन्हैया ने अपने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया। अचानक कन्हैया ने माँ के आंसू पोंछे और देखिए मुस्कुराते हुए क्या कहने लगे,

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।